मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 आषाढ़ मास की तिथि 26वीं तदनुसार 17 जुलाई 2026 ईस्वी प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार 6 बजे।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से

0: bundled out for just 233 runs in 44 overs. Both the teams will now face each other in the series decided on Sunday at the iconic Lord's Cricket Ground. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज़ में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ये भक्ति संगीत।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन योग निद्रा पर चैतन्य गुरु जी से।
1: योग निद्रा, ये योग निद्रा, इसका

0: चैतन्य गुरु जी से।
1: योग निद्रा, ये योग निद्रा, इसका शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। इसको जानने से पहले हम निद्रा क्या होती है, यानी रात को हम सो जाते हैं तो होता क्या है। सो जाने का मतलब जाते कहाँ, हमारा जो कॉन्शस माइंड है और वो हमारा कंठ के पास में हिता नाम का एक नाड़ी होता है जो हमारा सब कॉन्शस माइंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो दिन भर हम काम करते हैं, थक जाते हैं, हमारा बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है, तब हम सो जाते हैं रात को। लगभग आम व्यक्ति के लिए 6 से लेकर 8 घंटे का नींद जरूरत पड़ता है। इन 6 से 8 घंटे में होता क्या है, हमारा कॉन्शस माइंड सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में मिल जाता है, तब वो जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। जब वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति अपना जीवन में जो कुछ भी उन्होंने देखा, सोचा और वो सभी बातें वो किया नहीं है, कर्म में नहीं लाया, और वो नींद में ड्रीम्स जो हमारे ख्वाबों के माध्यम से बाहर निकलता है, और उस स्थिति के बाद में जब वो अनकॉन्शियस माइंड पे लेवल जाते हैं तो गहरा नींद में चले जाते हैं। अब योग निद्रा का मतलब है इस कॉन्शियस माइंड को जागते हुए कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में मिल जाना, मतलब हमारा सोच के अंदर में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में दीवार होता है, उस दीवार को तोड़ देने का नाम योग निद्रा है। मतलब हमारा कान सुनते रहेंगे और शरीर स्पर्श होते रहेगा लेकिन हम रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट करते किससे, जब हम कॉन्शसनेस से पहचानते हैं तो। अब कॉन्शसनेस को हम काम देते हैं तो इसमें 3 प्रक्रिया होता है। नंबर एक, हमारा कॉन्शस माइंड को हम अपना अंगों में ले जाते हैं, लेट करके आंख बंद करके अपना पूरा मन को, चित्त को, जो सिर के सिरे पर जहाँ ब्रह्मरंध्र कहलाता है वहाँ पर केंद्रित करते हैं। वहाँ से केंद्रित करता हुआ उसको हम मेरुदंड के ऊपर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर रिंग के नीचे, रिंग बीच में जगह पर, इस तरह हमारा कॉन्शस माइंड को चलाते रहते हैं। ऐसा पूरा मेरुदंड के ऊपर, रिंग के नीचे, रिंग बीच में जगह जहाँ पर मज्जा, बोन मैरो कहते हैं, तो उसको देखता हुआ नीचे तक आते हैं। अब ऊपर से जो रंध्र निकला हुआ है वो मेरुदंड के आखिरी कोना पर वो जो रंध्र निकलता है, अब उसके अंदर में से हम छीनता हुआ, उसके अंदर में रोशनी देखता हुआ ऊपर को पहुंचेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, पूरा सीधा हाथ सीधे तरफ, इसमें पूरा शरीर के अंदर में हर अंग प्रत्यंग में से पूरा हम अपना मन को गुजारेंगे। इससे क्या होगा, आज तक हम मन का बात सुनते आए हैं, अब हम क्या करेंगे, मन को काम दे रहे हैं, मतलब हम धीरे धीरे मन का काबू में से बाहर आ रहे हैं। इस तरह हम पूरा शरीर को करने के बाद दूसरा एक स्टेप होता है जिसमें हम मन को बिल्कुल काम नहीं देते हुए लेटे रहेंगे, जिसको असली योग निद्रा बोलते हैं। इस तरह हम 15-20 मिनट बिना किसी संपर्क का ऐसा लेटे रहेंगे। इस तरह 5 मिनट हड्डियों में और शरीर में देखना और 15-20 मिनट बिना संकल्प का रहना, लगभग 35 मिनट का विधि है, जिससे हम 6-7 घंटा सोने से जो आराम मिलता है वो आराम 35 मिनट में मिल सकता है।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन योग निद्रा पर चैतन्य गुरु जी से। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय।

श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतिहारा वास्ते। जानकारी का विषय रहेगा मूंगफली की फसल में सामयिक कार्य। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मानस गान भाग संख्या 307। सुप्रभात कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:30। चर्चा के विषय रहेंगे श्रेष्ठ जन की संगति, परोपकार की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक वार्ता, सुखी जीवन का मूल मंत्र, तनाव प्रबंधन कला। वार्ताकार होंगे डॉक्टर शिव कटारिया। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कुछ भजन कार्यक्रम सुगम संगीत में। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। कलाकार होंगे दलीप चोड़ा। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कुछ युगल गीत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। सुबह 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम गा मेरे मन गा। आपकी फरमाइश पर आधारित गीतों का कार्यक्रम गीतमाला आप सुनेंगे दिन के 11:00। दिन के 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद गजलें दिन के 12:30 पर। दिन के 12:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय रहेगा बरसात के पानी का सदुपयोग। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे बच्चों में संस्कार, महिलाओं में बढ़ती जीवन शैली बीमारियां, सफर में सावधानियां और स्प्राउट्स सलाद। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन के 2:30 पर। शाम 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। सराइकी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05 पर। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गीता रो गजरो। इसके अलावा बाजार भाव और मौसम की जानकारी। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चंद गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। मिट्टी दी खुशबू ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा खाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल के जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC Under-17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

कार्यक्रम सुनने सगळे परिवारान अजय भाई का राम राम। किसान भाइयों आज बात करांगा मूंगफली की फसल गेमा आ दिना खरीदने वाले कामकाज। किसान भाइयों मूंगफली की फसल गेमा आ दिना खरीदने वाले कामकाज की जब बात आवे तो सबसे पहले बात करा निराई गुड़ाई की। तो बुनटांग में फूल आने से पहला अपन निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। फूल आने के बाद में कोई भी निराई गुड़ाई जकी है कसी है या खुरपी से खरीदे को नहीं, इन खातर की जरूरत हुए तो दूसरी निराई गुड़ाई भी बेगे शुभे को अपन पूरी कर देनी चाहिए। किसान भाइयों बात करा खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण खातर भी तो अपन निराई गुड़ाई शू खरपतवार नियंत्रण कर लिया हाँ, फिर भी अगर रेतीली मृदा जटे हुए बटे मूंगफली में भूरट खरपतवार की समस्या हुए बटे पेंडीमेथालीन 30 EC की 175 ग्राम की मात्रा को प्रयोग जो है या तो बुआई के 2 दिन बाद में करीजे या फिर 6 हफ्ते बाद में सिंचाई के तुरंत बाद में छिड़काव कर देना चाहिए। मीशू इन बुरट खरपतवार की समस्या जकी है वहीं पर नियंत्रण करो जा सका है। किसान भाई बात करा सिंचाई की, तो मूंगफली की खड़ी फसल में 3-4 सिंचाई अपन करनी चाहिए। पहली सिंचाई तो बुआई के करीब 25-30 दिन बाद में करी जानी चाहिए और दूसरी सिंचाई जकी है वह अगस्त के पहले पखवाड़े में कर देनी चाहिए। फूल आने पर सुइयां बन पर या फली के बनने के टाइम भूमि में नमी होना बहुत जरूरी, इन खातर अगर टाइम पर बिरखा हो जाए तो सिंचाई देना जरूरी कोनी। लगभग आप देखा भी सितंबर के बाद में सिंचाई जकी है वह नहीं करनी चाहिए, नहीं तो के फसल के पकड़ गए टाइम लाग। किसान भाई बात करा रोग और कीटांग की भी रोग और कीट शू भी किए कि अपन फसल ने किए बचाव करके राखनो है, तो खड़ी फसल के माँ दीमक और सफेद लट जकी है वह लाग जाए कई बारी, तो भी रोकथाम करण खातर अपन क्लोरोपायरीफॉस 20 EC 600 मिलीलीटर 1 बीघे के हिसाब से सिंचाई के पानी के सगे अपन प्रयोग करनी चाहिए। किसान भाई मोयला या चेपा रोग की अपन बात करा तो इनको प्रकोप जो है वो अगर दिखे तो 250 मिलीलीटर मिथाइल डिमेटोन या डाइमिथोएट या 300 मिलीलीटर मेलाथियन 1 बीघे के हिसाब से छिड़काव कर गए आप मोयला या चेपा से आप अपनी मूंगफली की फसल ने नियंत्रित कर सका। किसान भाई बात करा कातरा की, तो कातरा की रोकथाम करण खातर 6 किलो मिथाइल पैराथियन 2 सैकड़ा चूरण 1 बीघे के हिसाब से अपन भुरकाव कर देना चाहिए जैसे शू किएगी कातरे से आप अपनी फसल ने बचारो कर सका। किसान भाइयों रोग नियंत्रण की जड़ तक आप बात करें तो टिक्का बीमारी की बात करें तो टिक्का बीमारी को अगर प्रकोप हो जाए तो कार्बन डेजिम 50 सैकड़ा WP 0.1 सैकड़ा यानी 1 ग्राम 1 लीटर पानी या मेनकोजेब 0.2 सैकड़ा के घोल शू 1 बीघे के हिसाब से अपन छिड़काव कर देना चाहिए। इनके अलावा किसान भाइयों एक्जा कोनाजोल 5 EC 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के दर्शन भी आप पहलो छिड़काव बीमारी के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर और दूसरो छिड़काव जो है 15 दिन के अंतराशु आप कर सका हाँ और ये बीमारी पर आप प्रभावी रूप से नियंत्रण कर सका। किसान भाइयों खड़ी फसल के माँ कई बार की संधि विघलन रोग भी लग जाए जखन कोलर रोट भी कहवा, तो खड़ी फसल के माँ संधि विघलन या कोलर रोट की रोकथाम करण खातर प्रोपिकोनाजोल 25 EC या हेक्जा कोनाजोल 5 EC 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मृदा निक्षेप या सिंचाई पानी के सागे 200 मिलीलीटर प्रति बीघा के हिसाब से अपने देना चाहिए। किसान भाइयों इंग अलावा जो है वो अगर कोलर ओट या संधि विघलन और टिक्का बीमारी जकी है बिंगो आप इकट्ठो अगर प्रबंधन करना चाहवा तो आ रोगों की रोकथाम करने खातर टेबुकोनाजोल 2 DS 1.5 ग्राम 1 किलो हिसाब से बीज उपचार कर लिया और बुआई गए 15 दिन पहला आप 1 किलोग्राम ट्राइकोड्रमा वेल्डी 1 बीघे के हिसाब से अपन 12-15 किलो सड़ी अड़ी जकी गोबर की खाद है बिंग में मिला गए और छिया में रख गए और बुआई के टाइम भूमिंग में मिला गए और इनके बाद सागे ही ट्राइकोड्रमा वेल्डी की मात्रा जकी है बिन 40 दिन की फसल की अवस्था पर माटी में मिला देना चाहिए। इन उपचार शू कोलर रोट को प्रभावी नियंत्रण करो जा सके है। इंगे सागे सागे टेबुकोनाजोल 25.9 सैकड़ा EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर शू पहलो पर्णीय छिड़काव बीमारी के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर और दूसरो छिड़काव जो है 15 दिन का अंतरेश कर देना चाहिए जैसे सिर्फ टिक्का बीमारी को नियंत्रण करो जा सके। किसान भाइयों यह बात आप ध्यान रख गए और अपनी मूंगफली की फसल जकी है बिंगमा की है कि कामकाज करना है आदिना और जकी है बात कई खड़ी फसल गेमा कीट और व्याधियां का खड़ी फसल गेमा कीट और व्याधियां प्रकट हुए तो मीठे नीम के बीज को पाउडर गेमा 5 सैकड़ा घोल को छिड़काव कर देना चाहिए। और किसान भाइयों इंगे सागे सागे जकी आप बुआई आल टाइम जकी बात ध्यान में रखी ही भी चौखी जकी किस्म है बीज की बात आप ली ही और बेचुकी आप चौखो उत्पादन ले। और

0: इंगे सागे सागे किए क्या पांच की है। मैं बुआई शूं लगभग 15 दिन पहला खेत में 250 किलो प्रति 4 बीघा के दर्शन अपन नीम की खड़ गो प्रयोग आपा कर गए और आपने खेत ने तैयार करे हो और आगे भी आपा भविष्य में भी आपने खेत ने तैयार यहाँ ही करना है। आज खातर इतो ही अजय भाई ने दिया गया राम राम सा।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती हराम वास्ते। जानकारी का विषय था मूंगफली की फसल में सामयिक कार्य। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक लोक भजन दूली चंद तिर्दिया की आवाज में।

ये लोक भजन आप सुन रहे थे दुलीचंद तेड़दिया की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 307।

कर्णफूल के कटकर गिरने से मंदोदरी सोच में पड़ गई थी। वो श्रीराम के व्यापक स्वरूप और पराक्रम की कल्पना भली भांति कर सकती थी। शिव जिनके मान, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन और विष्णु चित्त हैं, उन्हीं जगदीश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया है। वो पति को ये सब कुछ समझाने की भरसक चेष्टा करती है, किंतु रावण उसकी बात हंसकर ये कहते हुए टाल देता है, सच ही कहते हैं कि नारी के हृदय में छल, भय, चंचलता, झूठ, अविवेक, अपवित्रता तथा निर्दयता का निवास होता है। मंदोदरी द्वारा वर्णित भगवान के विश्वरूप के तत्व तो स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, अतः उनसे भय कैसा? हो न हो, अपने कथन से वो उसकी प्रभुता की ही महिमा बखान रही है। रानी की गूढ़ बातें रावण के लिए विनोद का हेतु बन गईं। आमोद प्रमोद के क्षण बीत जाते हैं, सवेरा होता है। जिस प्रकार बादलों द्वारा बरसाया गया जीवनदायी जल पाकर भी बेंत फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकार मंदोदरी समझ लेती है कि उसका पति काल के वश में हो गया है, उसकी मति मारी गई है। ऐसे में तो ब्रह्मा जैसा गुरु भी उन्हें ज्ञान नहीं दे सकता। इधर श्रीराम की सभा में वृद्ध जांबवान ये परामर्श देते हैं कि अंगद को दूत के रूप में रावण की सभा में भेजा जाए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान भाग संख्या 307, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं परोपकार की भावना के बारे में। परोपकार वो महान गुण है जो मानव हृदय को उदार बनाता है और समाज में मेलजोल, प्रेम तथा भाईचारे की नींव रखता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई, सुख और आत्मसम्मान को अपनी प्राथमिकता बनाता है, तब वह परोपकारी कहलाता है। परोपकार केवल दान धर्म तक सीमित नहीं, ये समय देना, किसी की बात ध्यान से सुनना, सहायता के लिए हाथ बढ़ाना और मुश्किल परिस्थितियों में साथी का साथ देना भी है। छोटे छोटे कर्म, किसी बुजुर्ग को रास्ता दिखाना, जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराना या किसी विद्यार्थी को मार्गदर्शन देना, ये सब भी बड़े सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत बन सकते हैं। परोपकार का मूल विचार आत्मकेंद्रितता से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को अपना दुख मानना है। यह भावना व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक संतोष देती है बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर परोपकार को अपनाए तो भ्रष्टाचार, स्वार्थ और भेदभाव जैसी कुरीतियां कम होकर मानवता की उजली राह प्रशस्त कर सकती है। अतः परोपकार न केवल निस्वार्थता का प्रतीक है बल्कि एक शक्तिशाली समाज सुधारक नैतिक आदर्श भी है। इसलिए परोपकारी बने, महान बने, इंसान बने।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत था उषा खन्ना का, गीत के बोल थे निदा फाजली के। फिल्म का नाम था आप तो ऐसे ना थे। ये जो बेवजह की उलझनों में घेरे हो खुद को, ये जो बेवजह की उलझनों में घेरे हो खुद को, बस इतना याद रखो ये उलझने हमेशा यहीं रहेंगी मगर तुम नहीं। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं एक वार्ता, सुखी जीवन का मूल मंत्र, तनाव प्रबंधन कला। वार्ताकार हैं डॉक्टर शिव कटारिया। लीजिए सुनिए।
1: सभी सम्माननीय श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। चुनौतियों से भरी इस जीवन यात्रा में तनाव का आना तो तय है, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि तनाव को दूर रखने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ रुककर यह समझने की जरूरत है कि जिस तरह हर ताले की चाबी, हर प्रश्न का उत्तर तथा प्रत्येक समस्या का समाधान मौजूद है, तो फिर तनाव से घबराना क्यों है? आज के प्रतिस्पर्धी दौर में जब गांव गुहार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति का माहौल है, महंगाई अपने चरम पर है, तब प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करने के दौरान बहुत सारे लोग तनाव का

शिकार हो रहे हैं। तनाव में हो रही निरंतर वृद्धि से मानसिक व शारीरिक परेशानियां भी निरंतर बढ़ रही हैं। दुख तब होता है जब तनाव को न झेल पाने के कारण कुछ लोग जीवन से क्विट कर जाते हैं। यह तो कतई उचित नहीं है। जीवन जैसा भी है अनमोल है, उसे फेस करने में ही समझदारी है। जीवन है तो तनाव तो आएगा ही, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्थिति को यदि समझें तो तनाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तनाव के कई कारण हैं, जिनमें अशिक्षा के कारण उपजी अज्ञानता व समाज में बनी असंतुलन की स्थिति, जीवन जीने की कला का विधिवत ज्ञान न होना, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा अन्य मीडिया माध्यमों से परोसी जाने वाली दिग्भ्रमित कर देने वाली सामग्री भी तनाव का एक बड़ा कारण बन रही है। दैनिक जीवन में उपलब्ध जनोपयोगी सेवाओं में मौजूद विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार समाज में तनाव की परिस्थितियों में वृद्धि कर रहा है। जीवन के दर्पण में झांकने पर मालूम पड़ता है कि सेल्स से जुड़े लोग कई बार टारगेट पूरा नहीं कर पाने के कारण तनाव में आ जाते हैं। कोई नौकरी न मिल पाने के कारण तो माता पिता बच्चों के भविष्य को लेकर, अकेलापन, अनियंत्रित खान पान से बिगड़े स्वास्थ्य को लेकर के भी लोग तनाव का शिकार हो रहे हैं। जीवन के सफर में जब डिमांड, थ्रेटफुल जैसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है और हमें उस समय ये महसूस होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हम उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें तनाव होता है। जिंदगी की यात्रा में एक मुसाफिर के रूप में हम सभी को भावनात्मक, शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता ही है। इनसे उत्पन्न मानसिक तनाव के संभावित नुकसान के डर से हम तनावग्रस्त होते चले जाते हैं। इस तनाव को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, किंतु इसका सटीक प्रबंधन करके तनाव से काफी हद तक अपना बचाव अवश्य कर सकते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेगेटिव बिहेव को लेकर हम तनाव में आ जाते हैं। कई अवसरों पर तो कई बार रिलेशनशिप की वजह से तनाव के हालात पैदा हो जाते हैं। विभिन्न तरह के शोध परिणामों में यह बात उभर कर आई है कि सही तरीके से तनाव प्रबंधन नहीं कर पाने की वजह से हमें शारीरिक इफेक्ट यानी प्रभाव झेलने पड़ते हैं। ऐसे में तनाव का शिकार व्यक्ति तेज सांस लेने लगता है, सोना भूल जाता है या फिर सारा दिन सोता ही रहता है, उसे पसीना आने लगता है, उसे बहुत गुस्सा भी आने लगता है। ऐसी स्थिति में तनाव से प्रभावित व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता है। व्यक्ति में एनर्जी नहीं बचती है, यानी एनर्जी कमजोर होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति अपने इमोशंस को संतुलित नहीं कर पाता, बहुत सी चीजें उससे मिस होने लगती हैं, उसे भूलने की आदत पड़ जाती है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने लगता है। तनाव को कंट्रोल न कर पाने के कारण व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। शोध में यह भी सामने आया है कि तनाव का असर कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति हृदय रोग को भी आमंत्रित कर बैठता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति का वजन कभी कम तो कभी अधिक होने लगता है। साथ ही तनाव के शिकार व्यक्ति की मेमोरी अर्थात याददाश्त पर भी विपरीत असर पड़ने लगता है। बड़ी ही सूझबूझ का परिचय देते हुए व्यक्ति को तनाव से घबराने या डरने के बजाय तनाव प्रबंधन की कला को समझना व सीखना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए व्यक्ति को अपने परिवारजनों के साथ संबंधों को निरंतर बेहतर करने पर जोर देना चाहिए। अपने सुख दुख की बातें अपने फैमिली मेंबर्स से कम्युनिकेट करने से निश्चित ही तनाव कम होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक जीवन में आप अकेले नहीं रह सकते। हर व्यक्ति को कोई ना कोई चाहिए अपनी भावनाएं साझा करने के लिए। इसलिए हमारा प्रयास हो कि पब्लिक रिलेशंस को मजबूत किया जाए। इससे आपको न केवल खुशी मिलेगी बल्कि आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। यह भी तनाव कम करने की महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि हम तनाव प्रबंधन की कला के जरिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हर रोज आधा या एक घंटा एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना चाहिए। इसे चिकित्सकों ने फायदेमंद बताते हुए प्रमाणित किया है। प्रकृति से निरंतर कनेक्ट करना भी तनाव प्रबंधन का बेहतरीन उपाय है। प्रकृति से जुड़ाव के लिए ऐसी जगह जाएं जहां बहुत सारे पेड़ लगे हों, बहुत सारे फूल खिले हों, या फिर कहीं सुंदर तालाब हो, झील या फिर झरना हो, कहीं सूर्योदय होने की खूबसूरत लोकेशन हो या फिर सूर्यास्त का सुंदर व मनमोहक दृश्य नजर आए, आकाश या हवा को महसूस करने वाली बेहतरीन लोकेशन हो। ऐसे स्थानों का निरंतर विजिट करते रहने से स्ट्रेस में निश्चित ही कमी आती है।

सकती है। साथ ही हम बागवानी के शौक को, रुचि को डेवलप करते हुए घर में गमले लगाएं, जिनमें अलग अलग वैरायटी के खूबसूरत फूल लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें तथा आवश्यकता अनुसार खाद पानी दें, तो इससे भी तनाव में कमी आती है। अपने स्वभाव को सरल व सौम्य बनाने पर भी काम करें, क्योंकि जिद व अकड़ से भी तनाव में वृद्धि की संभावना निरंतर बनी रहती है। तनाव प्रबंधन के लिए थोड़ा वक्त ऐसा भी निकालें कि आप बच्चों के साथ खेल सकें। जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो आप दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने बच्चों

0: हमें अपनी दैनिक आदतों को ठीक करने पर गंभीरता से विचार करना होगा। माइंड को कूल रखते हुए खुशियां बांटने की आदत को विकसित करें, इससे भी तनाव को कम करने में मदद मिलती है। अपनी जीवन यात्रा में लोगों से इंटरैक्ट करें, उनके साथ अंगेज रहने की कोशिश करें, लोगों की बातें सुनें और उचित होने पर उन पर विश्वास भी करें, साथ ही उनका विश्वास जीतें भी। जो खुश रहते हैं तथा आसपास के लोगों को खुश रखने का प्रयास करते हैं, इससे भी तनाव में कमी आती है। और कहा भी गया है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तनाव प्रबंधन के लिए दिनचर्या में अधिक ठंडे पेय या सोडा के उपयोग से परहेज करें, इससे भी तनाव में बढ़ोतरी होती है। जल का सेवन अधिक से अधिक करें, यह हेल्थ के लिए बेहतर बताया गया है। ना चाहते हुए कई बार हम किन्हीं कारणों से टेंशन में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके पास अगर वक्त हो तो लंबी सैर पर निकल जाएं और तब तक वॉक करें जब तक कि आप थक ना जाएं। यदि इसका लॉजिक समझेंगे तो पता चलेगा कि शारीरिक तौर पर थकने से हमें अच्छी नींद आएगी। इस प्रक्रिया में ध्यान रखें कि लॉन्ग वॉक पर खुद से बातें करें, इससे निश्चित ही तनाव कम होगा। आजकल हालात और परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि बिन बुलाए मेहमान की भांति तनाव अचानक आ धमकता है। ऐसे में विद्वान समझाते हैं कि तनाव की घड़ियों में विशेष रूप से भगवान पर भरोसा करें तथा प्रार्थना करें, इससे तनाव कम होगा तथा सुकून का एहसास होगा। कई बार तनाव के चलते रात्रि के समय नींद नहीं आ रही हो तो ऐसे में स्वयं को समझाएं कि आप उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए ही काम करते हैं, यानी स्वयं को उनका नौकर माने। रात को सोने से पहले कार्यभार ईश्वर को सौंप दें और उनसे मन ही मन आग्रह करें कि मैंने आज का काम बेहतर ढंग से किया और अब मैं सोने जा रहा हूँ। अगले दिन फिर से अपने कार्य का चार्ज लेकर बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी निभाएं। इस तरह प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन कार्य करने की कोशिश करेंगे तो इससे निश्चित ही तनाव के ग्राफ का लेवल स्वयं ही नीचे गिरता दिखाई देगा। हमें यह भी समझना होगा कि जिंदगी के सफर में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कई बार अचानक किसी घटना के घट जाने पर आप टेंशन में आ जाते हैं। ऐसे में कोशिश करें उस घटना वाली जगह से फौरन हट जाएं, वहां खड़े या बैठे ना रहें। उस पोजीशन से मूव कर जाने पर आपको तनाव से कुछ राहत मिलेगी। दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति के नकारात्मक व्यवहार से अचानक आप गुस्से में आ जाते हैं, जिससे आपके तनाव का परसेंटेज बढ़ जाता है, तो ऐसे में आप वॉक कर सकते हैं, एक दो गिलास पानी पी सकते हैं, इससे भी तनाव में कमी आती है। चैलेंज भरे वर्तमान दौर में हर इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब बहुत अधिक हाई टेंशन को वो व्यक्ति फेस कर रहा होता है। इन तनाव की घड़ियों में इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोचें। तनाव के उन पलों में जिंदगी का कोई भी बड़ा एवं महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, बल्कि उसे तत्काल पॉज कर दें और स्वयं को समझाएं कि इस पर मैं 24 घंटे बाद निर्णय लूंगा, क्योंकि अत्यधिक तनाव के समय आपका एक गलत फैसला जीवन भर के पछतावे का सबब बन सकता है और 24 घंटे के बाद शांत मन से लिया गया निर्णय संभवतः आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो। तनाव की मुश्किल घड़ियों में स्वयं को समझदार बनाएं, इसके लिए दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचें। ऐसे समय में अपने पसंदीदा कार्यों को करें, जैसे महिलाओं को शॉपिंग पसंद होती है, वे शॉपिंग करके टेंशन के टाइम को पास करें। तनाव से दूर जाने के लिए अपनी पसंद की मूवी देखें, फेवरेट म्यूजिक सुनें। कोई इंडोर या आउटडोर खेल पसंद है तो वह गेम खेलें। ऐसी कोई भी गतिविधि या एक्टिविटी करें जिससे आपके मन को खुशी मिलती हो, इससे निश्चित ही स्ट्रेस में कमी आएगी। सीधी स्पष्ट व दो टूक बात विद्वान समझाते हैं कि स्ट्रेस से बचने में ही समझदारी है और इसके लिए बदलते वक्त के साथ स्वयं को अपडेट व एडजस्ट होने की आदत को विकसित करें। हो सके तो खुद को फ्लेक्सिबल नेचर वाला बनाने का प्रयास करें। शोधकर्ता सलाह देते हैं कि एक माह से अधिक समय से लगातार आप यदि तनाव में हैं तो चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि जीवन अनमोल है। इस जीवन का भरपूर आनंद लें, स्वयं को निरंतर सकारात्मक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। तनाव के क्षण भी अंततः गुजर जाते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। जीवन को आनंद से जिएं, जीवन से क्विट नहीं करें बल्कि समझदारी से इसमें फिट होकर अंत तक अपनी जीवन यात्रा को यादगार बनाएं।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे वार्ता सुखी जीवन का मूल मंत्र, तनाव प्रबंधन कला। वार्ताकार थे डॉक्टर

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। संगीत था उत्तम जगदीश का, गीत के बोल थे वर्मा मलिक के और फिल्म का नाम था वारिस।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, सुप्रभात कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से अपने दोस्त गुलशन को दें अनुमति। नमस्कार, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार प्रभात।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार

0: और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और

0: गरीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमरीका में

0: प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमरीकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट UG 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट UG का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है होर्मूज पर जहाज़ों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है 2 नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से

दिल्ली हुकूमत ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स के साथ स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 5 बरस तक इख्तिरा और खुद रोजगार के लिए रकम इस्तेमाल की जाएगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पॉलिसी 11 रियासती यूनिवर्सिटियों, 13 हुकूमत के इमदाद याफ्ता कॉलेजों, ITI और हुकूमत के पॉलिटेक्निक इदारों का इहाता करेगी। दिल्ली हुकूमत के स्कूलों के तलबा इन इदारों में पॉलिसी के फवायद हासिल कर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि कामयाब तलबा को माली मदद फराहम की जाएगी। रियासती इंक्यूबेशन पॉलिसी निगरानी कमेटी पर मबनी एक पैनल तश्कील दिया जाएगा जो पॉलिसी के निफाज पर नजर रखेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर अपनी ताजियत का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अमीर कतर के वालिद की मीरास एक ऐसे वक्त में जबकि वो अपनी कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं, दोनों मुमालिक की रहनुमाई जारी रखेगी। उन्होंने भारत के लिए उनकी गहरी उनसियत, कतर में भारतीय बिरादरी के लिए गर्मजोशी और भारत कतर ताल्लुकात के लिए उनके अज़्म को याद किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने NEET UG 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 11 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और मुतालिका प्रोग्रामों में दाखिले के लिए क्वालिफाई किया है। सभी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड NTA की वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN पर दस्तियाब हैं। NTA ने कहा है कि नतीजों का ऐलान बरवक्त कर दिया गया है ताकि मेडिकल दाखिले और काउंसलिंग के प्रोग्राम मुतासिर ना हों। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 5,440 मराकज पर कराए गए दोबारा इम्तिहान में मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार बैठे थे। गुजरात के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन ज़िले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके नाम बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खलील अयूब सुनसारा, शफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन करदिया बताए गए हैं। इन अफराद को पाटन ज़िले के सिद्धपुर तालुका में खडियाल गांव से पकड़ा गया। इस महीने के शुरू में जैश ए मोहम्मद के 8 मुबैना कारिंदों से पूछताछ के दौरान इन 5 मुलजिमों के नाम सामने आए थे। इन 5ों को महसियाना ज़िले में जुडिशल मैजिस्ट्रेट RM भाटिया के सामने पेश किया गया और 24 जुलाई तक ATS की तहवील में भेज दिया गया। सरकारी वकील PR दंतानी ने अदालत को बताया कि इनमें से एक मुलजिम ने टाइम बॉम्ब बनाने की कोशिश की थी और बम बनाने के काम आने वाला सामान और जैश ए मोहम्मद का लिटरेचर अभी बरामद नहीं किया गया है, इसीलिए हिरासत में लेकर मुलजिमों से पूछताछ करने की ज़रूरत है। गोवा हुकूमत ने कसीनों से मुतालिक जाब्तों में सख्ती करते हुए 21 बरस से कम उम्र के लोगों की कसीनों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमाए दाखिला ने इस नई पाबंदी के निफाज के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में साहिल के नज़दीक कसीनों के जहाज़ों के लिए लाइसेंस की अदायगी के सिलसिले में भी जाब्ते सख्त कर दिए गए हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत का नौजवानों के उमूर का महकमा आज से माई भारत नेशनल यूथ वॉलंटियर कन्वेंशन का इनेकाद करेगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इस माह की 18 और 19 तारीख को 2 रोज़ा चिंतन शिविर होगा। वजारत ने कहा है कि एक के बाद एक 2 प्रोग्रामों का मकसद ज़मीनी सतह पर नौजवानों के राबतों को मुस्तहकम करना, इदारा जाती तालमेल को बढ़ाना और नौजवानों की क़्यादत में मुल्क की तामीर के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ईको निज़ाम तश्कील देना है। दोनों तकारीब में नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और नौजवानों के उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा नितिन खड़से दीगर सीनियर अहदेदारान के साथ शिरकत करेंगे। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के साथ अमन समझौता नाकाम हो जाने के तनाजुर में ईरान के खिलाफ लगातार 6ठी रात फौजी हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करना है, क्योंकि ईरान से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले

0: कमर्शियल बहरी जहाजों को खतरा लाहिक है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान में अमेरिका के हालिया हमलों में सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है और इन हमलों में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। केरलम में मलयालम दौर के कार्किडाकम महीने को रामायण महीने के तौर पर मनाया जाता है, जिसका आगाज आज से हो रहा है। इस मौके पर अकीदतमंद रूहानी कुव्वत और जहनी सुकून के लिए रामायण की तरफ मुतवज्जे होते हैं। कार्किडाकम का आज पहला दिन है और इसके साथ ही पूरी रियासत में कई घरों और मंदिरों में रामायण का पाठ रोजाना का मामूल बन जाता है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अरकान और आला ओहदेदारान के साथ आला सतह की मीटिंग की सदारत की और पवित्र श्री माता वैष्णो देवी जी मंदिर में चढ़ावे और अतियात वगैरह के बंदोबस्त के निजाम का जायजा लिया। इस सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत, जवाबदेही और कामकाज से मुतालिक तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की खातिर एक जामे जायजा पेश किया गया। मर्दों के क्रिकेट में कल रात कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में दूसरे एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की क़्यादत में भारतीय टीम 44 ओवर्स में महज 233 रन ही बना पाई। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 66 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 65 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 99 रन स्कोर किए और वो नॉट आउट रहे, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब दोनों टीमें लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट मैदान पर इतवार के रोज इस सीरीज का आखिरी और फैसलाकुन मैच खेलेंगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार की रात को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज हरियाणा दौरे से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज हरियाणा में मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सरहदी सड़क तंजीम BRO की स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से मुतालिक खबर को भी अखबारों में नुमाया तौर पर शाये किया गया है। रोजनामा इनकलाब ने इस दौरान दिए गए उनके इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि जदीद हथियारों के बावजूद स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत बरकरार है। सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाहें फौजी मुहिमात और कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात ATS ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा कर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ भजन।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भजन।

0: इस भजन के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। विदेश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इनमें राज्य के 8 स्टेशन शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार शहीद परिवार, पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित किया। राजस्थान के 5 विद्यार्थी शीर्ष 20 में शामिल और राज्य में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों में पिछले एक माह में करीब 2 लाख लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद

0: और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित होगी। इस तकनीक में हाइड्रोजन को बिजली में बदला जाता है। इसके संचालन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। ये रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ही डिजाइन और एकीकृत की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इनमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर होने वाले समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। इस योजना के तहत बाड़मेर रेलवे स्टेशन को लगभग 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रेलवे स्टेशन का यह कायाकल्प भारतीय रेल की आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित रेलवे प्रणाली के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के अलावा भारत के पर्यटन मानचित्र पर थार नगरी की पहचान को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह रेलवे स्टेशन मरुस्थलीय इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार शहीद परिवारों, पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। उन्होंने ये बात जयपुर में सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सैनिकों और उनके परिजनों से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय सेना की वीर गाथाओं और शौर्य के प्रतीकों से आमजन को परिचित कराने की योजना बनाने को कहा। साथ ही प्रदेश भर में शहीद स्मारकों के रखरखाव और उनके एक रूपीय मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मॉनसून तैयारियों की समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने नालों की समय पर सफाई, जल निकासी की समुचित व्यवस्था और बारिश के बाद टूटी सड़कों की जल्द मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिन के इस अभियान में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जा रही है। वहीं ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद 8 महिलाओं और एक नाबालिग की मौत के मामले में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने बताया कि मृतकों में 5 महिलाओं की मृत्यु भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी अस्पताल में हुई, जबकि 3 महिलाओं और एक नाबालिग की मृत्यु बांसवाड़ा जिला अस्पताल में हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। NTA ने कहा कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। राजस्थान के 5 विद्यार्थियों ने भी शीर्ष 20 रैंक में जगह बनाई है। गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद 21 जून को देश विदेश के 551 शहर

0: में 5,440 केंद्रों पर 13 भाषाओं में पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रदेश भर में आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों के लंबे समय से लंबित कार्यों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार के अनुसार 12 जून से 15 जुलाई तक 18,953 सेवा शिविर लगाए गए। इनमें लगभग 10,500 ग्रामीण और 8,000 से अधिक शहरी शिविर शामिल हैं। ग्रामीण शिविरों में 1,90,000 से ज्यादा नामांतरण और 1,00,000 से अधिक पट्टों का वितरण किया गया। लगभग 17,500 रास्तों के प्रकरण सुलझाए गए। शहरी शिविरों में 42,252 पट्टे जारी किए गए। 13,000 से ज्यादा नामांतरण के मामलों का निस्तारण हुआ। शिविरों में कई अन्य सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई। झालावाड़ में राजसखी मार्ट और कैफे शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि ये कैफे केवल उत्पादों की बिक्री का केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं के हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच है।
1: इस पूरे कैफे को और इस डिपार्टमेंटल स्टार को हमारी जो राजीव गांधी जो महिलाएं हैं वही संचालित करेंगी। सेल्समैन से लगा करके, कुक से लगा करके और रिसेप्शनिस्ट तक सारा का सारा ये कैफे राज सखी के नाम से जाना जाएगा और जो हमारी राजीव गांधी महिलाएं हैं वो इसे संचालित करेगी। यहाँ पर जो राजीव का की महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन भी होगा, उनका एक तरह से शोकेसिंग भी होगी और जो भी आसपास जो यहाँ झालरापाटन में पर्यटक आते हैं उनको एक स्तरीय कैफे यहाँ मिलेगा।
0: राजस्थान पीसीपीएनडीटी टीम ने हरियाणा के डबवाली में डिकॉय ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक दलाल को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन अकड़ तोड़ के तहत की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि आरोपित लंबे समय से राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय था। वो गर्भवती महिलाओं को हरियाणा ले जाकर अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण कराने का काम करता था। टीम ने डिकॉय ग्राहक के जरिए उसे रंगे हाथों पकड़ा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विधायी गौरव यात्रा तथा पूर्व और वर्तमान विधायकों के ऐतिहासिक समागम की देश भर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित अनेक गणमान्य लोगों के बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इनमें राज्य के 8 स्टेशन भी शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार शहीद परिवार, पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित किया। राजस्थान के 5 विद्यार्थी शीर्ष 20 में शामिल और राज्य में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों में पिछले माह में करीब 2,00,000 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं दलीप चोड़ा।

0: मरुमंगल कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं दलीप जोड़ा को।
1: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144 67186।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

इस कार्यक्रम में कलाकार थे दिलीप जोड़ा। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ युगल गीत।

0: ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। संगीत था जतिन ललित का, गीत के बोल थे मदन पाल के और फिल्म का नाम था राजू बन गया जेंटलमैन। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई।

0: आई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: के बोल थे समीर के। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में। संगीत था आनंद मिलिंद का, गीत के बोल थे समीर के और फिल्म का नाम था दिल। अंत में आइए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में कुछ युगल गीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गा मेरे मन गा। ये कार्यक्रम है थीम पर आधारित और आज की थीम है प्यार, इश्क और मोहब्बत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गैंगस्टर फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज है KK की, संगीत प्रीतम का और गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने। चंद अल्फाजों के साथ कार्यक्रम का पहला गीत, मोहब्बत ना समझ नहीं होती, मोहब्बत खुद गर्ज भी नहीं होती, मोहब्बत को समझने की नहीं महसूस करने की जरूरत होती है, मोहब्बत खुददार होती है। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी आते हैं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये गीत आप सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज़ में फिल्म जहर से। संगीत था रूप कुमार राठौड़ का, गीत के बोल थे सईद कादरी के।

0: ये गीत आप सुन रहे थे नंदनी श्रीकर और अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत था विशाल एंड शेखर का और गीत के बोल थे कुमार के। फिल्म का नाम था शंघाई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।

0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: वो लम्हे। इस फिल्म में आप सुन रहे थे ग्लेन जॉन को। संगीत था प्रीतम का, गीत के बोल थे सईद कादरी के।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: ये गीत आप सुन रहे थे केके की आवाज में। फिल्म का नाम था द किलर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: ये गीत आप सुन रहे थे केके की आवाज़ में, फिल्म जन्नत 2 से। संगीत था प्रीतम का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: ये गीत आप सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज़ में, फिल्म का नाम था बदलापुर। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। इस छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाइएगा नहीं, अभी लौटते हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मस्ती से, आवाज थी आनंद राज आनंद की। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीतकार थे आनंद राज आनंद।

0: ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मस्ती से, आवाज थी आनंद राज आनंद की। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीतकार थे आनंद राज आनंद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये गीत आप सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज़ में। फिल्म का नाम था कलयुग। संगीत था गौहर मुमताज का, गीत के बोल थे सईद कादरी के। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं रोग फिल्म से ये गीत।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 11 बज चुके हैं, कार्यक्रम सुने गीतमाला।

0: दोस्तों, आवाज़ और साज के ज़रिए आपसे मिलने की बहुत तमन्ना रहती है, बहुत इंतज़ार रहता है। चंद अल्फाज आपके लिए पहले गाने के साथ। आज फिर दिल धड़का है बहुत, आज फिर दिल धड़का है बहुत, दिल से दिल को रास्ता है बहुत। आज फिर दिल धड़का है बहुत, दिल से दिल को रास्ता है बहुत। और खुदा करे ये इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी ना हो, खुदा करे ये इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी ना हो। तुमसे मिलने की तमन्ना है बहुत।
1: कहीं से अब तो बोल दे सजनी।

दोस्तों, गीतमाला कार्यक्रम का पहला गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म थी नाच उठा संसार। ये गाना हमने पेश किया आप सबके लिए। आप हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, परखर, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। खोखरामवाली से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। आप लिखते हैं चक 15 PS से सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन, रोबिन सिंह जोशन, KR भाटिया और आपके साथ हैं विजयपाल सिंह। सुल्तानपुर UP से लिखते हैं यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह और आपके परिवार के लोग। टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छापड़ा, इंद्रजीत कौर छापड़ा, स्वीटी छापड़ा। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से लिखते हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूणत और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। हनुमानगढ़ टाउन से लिखते हैं रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। आप हैं श्यामलाल राजपाल, संदीप कुमार, जयपाल, चिमनलाल, मंडी, केसरी सिंहपुर से। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सभिया, अनस और रेहान। और मंसूरी रेडियो क्लब मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सविस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। और आप हैं दूलापुर UP से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। बनवाला हनुमंता फाजिलका से लिखते हैं विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और मायल परिवार। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। और अरायण से बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता दिशा, मोक्ष सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। आपने संदेश भेजा है बागपत UP से। यही गाना हमने आपको भी सुनवाया धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशार सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। और कार्यक्रम का अगला गाना हम आप सभी साथियों को सुनवाना चाहते हैं। आप हैं हमारे साथी।

सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, परल विलिस डिकेस्ट्रो, गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले आप लिखते हैं, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से और रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, सूरतगढ़ से आप लिखते हैं लेखराज, पवन कुमार, सुरजीत, रवि और कुंदन लाल, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मनत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदेश हमें भेजा है, सूर्यवाला से संदेश मिला है, डॉक्टर सतनाम सिंह सवना, जसविंदर जसी और सुमन आप हैं, हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, मुकेश कृष्ण रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी और आपके परिवार के लोग, करणपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया और कलमंडी खुर्द, झालावाड़ से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह पंवार और राजपुताना परिवार आपने संदेश भेजा है, उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु खोरवाल और आपके बहुत से साथी, गंज टुंडवारा से लिखते हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तोशीफ और मोहम्मद तैमूर हाशमी, न्योला रामपुरा से सुरेंद्र डीडन, सकीला डीडन, संदीप अनवर अकू बावरा और आपके साथी, केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महेंद्रा, हीरा लाल गजरा, अशोक मित्तल और ताराचंद दायमा, कोहला से लिखते हैं महावीर सुथार, सुनील सुथार, मोहन सुथार, अमरजीत सुथार, दुलीचंद सुथार, भजन लाल और अगला का नाम आपको भी सुनवाना चाहते हैं, आप हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नीति कुमारी, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से आपने संदेश भेजा है, घमंडिया से हमारे साथी हैं जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमना, साइना, विष्णु ढूकिया और बेबी ईवा धारणिया और आप हैं ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा आपने संदेश किया है, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ MP से और मुजफ्फरनगर UP से रेणु शर्मा, आप सभी को सुनवाते हैं हम ये गाना, सुनिए है।

दोस्तों, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और कृष्णा कल्ले की आवाज़ में गाल गुलाबी नैन शरावी फिल्म का ये खूबसूरत दो गाना। अगले गाने के लिए हमें संदेश मिले हैं हमारे आप सभी साथियों के, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और साथ में है डब्बू, कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, गांव 4M से कुलविंदर सिंह, सुप्रीत और जसदीप, राजकोट से जेमिनी जैन, हेतल कृष्णा और राकेश जैन, गुजरात गांधीग्राम से आप लिखते हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग और आपके बहुत से साथी। अगला संदेश हमें मिला है जाखोद राजस्थान से संभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा कुमारी

अलीका डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सर्वजीत लखोत्रा, रानी सोनू और रजनी। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। आप लिखते हैं, ये फ़ोटो संदेश हमें मिला है केसरी सिंहपुर से, बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी और विश्वजीत। आपसे निवेदन है कि आप टाइप करके मैसेज भेजें तो हमें आपके नाम शामिल करने में आसानी होगी। आप लिखते हैं संदेश, मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी हीना कोशर। और ये संदेश हमें मिला है खरगोन सनावद से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा और रमेश चंद्र वर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा, नेवान शर्मा। आप लिखते हैं सोलापुर महाराष्ट्र से गणेश लोंढे, आम्रपाली और आरव। ये संदेश मिला है नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई और आपके बहुत से साथी। ढाणी लाल खान नोहर से आप लिखते हैं जावेद खान जोया, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान, सोहेल खान, जुनेद खान, मुखराम और इरफान खान, ईयान खान, अरशद खान और अरमान खान। यही गाना, अगला गाना हम आप सभी साथियों को भी सुनवाना चाहते हैं। सनावत से आप हैं शेख मूसा मोहसिन और बस स्टैंड मानसा से जगदीश राय गर्ग और आसाम से हितेंद्र दास। ये संदेश मिला है ज्योति नगर नोखा से हमारे साथी जिन्होंने लिखा है, आप हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का। और आप हैं हमारे साथी विद्यालय नगर एमपी से, लिखते हैं चंद्रेश गोहर, वंदना गोहर, मयंक गोहर और तन्वी गोहर। आप सभी साथियों को हम सुनवा देते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गाना आपके लिए आ रहा है आपके रेडियो तक।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये बहुत ही प्यारा सा गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और ये फिल्म थी बेटी। गीतमाला कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और हम आपको सुनवा रहे हैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गाने। अगला गाना हम सुनाना चाहते हैं आप सभी साथियों को, आप हैं टोरोवाल नवांशहर से, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रेम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, प्राग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन। और 5MD पत्रोड़ा से लिखते हैं मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। बिलाई छत्तीसगढ़ से आप लिखते हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल बाबू, प्रियांशी कुमारी और भाव्या देवांगन। और ये संदेश हमें मिला है नाईवाला हनुमानगढ़ से, गौरव कंडियारा, मनु कंडियारा और लड्डू कंडियारा। नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से PS नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड। और वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। हीरावाली फाजिलका से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रेणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल और आपके बहुत से साथी। आप हैं रानी बाजार बीकानेर से रानी झांब और बिट्टू झांब। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन। आपके साथ हैं मेघा मस्किन और आपके परिवार के लोग। ये संदेश हमें मिला है बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, बंटी बबली वर्मा की तरफ से। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैज़ान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी की तरफ से संदेश मिला है। रायसिंह नगर से लिखते हैं धनराज भांभू, सोहनलाल जांगीड, चेतन राम सारसवा, प्रदीप सारसवा, राजेंद्र काशनिया, अरविंद काशनिया, विजय काशनिया और आशीष भांभू। पटेल नगर मलोड़ से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया गुड्डू। और बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। और हमारे कुछ साथियों के संदेशों के साथ साथ हमें खत भी मिले हैं, कुछ खत भी हम शामिल करते हैं। ये खत मिला है मंडी गोलवाला से ब्रिजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान की तरफ से। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किंशुक खन्ना और बेबी दीपांशी इंदौरा। श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा और आपके बहुत से साथी। ये खत मिला है बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग और इनके परिवार के बहुत से साथियों की तरफ से। दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शिवलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित, हेमंत और अंजू बेनीवाल की तरफ से ये खत मिला है। आप सभी श्रोताओं के लिए ये गाना सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। ये फिल्म है अपना खून, आइए सुनते हैं।
1: सुन सजना, सुन सजना।

0: तुम्हारी अब क्या कहना है, अब तो बाजा बजेगा शहनाई बजेगी।
1: अच्छा,
0: अब तो बाजा बजेगा शहनाई बजेगी, मैं दूल्हा बनूंगा तू दुल्हनिया सजेगी, अब तो बाजा

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गाना। और हमें संदेश मिले हैं अगले गाने के लिए, चक 19 GD से गुरतेज ओलख, हरजोत ओलख, पवनदीप, नूरजीत ओलख की तरफ से। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान, अवासी और सारा परिवार। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम, मुन्ना, दानिश, आशिफ शेख। और आप हैं गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डेनी पंवार और मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। कलाना से लिखते हैं भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण माइल, कीड़ू रामजोया, हनुमान सारण और सुनील पाईवाल शर्मा। नाईवाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। हीरावाली फाजिलगा से हजारी लाल पुरोहित, मोनी पुरोहित और भूपेंद्र पारीक। आप हैं गणेश चौक रातानाड़ा जोधपुर से नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर, हरविंदर मान और राज सिंह और प्रीत मान। ये संदेश मिला है कष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण होगोड़े, योगिता होगोणे और प्रियाली पार्थ होगोणे की तरफ से। गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, ऋषिता, आपने लिखा है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से। फ्रांसिस से हमारे नियमित साथी हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, मायरा नूर। और खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। और कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सानी और मोहम्मद अफजल मलिक। संगरिया से श्याम मिड्ढा और सुमन मिड्ढा। और आप हैं हमारे साथी बस स्टैंड बुजुर्ग बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से, आप लिखते हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदन लाल वर्मा। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से हमारे साथी हैं लिखने वाले रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, हिमाक्ष। और यह संदेश हमें मिला है

गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा की तरफ से, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पार्श्वमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, और आप हैं प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े, संकेत बगाड़े, नांदूरा महाराष्ट्र से आप लिखते हैं, बीड शहर महाराष्ट्र से लिखते हैं, नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनजय टूल और पी बी कुलथे, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से लिखते हैं, अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी गायत्री और इनके साथ में हैं यज्ञेश घोड़के। आप हमारे साथी हैं सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मन्नू नाभा, पटियाला से आपने ये संदेश भेजा है। और आप हैं परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से, अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। आप सभी साथियों के लिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में ये खूबसूरत गाना है, ये फिल्म है मोहब्बत जिंदगी है, सुनिए।

मोहब्बत जिंदगी है। दोस्तों आप सुन रहे थे इस फिल्म का ये प्यारा सा गाना आपके लिए। अगले गाने के लिए संदेश हमारे आप सभी साथियों के हैं, कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती से प्रवीण हगोड़े और इनके परिवार के लोग। और ये संदेश हमें मिला है, हमारे साथी हैं ये, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे और भाविक ढींगरा की तरफ से। आप हैं सांगली जत शहर से, अल्ताफ हुजरे सैफुल्ला सबाहत।

संदेश हमें मिला है, हमारे साथी हैं ये, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे और भाविक ढींगरा की तरफ से। आप हैं सांगली जत शहर से, अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख और आपके बहुत से साथी। ये संदेश मिला है रतलाम से, हिंगड़ी आलोट से, जगदीश धाकड़ नाइमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ की तरफ से। और भोपाल एमपी से लिखते हैं मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, लाली श्रीवास्तव, आशा, राधिका श्रीवास्तव और पूरा परिवार। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशप और रसीद वारसी। लखुवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकनाराम। और कवाई सालपुरा से लिखते हैं सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और आपके परिवार के लोग। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, विजय ताइड़े और आपके बहुत से साथी। सहारनपुर कुम्हार हेड़ा से आप लिखते हैं सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्षा नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीम और आपके परिवार वाले। और हमारे कुछ साथियों के ख़त भी मिले हैं, शामिल करते हैं हम। आप हैं मलोट कैंप से सतीश मिगलानी, सीमा, विवान, अनमोल, वीर सिंह और रमेश मिगलानी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। मक्खू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज और हैप्पी कपूर फिरोजपुरी। और ये एक संदेश हमें और मिला है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की तरफ से। आप सभी साथियों के लिए ये दो गाना है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, और ये फिल्म है रंगा और राजा। सुनिए।

0: और दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना। और ख़त मिले हैं हमें हमारे बहुत से साथियों के, अलीकंठ डबवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता और कुलदीप गांधी, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, नोहर हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु, पवन, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सिंह और कालू मिस्त्री, और आप हैं हमारे साथी मसीता डबवाली से दर्शन लोट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी सागर, हनी लोट, सारिका और निहारिका, चक 10 SDP लालगढ़ से रामेश्वर निराणिया, सुमन, दिव्या नूतन, पंकज मेहरचंद, हेमू, मनीषा और ब्रिजलाल। और यह खत मिला है बलवंत कुमार वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा, आप लिखते हैं, प्रमिलागंज आलोट रतलाम से, और कैरों पंजाब से गुरदर्शन लाल जलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप और आपके बहुत से साथी साथ में हैं, आनंद और गुरशब्द। और मंडी डबवाली से जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बकोलिया, और आप हैं संगरिया से भूपेंद्र सुथार, गुरु पूर्ण सिंह, गुरु बीरबल और ताराचंद सेन। और आप हमारे साथी हैं नोहर हनुमानगढ़ से डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, प्रांजल शर्मा और श्रीमती मधुलता पुरोहित। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं काली बस्ती फिल्म का ये खूबसूरत गाना, मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। ये है आखिरी गाना, सुनिए।
1: क्या हुआ?
2: हाय रे मेरे लल्लू,
1: लल्लू?

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमाला। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनिएगा 12:05 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए चंद खूबसूरत गानों के साथ। 12:30 पर आपके लिए खूबसूरत गज़लें होंगी सुगम संगीत में। और 12:50 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय रहेगा बरसात के पानी का सदुपयोग। 1 बजे आकाशवाणी जयपुर से रिले आप सुना करते हैं हिंदी में समाचार। 1:05 पर महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन। जानकारी के विषय रहेंगे बच्चों में संस्कार, महिलाओं में बढ़ती बीमारियां, सफ़र में सावधानियां। और इसके साथ आप सुनेंगे कुछ लोकगीत और लोक भजन भी। कार्यक्रम पेश करेंगी किरण शर्मा। और 2 बजे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 2:30 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत में सदाबहार गाने। 3 बजे आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रसारण रिले किए जाएंगे।

शाम 5 बजे सुनिएगा कार्यक्रम में युववाणी, चंद खूबसूरत गानों और समसामयिक बातों के साथ। और 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 6:05 पर कार्यक्रम होगा सराइकी। 6:30 पर हिंदी में समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी। 6:35

शाम 7 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल में गीता रो गजरो, और कार्यक्रम पेश करेंगे रमेश चामुरिया। 7:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और 8 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म की जानकारी के साथ खूबसूरत गाने आप सुनेंगे। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ 8:09 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

रात 9:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद गजलें आप सुनेंगे। 9:30 पर पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू होगा, कार्यक्रम पेश करेंगे बलविंदर कल्याणा। 10:30 पर फिल्म संगीत होगा आपके लिए। और रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर न्यूज़ इन इंग्लिश आकाशवाणी दिल्ली से, और 11:10 पर सभा समाप्ति उद्घोषणा होगी।

कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:05 हो चुके हैं। अब सुने सैनिकों के लिए।

सभी सैनिक भाइयों और सभी दोस्तों को नमस्कार, नरेश वर्मा की तरफ से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मशहूर फिल्मकार C.L. रावल की बरसी पर उनको याद करते हुए उन्हीं की फिल्मों के चंद बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने आपके लिए। सुनिए।

श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में तीन रावल भाई, सी एल रावल पूरा नाम चमन लाल रावल, और इनके दूसरे भाई जी एल रावल पूरा नाम गुलजारी लाल रावल, और एक भाई बी एल रावल बनवारी लाल रावल। इन्होंने मिलकर रावल फिल्म्स नाम से एक बैनर बनाया और बना डाली चंद बहुत ही खूबसूरत फिल्में। और जी एल रावल यानी गुलजारी लाल रावल ने चंद खूबसूरत गाने भी लिखे। अभी आपने जो गाना सुना वो जी एल रावल ने ही लिखा, मोहम्मद रफ़ी की ये आवाज़ थी, और ये फिल्म थी आबरू, संगीत सोनिक ओमी का था, और इस फिल्म का निर्माण किया सी एल रावल ने यानी चमन लाल रावल ने, जिनकी आज बरसी है। आज ही के दिन 17 जुलाई 2005 को वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ प्यारी फिल्में देकर, कुछ खूबसूरत गीतों वाली फिल्में देकर।

दिल ने फिर याद किया आपने इस फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गाना लिखा GL रावल ने, संगीत सोनिक ओमी का था और ये फिल्म बनाई CL रावल ने, जिनकी आज बरसी है और उन्हीं की फिल्मों के गाने आप सुन रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं अगला गाना, लेकिन इनकी चंद खूबसूरत फिल्मों का जिक्र हम करते हैं। दिल ही तो है, इस फिल्म में इन्होंने PL संतोषी के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्देशन किया। इसके बाद इन्होंने खुद बनाई फिल्में दिल ने फिर याद किया, जिसका गाना अभी आपने सुना, और आबरू फिल्म। इस फिल्म के गाने भी बहुत खूबसूरत हैं, और एक फिल्म इनकी चोर मंडी, एक फिल्म लड़की पसंद है, इस फिल्म के गाने भी बहुत प्यारे हैं। और इसी फिल्म का एक गाना हम आपको सुनवाते हैं। आवाज़ें हैं मुमताज़ और महेंद्र कपूर की, आइए सुने ये गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लड़की पसंद है इस फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना हमने आपको सुनवाया। आवाज़ें थी मुमताज़ और महेंद्र कपूर की, और ये गाना लिखा जी एल रावल ने और संगीत सोनिक ओमी का था। और अब हम आपको कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनवाते हैं। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सी एल रावल, मशहूर फिल्मकार, इनकी बरसी पर इन्हीं की फिल्मों के बहुत ही खूबसूरत गाने। और ये है आपके लिए कार्यक्रम का आखिरी गाना अनवर और अलका याग्निक की आवाज़ में। आइए सुनते हैं।

की बरसी पर उनको याद करते हुए उन्हीं की फिल्मों के गाने। ये आखिरी गाना चोरमंडी फिल्म से आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और अनवर की आवाज़ों में, और इस गाने को जीएल रावल ने लिखा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। आप सुनते रहिए ये गाना और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:30 हो चुके हैं। अब सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में पहली गजल आप सुने हरिहरन की आवाज़ में।

सुगम संगीत में पहली गज़ल आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में, और अब सुनिए जसपाल सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

दोस्तों, आप सुन रहे थे जसपाल सिंह की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल, और अब सुनिए मनहर उदास की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल आपके लिए। सुनिए।

आप सुन रहे थे मनहर उदास की आवाज़ में ये गज़ल। और अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी कलाम मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय है बरसात के पानी का सदुपयोग कैसे करें। जानकारी दे रहे हैं रमेश चावरिया, आइए सुने।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करें आप खेती पाती की, अपने खेती पाती के साथ साथ आपने एक बात को और भी ध्यान रखना है और वह बात आ है कि अब मौसम जो को है वो थोड़ा से दिना बाद गमा बदलाव खा जैसी और बरसात को जो को मौसम है वो अब शुरू हो जाएगा। तो जी बरसात को मौसम शुरू होगा तो बिगमा की है कि अपने खेती क्यारी के काम धंधा के साथ साथ पानी बचाने वाला जो को काम है वो भी करना चाहिए, क्योंकि आप देखे रानी कि दिन ब दिन पानी जो को है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पानी चाहे वो आपने जगह बड़ा कुंड बनाए है भट्ठे की बात करें या फिर बरसात को जो को पानी है वो धरती का माँ बिंगो रिचार्ज जो को है बिंगो जो को भंडारण है वो भी कम हो रहा है। तो बिंगो जैसे धरती को जो को पानी है वो भी कम हो रहा है। तो अब पानी बचाने की जिकी जुगत है ना वह आपने लगानी पड़ेगी और धीरे धीरे आपने के का पानी बचाने का जगह तरीका है बे चाहे अपने खेत कैरी का काम धंधा कमा है चाहे अपा घर के पानी की बात करा तो या फिर अपा जो को खाली बगन नालू पानी है जो को कादू कीचड़ फालतू को कर ला रहे बी पानी बचाने की बात करा तो पानी जो को है वो अपने हर तरफ से बचाने की जरूरत है। और आने वाले टाइम इश्यू आ जाएगो कि एक मौके अपने पानी जो को है वो पीने वाले कौन मिलेगा, क्योंकि खेती करने वाली बात तो बहुत दूर की बात होगी पीने वाले जो को पानी है बिंगा भी तोड़ा पड़ जाएगा। तो ये वास्ते पानी जो को है वो आप धीरे धीरे बचाना शुरू करना ऐसा और घर गम अगर पानी आपने खाली चलना ला रहे है तो बिना भी आपने बचानो है या फिर जो को पानी आपने खेत का मापा नहर से ले गया ला रहे हाँ और खड़ा बट बट जकी है डोलियां जकी है भी अगर तिरन ला रही है रिसन ला रही है तो बंगो भी पूरी तरह से जाप तो करना जरूरी है जके की वजह से पानी जो है वो चाहे नेरगो है चाहे खड़ा गो है चाहे क्यारा गो है वो खराब ना होवे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जरूर है लेकिन आने वाला समय के लिए बड़ी जरूरत है इन चीज़ की। और आने वाला जो को टेम है बड़ो औखो टेम होगा जे अगर आप पानी ना बचे तो। पानी बचाने का भी तो कई बहुत सारे तरीके है, क्योंकि आपने जगह बड़ा बुजुर्ग है भी अलग अलग तरीका से।

पानी बचाया करता। और बे जगह तरीका है ना बे बड़ा शांतरा तरीका होया करता, क्योंकि आपने जगह बूढ़ी है बे पानी इन त्रियां शू बचाया करता है। और छाणा मैंने केमता बिया कि पानी ने बे घी वाली त्रियां बरत्या करता है ना, घी ढूल सके लेकिन पानी कौन ढूलन देता। और बे छाणा मैंने कहा बने ध्यान हुआ गया नाल जो समय है बड़ो औखो होवेगो, और पानी दूर दराज शू ले गया करता, क्योंकि आजकल तो क्या नहरा आ गई, ट्यूबवेल चल गया, घरां में टूंटियां चल गई, लेकिन एक समा पुराणों इश्यू हो जगह की वजह से एक ही कुओं जो को है ट्यूबवेल जो को है वो होया कर तो ट्यूबवेल तो क्या हों तो वो कुओं होया कर तो जो पताल को पानी खींच गया बिन बारा काट गया बिन काम में लिया करता। और वो कोई नेड़े तेड़े को नहीं हों तो नहीं चार चार पाँच पाँच गाँव को सांझो एक कुओं होया कर तो, और बट्ठे से वो अपने जगह बुजुर्ग लोग है अपनी जगह माताओं बहना है बे पानी चाहिए अपने जानवरों पर ले गया था या फिर सिर पर ले गया था कोई भी तरीका से ले गया था तो बड़ा औखा होया करता। और जब औखा होया करता तो भी पानी की बेकीमत भी समझा करता है ना, तो बाज की कीमत भी टेम में समझता बाकी मत अब आपने समझनी पड़ेगी है ना। और बी टेम का और अब वाला जो को टेम है इंग बिचारा जो को टेम है वो भले ही सोरो निकल गयो लेकिन अब आने वाला जो को टेम है बड़ो औखो है। तो पानी चाहे अपन खेत के लिए बचा और घर का माँ अगर घर बरताओ पानी है बिन बचाने को भी अपन काम करना है। अब खेत के पानी ने बचाने के लिए जी तौर तरीका ही बात करें तो आपने कोई खेत का माँ कोई छोटो मोटो जो कुंड है या फिर आपका कोई टांको है बड़ी होद है बनास का और बरसात को पानी जो है वो आप बिंग में भिड़ो कर सका बिया तो जो को बरसात को पानी है जरूरत के हिसाब से अपना खेतों में आप लगावाइया। लेकिन कई बार ऐसा औखा टेम गमा भी बरसात आ जाए जगह गमा अपन पानी की जरूरत को नहीं हुई नहीं तो वो पानी की है कि अब धीरे धीरे आप भी कुंड गांव भेड़ो कर सका भी टांका में भेड़ो कर सका या बड़ी जी की होज बना रखी है बिंग माँ अपन भेड़ो कर सका और आनल जी की फसल है बंग लिए वो पानी जो है बड़ो फायदेमंद हुआ गो बड़ो काम को हुआ गो। और पानी भी वो कोई इशो बिशो पानी को नहीं भले पालर पानी है लेकिन जिया जिया वो पानी पुराणु हों तो जगह बिंग माँ जी की पोषकता है फसलों के लिए जगह सूक्ष्म आप डाला तो बेतत्व जगह है भी पानी में मौजूद हुआगा और वो पानी अपने आने जी की फसलें बंग लिए बड़े फायदेमंद हुआ गो। और इंग अलावा अपा कि एक पानी घरांग में जो को पानी टूंटिया को चलने ला रहे है बिना भी अपन बचाना जरूरी है, घड़ांग में जो को पानी पड़ियो है बिना भी अपन बचाना जरूरी है। पानी अपन इतों की जो इस्तेमाल करना चाहिए प्रयोग में उपयोग में लेना चाहिए कि जितों का अपन जरूरत है। कई बार देखे करानी घरांग में खाली जो कि टूंटिया हैं जगह नलकूप है बेचाल बोक रहे और पानी जो है वो गली में आंतो रहे तो ये जगह जागरूकता का जगह काम है भी अपन है बच्चा से ले गए और बड़ा बुजुर्गों तक करना पड़ेगा है ना। इनमें कोई घर का एक सदस्य की अपने जिम्मेदारी कौन बनानी परिवार की समाज की आसपास है गुआड़ की पूरे की आज की जिम्मेदारी है बा पड़े है और अपने बा निभानी भी चाहिए है। और इनके अलावा आप बा फसलों को ही चुनाव करा जिकी फसलां कम पानी में बढ़िया पाक जे जी अभी बहुत सी सी किस्मा जी है भाई अपना कृषि वैज्ञानिक वे का इजाद कर रखी है और बेकिस्मा ले गया अपन कम पानी में भी बढ़िया तरीके से फसल जी की है बा पैदावार जी की है अपन ले सका। और फुहारा विधि जी की है या फिर बूंद बूंद सिंचाई जी की विधि है बिना अपनाने की जरूरत है ऐसा, क्योंकि पानी जो है वो खुला क्यारंग में अगर आप लगाओ तो बीच पानी को दोहन जो है वो ज्यादा हुए और पानी ज्यादा दोहन हुआ को तो बीच क्या फसल कोई ज्यादा या कौन मानस का बढ़िया हुआ है। पानी जरूरत के हिसाब से फसल ले है ना, अगर फसल ने अगर दो बूंद की जरूरत है अगर बठा पर 10 बूंद डाल देंगे तो वो फायदो कौन करेगा वो नुकसान करेगा। तो पानी जितनी जरूरत है बीती का अपन फसलों में देना चाहिए और पानी जद भी अपन देवा तो भी पानी ने सही तरीके से क्यारा तक पुगाना का जगह जतन है भी अपन पहला से कर लेना चाहिए। कई बार देखिए ग्राह का खाड़ा जगह है भी कचरा से भरिया पड़ा रहे तो बने साफ सफाई करके बढ़िया तरीके से पानी ने टपने को लंगने को जो बहाव को जो भी काम है वो बढ़िया हो जाए तो इश्यू अपन खाड़ो जो है वो तैयार करना चाहिए बट्टन जगह भी साफ सुथरी जगह पर संवार के रखनी चाहिए है। और इन अलावा टूटड़ी फूटड़ी अगर कोई है कट्ठी कोई क्यारी डोली है तो बिना भी अपन संवारनी जरूरी है। और इन सागर सागर बिया भी थाने खेत खलियान या चौपाल में बताई कर समतलीकरण जो है वो अगर अपना खेत गम आप कर ले तो बीच पानी बड़ो बढ़िया तरीके से आप बचा सका जटे उबड़ खाबड़ जगह है बटे पानी एक तो सही एक सार जो है वो लगा कौन सका नहीं अगर आप सही तरीके से भी समतलीकरण कर लेवा बिंग अच्छी तरह जुताई करके बिंग वहाँ सुहागो पाटो लगा के अगर बिन इकसार कर लेवा तो फिर क्या पानी अगर आप पहले सिरे से लगा चाहें तो वो पानी जो है वो आखिरी सिरे पर इकसार चल लेगा। कई बार देखे करा अगर पानी ऊंची नीची जिग्ञा है और पानी आप धक्कों भी क्यारा भरबो करा एक जिया जाके ज्यादा भेड़ हो जाए कई बार इं हो आखिरी जी की छेकड़ली पांत है या फिर खूट जो है बेटा पानी पुगे को नहीं तो ये जगह तरीका है पानी दोहन करना का तरीका है और पानी बचाना का जगह तरीका है भी अपन अपनाना चाहिए है। अब माटी को सुधार करना भी जरूरी है क्योंकि बार बार थाने कि वहाँ का खेत का वहाँ अपने जी जैविक तरीका है बे अपनाओ प्राकृतिक जगह तरीका है बे अपनाओ हरी खाद को सबसे ज़्यादा प्रयोग करो अपने जो कि फसलें हैं बन आप परत के रूप में बीजा नहीं थोड़ो वो फायदा ज़्यादा है क्योंकि कई बार आप एक ही फसल जी बार बार बीज बोक रहे हैं या फिर एक साल में कणक बीज ली अगला साल फिर भी मैं कणक बीज दी भी अगला साल फिर कणक बीज दी अपन नहीं कर फसल चक्कर जो है वो अपनाना जरूरी

0: यह फसल चक्र अपना से हम बीत चुके हैं, माटी की जो उर्वरा शक्ति है वह भी कायम रहेगी, माटी को जो भ्रूभ रोपण है वो भी बढ़िया बनी रहेगा, माटी में जीवांश की जो मात्रा है ना वह भी बहुत बढ़िया बनी रहेगी। क्योंकि कई बार उथली जड़ जी की फसलें हैं बे आप बीजांत कर दे वहाँ, और बिंग बाद गम आप कम जो कि गहरी जड़ाली फसलें हैं बंग बीजांत करा, तो ये चुकी है माटी के अंदर जो कि नमी है वह अपना पौधा जो कहे भी खींच ले, या फिर जो कि ऊपर पानी की नमी है तो बा अपने जगह पौधा भी खींच ले, तो बीच में भी पानी की जो कि बचत हो जाए अपन पानी देणु कौन पड़े नहीं। और इन अलावा मल्चिंग एक ऐसी व्यवस्था है वह अपने खेत गवा करनी चाहिए, इनको फायदा वो है कि मल्चिंग से एक तो क्या है कचरों कौन पैदा होनी, दूसरी बात है कि आपने जो कि भूमि है वह जल्दी से बत्तर को नहीं आनी, तो मल्चिंग करना कोई ज़्यादा खर्चों भी कौन लगे नहीं, और अपने खेत कैरी को जो पानी है वो भी बचाना जरूरी है साहब, क्योंकि पानी है तो जीवन है और जीवन है तो आप हाँ नहीं तो कुछ नहीं है साहब। पर खेत का माँ क्या काम धंधा और भी करना है, हूँ चालू, राम राम सा, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय था बरसात के पानी का सदुपयोग। जानकारी दे रहे थे रमेश चांवरिया। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। एक बजने वाला है, अब जयपुर से समाचार होंगे।
2: अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इसमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज से 2 दिवसीय नागौर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री आज तिलानोश गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनका रात्रि विश्राम भी गांव में ही रहेगा। कल प्रातः भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के सहयोग का आग्रह करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित कराने का कार्यक्रम है। सरकार को उम्मीद है कि सर्वदलीय बैठक के माध्यम से विभिन्न दलों के बीच सहमति बनाकर संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित की जा सकेगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि महिलाओं को विधायिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आवश्यक है। ये बात उन्होंने आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में कही। श्री शेखावत ने कहा कि बढ़ती आबादी के कारण लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्त नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। श्री शेखावत ने आरोप लगाया कि जब पहले महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था तब विपक्ष का रुख महिलाओं के हित में नहीं था। संसद के आगामी मॉनसून सत्र में यह मुद्दा फिर से उठेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्याय का समर्थन करने, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने और विश्व की शांति, सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डालने वाले अपराधों को रोकने में मदद करने के इच्छुक सभी लोगों को एकजुट करना है। ये दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि एक न्यायपूर्ण, समान और करुणामय समाज का निर्माण करना सबकी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से समान अवसरों, निष्पक्ष व्यवस्था और मानवीय गरिमा के सम्मान पर आधारित समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया, जहां हर नागरिक को न्याय प्राप्त हो सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर दिया है। ये सुविधा कल से 24 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। आयोग के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2026, निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स परीक्षा 2025 तथा निरीक्षक कारखाना केमिकल परीक्षा 2025 के अभ्यर्थी नाम, पिता के नाम, फोटो, जन्मतिथि, जेंडर को छोड़कर अन्य विवरणों में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हो चुके हैं। कार्यक्रम सुने घर आंगन। कार्यक्रम पेश कर रही हैं किरण शर्मा। आइए सुनते हैं।

घरांगण सुणन वाली सगळी भेणाने बाई किरणांगा हिवड्याशी मोकळा मोकळा राम राम। भेणो कै सदा न संग सहेलियां, कै सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, सदा न काला केस, सदा न फूले केतकी, सदा न सावण होए, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी होए, सदा न मोज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भाण, सदा न जोवण थिर रहे, सदा न संपत मान, सदा न काहू की रही, गढ़ प्रीतम की बाह, ढलते ढलते ढल गई, तरवर की सी छा, तरवर की सी छा। भेणो साची बात है कि सदा कोई भी चीज़ ना रहनी है नी, जिकी चीज़ आई है वह जानी जानी है नी। एक दिन देखो आपने वर्गा थे ओ मैं हूँ कोई भी है, आपा भी कौन रहना, रहनो के है अपनी बोलेड़ी बातें है नी, अपना करेड़ा काम, जे अच्छो काम कर सा तो देखो आपा ने याद करेगा है नी लोग, और जे अच्छी बातें कर सा कि सागे अच्छो बोल सा है तो भी लोग आपा ने याद कर सी, नहीं तो देखो कुण मन्ने जाने और कुण थाने जाने है नी, कोई किन्नी कौन जानेगो। और देखो बहनों कै सदा ने रहना भी सदा की चीज़ को नहीं रहे, जे आज मान लो आपने में दुख की घड़ी बीतन लाग रही है नी तो मान के चलो कै काल ने सुख तो आव ही आवेगो, इन वास्ते कदी भी की है निराश नहीं होनो, आपके मन ने कदी भी निराश नहीं करनो, क्योंकि ओ देखो सुख दुख है जिकी गिरत बिरत की छाया है जिकी एक के बाद एक आनी आनी है। जे आपने मान लियो बोलो सुख है भगवान मोकलो दे रखियो है तो घमंड भी नहीं करनो चीज है, क्योंकि देखो कह नहीं भी दुख कौन ही रह तो सदा सुख भी कौन रह, एक सा दिन कौन रह, तो हमेशा देखो नीव रेगे चालनो चाहिए, भगवान को शुक्रिया अदा करनो चाहिए भी आपने इतनी चीज़ा दी है इतो सुख दी है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: बहनों, एक बार फिर थर स्वागत है थर आपके प्रोग्राम घर आंगन में, और मैं हूँ थारी किरणा बाई। तो बहनों, आप बात करें टाबरिया में संस्कारांगी, तो देखो बहनों आ बात तो है भी आप जे टाबरन भगवान के नेड़े राख शानी, और जितना भी आस तिकोसी बीता ही बिके है कै बुरो करण स्यू डरेगा, पर और भी कई चीज़ें हैं जिकी आप अपने टाबरिया ने सिखा सकें। और देखो वो सिखा भी आप ही सिखा, इं को नहीं कोई बार लो सिखा सी, क्योंकि देखो टाबर हमेशा के है कै आप जो बोल गए कि वहाँ भी हाँ भाई बेगी उठ जो है और टे मु खाणो खा लियो, आए डगे डंग पग दाबो, बारे जाओ जना मोटांगा पैर छू गया आशीर्वाद ले गए जाओ, वो सिर्फ कह को नहीं टाबर सिख है वी वास्ते आप जो टाबरियाँ सिखाणो है नी, तो आपने खुद अपने जीवन में ही ये आदत अपनानी पड़ेगी। जिया कि देखो भी दिन गए जल्दी उठनो, जे आप दिन गए जल्दी उठशा नहीं तो टाबर भी अपने साग है जल्दी उठने गो बिंगो बाबी सी बिंगी दिनचर्या बन जाएगी। और इन अलावा देखो टाइम आप सो जाणो और टेम सिर के है कै उठ जाणो और टेम सिर रोटी खा लेनी और आना कानी ना करनी। कई बार टाबर नखरा करे नी भी मोटूड़ा दे गए सिख है भी हाँ ओ को नहीं खाऊँ वो को नहीं खाऊँ। घर में जे और टाबर हो मान लो मोटा टाबर है या कोई बड़ा है भेजे खाने में नखरो करें, क्योंकि देखो खाणो तो रब ने ही सिखाना चाहिए भी भगवान को रूप है, कई अन तो देखो मिले ही को नहीं है नी, तो आप चाहिए कि आप जिसी लुक ही मिसी हुए नी बिसी आप जिया गरे बने उड़ी है बिसी आपने खा लेनी चाहिए, क्योंकि कई जगह तो ऐसा है जिका ने आ भी कौन मिले इन त्रियां से की है कि आपने टाबर ने समझाना चाहिए। और इन अलावा देखो मैनू कभी भी टाबरों के सामने गाली गलोच नहीं करनी चाहिए। कई परिवार में आप देखा कि बाप दादा हुआ जिका बे के है हर बार के है कोई भी बात किसी भी पर गाली काढ़ने की बांगी की है कि बांगी आदत ही बन जाए नी, तो बा गाली टाबर सुन सुन गए के है वो बिसोई सीख जाए। तो आप चाहिए कि परिवार में टाबरिया सामने कभी भी के है गाली गलोच नहीं करनी चाहिए। टाबरिया सामने क्यों आपके मुँह पर गाली ने लियाओ ही ना, क्योंकि देखो गाली गलोच चूंकि है एक तो अपनी छवि खराब हो है, दूसरों के है कि आप जे एक दूसरे हिसाब से देखा तो आप बुद्ध भी कमजोर हो है जिको बाणी को देवता हो है, तो इन वास्ते आपने फूटरो बोलना चाहिए। आप फूटरा बोलेंगे तो देखो टाबर भी फूटरा ही बोलेगा है नी, और टाबरा ने की है कि सत्य बोलना सिखाना चाहिए बीबे सच्ची बोले सच बोले तो सुखी रहे नी, क्योंकि देखो एक झूठ ने छुपाने खातर पतो नहीं कितना ही झूठ बोलना चाहिए। आ चीज़ टाबरा ने आपने सिखानी चाहिए है नी, भी आपने हमेशा पहली बात जो आप सच्ची कह दी कोई बहानेबाजी नहीं करी। कई बार टाबरिया स्कूल जावे है नी तो कह देवे भी हाँ भाई मेरे इं हो गए भी इं हो चे की ना हो छुट्टी भी टाबर ने इं कहना चाहिए बेटा आपने के है कि देखो भी आप जे अपने झूठ बोलने की आदत है नी तो टाबर अपने अपने स्वीबा चीज़ सीखेगो। और इन अलावा देखो अपने घर में बडेरा है या फिर बास में बडेरा है तो सबको सम्मान करना टाबरा ने सिखाना चाहिए।

बाल भाई रे कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस ये जी मोर राम जी ये जी मोर राम जी कर फैसलो नानी तो कंजूस रे भाई नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर नानी बोली अर

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन।

0: स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बेनो देखो, आज के टेम की बात करा अपा तो आज को टेम बेजा ही बदल गया है। और इंग सागी की है कि आपा बेनागे जी की जीवन शैली है भी में भी बहुत ज़्यादा बदलावट आई है। और देखो इंग अलावा घर परिवार की जिम्मेदारियाँ है नी, पहला तो देखो पहला टेम में लगवाइया न घर गो खेत गो वही काम करना पड़ता है नी, और टाबरा की पढ़ाई को भी तो दबाव को नहीं होता तो, क्योंकि जो टाबरिया पढ़ लेता तो ही ठीक है, नहीं पढ़ता तो भी ठीक है नी। पर आजकल की है कि टाबरिया की पढ़ाई को भी तो की है कि दबाव लुगाई गए ऊपर ही हुआ है भी वो के पढ़ है के कोनी, सारी टेंशन में दिमाग में रख है, सारा दिन जाड़ा ले रख है कि ठाई के हो सी हो तो पढ़े ही को नहीं हो तो इं करे ही को नहीं है नी। तो क्योंकि देखो टाबर आपा नहीं है लागे पढ़े कौन, पर मंगो दिमाग बहुत चल है भी हाँ हुआ है भी शुरू शुरू में वो छोटू है जना आपा मन बिठाणो भी पढ़े सो की करनो पड़े है नी, पर धीरे धीरे की है कि वो आजकल का टाबर तो देखो बहनो है ही एडवांस में नी, बे के है कि आप वो अच्छो माड़ो सो की जाने, पर आपा तो जाड़ा लेना ही लेना है भी हाँ, क्योंकि माँ हुए नी माँ कदी भी चिंता करने से अट्टे कौन ही, जे इंज बुढ़ी भर जे नी भी हाथ पर काम ना करे तो भी बिना आप गए टाबर की चिंता रहसी भी हाँ वो आए हुए है कौनी के की हुए है नी। तो देखो भी बा जिम्मेदारी भी और ज़्यादा अपने बदगी। इंग अलावा देखो पहला नौकरी पेशी में कौनी होती लगे आजकल नौकरी पेशी में भी जान लग गई है नी। इन तरह की है कि हर क्षेत्र में भी जिके अपनी बेड़ा है भी आगे बढ़न लाग रही है, पर जियाँ जियाँ बा आगे बढ़न लाग रही है बिया बिया की है कि मेहनत भी जीवन में ज़्यादा होगी है नी। भी हर जगह पहला देखो घर गो और भी जियाँ बात करी भी खेत गो आंगू ही काम सामनो, अब टाबरियाँ की जिम्मेदारी है नौकरी की नारी भी हाँ भी कोई की गलती ना हो जाए कोई काम लेट ना हो जाऊँ है नी, इन तरीके से और घर बार भी साम के जानो पड़े सारो काम करके, तो बाज दौड़ बड़ी जिंदगी में के है तनाव और जिको अनियमित खान पान है और जिकी शारीरिक गतिविधि ब कम हो गई है भी उसी के है कि नींद में भी कमी आई है, तो वो सारों के है कि बीमारी न्यून तो देने वाली बात है नी, भी ना ही तो टेम सिर खाई जाए। बाज दौड़ में देखो भी आपन दिन गए जठे 10 बजे रोटी खानी है बट 2 बजे रात ने जठे कह भी आपन ने दिन छिपे छिपे ना रोटी खा लेनी चाहिए, पर के है कि 9-10 बजे कई घरों में तो आप बाजारों में तो जावा नहीं तो 11-11, 12-12 बजे तक रोटी खावे है नी। तो बिना वैज्ञानिक डॉक्टर तो के कह के भी शाम डले बाद भी 9 बजे पहला पहला आपन रोटी खा लेनी चाहिए भी आपन ने स्वस्थ रहनो है, तो पण के है काम वो बोल रहे हो आपन भी वो ही कर लिया वो ही कर लिया ई काम के चक्कर में के है कापा अपने स्वास्थ्य सागे बहुत ज़्यादा गोल मोल कर दिया नी। भी स्वास्थ्य देखो बहनो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है भी काम जरूरी है, पर जे आप स्वस्थ ही ना रहे तो आप के कर सा है की कौन कर सकांगा, क्योंकि देखो याद रखो भी एक जिकी स्वस्थ महिला हो नी एक स्वस्थ लुगाई है भाई स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नीम रखे है, तो आप गए स्वास्थ्य की देखभाल में आपा ने कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और की है कि इंग सागे सागे क्योंकि जे आप लापरवाही करांगा तो अपने परिवार के प्रति जिकी अपनी जिम्मेदारी है भी मैं कट्ठे ने कट्ठे की है कि आप पीछे रह जाएंगा है नी। और देखो इन बदलती जीवन शैली में की है कि पहला तो देखो घर की बनेड़ी चीज़ें ही खाता, आजकल की है फटाफट के चक्कर में भाई वो ही मंगा लो वो ही मंगा लो फास्ट फूड जो जंक फूड आप कह दें नी जहाँ पिज्जो बर्गर समोसा इस चीज़ा भूल लगाइया खान लग भी मंगान लग गई, क्योंकि कई बार की हुआ भी जी काम काम वाली लुगाई है जी नौकरी पेशी में बेके करे समय का अभाव में कई बार यह चीज़ा बने खानी पड़ जाए, तो बीच चूंकि है कि बहुत सारी बीमारियां बने घेर लिया जिया कि मोटापो है मोटापे कारण वजन भी बदन लग जाए और वजन बदा है वो तो बहनों जी को मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज है जिकेन आप शुगर के दें वाह भी हो जाएगी, और सारे दिन जाला लेन से भी टाबरों की भी आप टेंशन लेनी है नौकरी भी टेंशन लेनी घर की भी टेंशन लेनी, तो भी चूंकि है कि अपनी BP भी रहने लग जाएगी है और थायराइड की समस्या भी हो जी और अनीमिया यानी कि खून की कमी भी अपने में ही हो जी, क्योंकि देखो कई बार है नी खू आप टाबरों के पीछे सो खून बाल लेवानी सारा दिन वहाँ पर जड़ी बीच बीच के कोई और काम में है

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मैनू संदेश पहला आप गीत सुनियो कै मन है भी उरी है ले चल लो सा। तो देखो सुनने नाल अज का मेरा श्रोता भाई है बन इं कैसू कै मारी बेणा ने की है कि प्यूरी है तो ले जाया करो, क्योंकि देखो आप अभी बीमारियां की बात करी जना एक लुगाई आप गए पीर जावे नहीं तो की है कभी आती बीमारी तो बठे कट जाए। जना बाप गए परिवार से मिले, आपके माँ बाप से मिले, भाई भाभी से मिले, भतीजा से मिले तो बिंगी की है कि बीमारी बठे कट जाए। तो इं वास्ते की है कि प्यूरी है तो साल में 2-3 ले जाना चाहिए। कदी कदी देखो मोको लग गया, कोई गेड़ो लग गया तो ले जाओ, पर जनता टीम की है कि आप जी सफर माई आपने कई सावधानियां भी रखनी चाहिए। बेसावधानियां के प्रकार की हुआ है भी आप जना भी घर छो निकला नहीं तो आपने कि जरूरी समान पहचान पत्र आपनों मोबाइल है, अजकल देखो मोबाइल तो भेजा ही जरूरी हो गया क्योंकि मोबाइल बिना तो सारा काम की है कि अधूरा ही है। तो मोबाइल लियो है तो मोबाइल को चार्जर लेने तो कदी ना भूलियो, क्योंकि देखो चार्जर जे ना है एक मौका बैटरी देखो बैठ जाए जे आपने कोई जरूरी बात करनी हो राह में 100 प्रकार को कोई आपने मान लो कोई आ गयो अड़चन आ गई तो आप के है कि फोन कर गए अपने रिश्तेदारा ने अपने परिवार ने सूचित कर सका है नी भी इन तरह की दिक्कत आ गई। तो इन वास्ते चार्जर भी आपने साथ रखनो चाहिए और इं सागे के जे कोई आपने बीमारी सिमारी है तो भी चीज़ की आपने दवाई तो सागे ले गए जरूरी चालनी चाहिए, क्योंकि देखो आजकल सिर दुखनो तो एक आम ही समस्या है। तो आपने कोई भी सिर दर्द की गोली है कोई भी दर्द की गोली है बस आगे रखनी चाहिए है नी। इन अलावा देखो मौसम है वो बदलन लाग रहा है तो मौसम के हिसाब से कपड़ा पहन के आपने चालना चाहिए और एक आपने अपने सागे पानी की बोतल तो जरूर रखनी चाहिए। जे आप साधन लेके जान लाग रहा नहीं तो सीट बेल्ट जरूर बांधनी चाहिए और जे दो पहिया वाहन पर जान लाग रहा तो हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। और भाइयान चाहिए कि आजकल तो देखो बेड़ा भी गाड़ी चलावे तो तेज गति से आपने वाहन कदी नहीं चलाना चाहिए और जिका यातायात का नियम है भंग वो भी आपने पालन करना चाहिए। और बहनों इन अलावा देखो भी आपने सफर में कई बार के आप कई सक बोली जान पहचान कर लिया नहीं बिना नद तो है भी सारी सीट पर कोई बैठी है ये तो किसी काम की है कट्ठे की है नहीं मैं तो बैठे रहूँ सारी चीज़ें बता देवा नी कई बिना हो बोले मन की मेरे लगे तो कि सारी बात बता दे आपकी तो आपने कभी भी अपने घर को सारो भरो किंग आगे भी नहीं बताना चाहिए सो बेद नहीं देना चाहिए है नी भले वो कितना ही आपको बन जाए। और एक कई टाबरान भी आ चीज़ सिखानी चाहिए कि कोई भी अनजान व्यक्ति है भले आप कितने हंस बोल के बात करने लग रहा मिस आ गए तो भी किन कोई भी चीज़ आप लेके नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आजकल टेम देखो बहनो टेम रहे को नहीं पी पर विश्वास करने को और रात को जो टेम है तो सुन सांच गया पर कभी भी एक लो नहीं रुकना चाहिए। और बहनों इनके अलावा देखो कीमती समान है वो तो आपने संभाल के रखना चाहिए। पहली बात है कीमती समान ले गई क्यों जानो है आपको घरे लोकर में रख गए रखो है नी। कई बार आप देखा टूम टाकी कट गई तो भाई ले गई क्यों चलो घरे रखो आपकी टूम टाकी बैंक में जमा कर दो। आजकल टूम टाकी पे रह कौन है क्योंकि फिर गम जाए तो देखो आजकल आप बनवा भी बेगी सी कौन सका। इन अलावा देखो जे लंबो सफर तय करना है तो बीच बीच में आराम करते रहना चाहिए है नी। और कोई समस्या हो जाए तो परिवार ने आपने के है सूचित कर देना चाहिए। एक चीज़ याद रखें मैडम सुरक्षित सफर हुआ नहीं वो ही क्यों है सावधानी सागे करो जा सके और थोड़ी सी की है सतर्कता जी आप अपनी यात्रा में रखा तो अपनी यात्रा सुरक्षित हो सके और यादगार बन सके है नी। तो आओ आप सुना वो एक गीत

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बहनों, अब देखो कार्यक्रम को टेम ऑन लाग रही है, तो चलता चलता मैं यही कह कि इन बदलते समय की है कि आपने अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए, है नी। तो इंग सग सग की है कि अपने आसे पासे जितना भी जी जनावर है वांगो भी आपने ध्यान रखना चाहिए। और देखो बरसात को टेम है अब आगे, तो आपने के इन बरसात के मौसम में पेड़ पौधा तो जरूरी लगाना चाहिए, क्योंकि देखो आज जी आप पेड़ पौधा लगावांगा नहीं तो आप अपनो आ नालों कल बचा सका, है नी। क्योंकि देखो ये पेड़ पौधा है यही के है अपने जीवन को सही में स्रोत है। और देखो कितना ही जिका जीव जंत है बेबिचारा वांगो आसरू भी ये पेड़ पौधा ही है नी। तो अब भाई किरणा ने दो आज्ञा और चलता चलता मैं थाया करूं राम राम।

0: European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
2: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प का परिणाम है।
3: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में

0: देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
2: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और

0: मजबूत किया गया है। चार दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त

0: देते हुए कहा व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 2:30 हुए हैं। अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से। दोस्तों, आज फिल्मी दुनिया के मशहूर फिल्मकार और पट कथाकार सचिन भौमिक की जयंती है। इनको याद करते हुए आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे इन्हीं की फिल्मों के बहुत ही प्यारे गाने। पहला गाना आप सुने राजा रानी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का गाना है, संगीत है RD बर्मन का। सुनते हैं आपके लिए ये गाना।

दोस्तों, अभी आपने राजा रानी फिल्म का ये दो गाना सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। इस फिल्म का निर्देशन सचिन भौमिक ने किया और कहानी भी इन्होंने ही लिखी। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनका लेखन इन्होंने किया, मशहूर पट कथाकार सचिन भौमिक। इनको याद करते हुए इनकी बरसी पर इन्हीं की फिल्म जिद्दी का ये दो गाना हम आपको सुनवाते हैं, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज़ में। आइए सुने।

दोस्तों, जिद्दी फिल्म का ये गाना आपने सुना गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज़ में। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सूरतगढ़ केंद्र से। हम सुनवा रहे हैं आपको सचिन भौमिक की जयंती पर इन्हीं की फिल्मों के गाने। मशहूर लेखक, बहुत सी फिल्में इन्होंने लिखी। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ, 17 जुलाई 1930 को कोलकाता में। और कितनी खूबसूरत फिल्में हैं इनकी, आप ये गाना सुनकर अंदाज़ा लगाएं।

आप सुन रहे थे आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गाना लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब जिक्र करते हैं मशहूर लेखक पटकथाकार सचिन भौमिक की चंद खूबसूरत फिल्मों के बारे में। इनकी बहुत ही प्यारी फिल्में छाया 1961 में, उसके बाद में आप देखिए जिद्दी, आई मिलन की बेला, जानवर, लव इन टोक्यो, और अभी आपने गाना सुना आए दिन बहार के इस फिल्म से। ये फिल्म और ब्रह्मचारी एन इवनिंग इन पेरिस और आया सावन झूम के, इस फिल्म का भी एक गाना हम आपको सुनवाएंगे। आराधना फिल्म जिसमें राजेश खन्ना मशहूर हुए थे, और इसके अलावा पहचान, कारवां, बेईमान, दोस्त, खेल खेल में, जिंदगी और आन मिलो सजना, जिसका गाना आपके लिए आ रहा है, सुनिए।

ये आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गाना आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। फिल्म है आन मिलो सजना।

आपने आन मिलो सजना फिल्म का गाना सुना और अब सचिन भौमिक की ही मशहूर फिल्म आराधना का ये गाना आपके लिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आराधना फिल्म का ये दो गाना। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आनंद बख्शी ने गाना लिखा, संगीत एस डी बर्मन का था। सचिन भौमिक, मशहूर लेखक और पट कथाकार, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ 1930 में, और 12 अप्रैल 2011 में इनका निधन हो गया। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्में लिखीं, उन्हीं फिल्मों के गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, और ये है आपके लिए कार्यक्रम का आखिरी गाना, सुनते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आया सावन झूम के फिल्म का ये दो गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, गाना आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सुनते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 3 बज चुके हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू सर्विस के प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। मीडियम वेव पर शाम 5 बजे तक हमारा प्रसारण रखरखाव के चलते बंद रहेगा और उर्दू सर्विस का प्रसारण आप सुनेंगे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ में एफएम बैंड पर। इंतज़ार करें।

मिनीवेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फील्डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी दूसरी मजलिस का आगाज़ होता है।

हमारी इस मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्राम कुछ इस तरह रहेंगे। आपसे कुछ देर बाद यानी 3:05 पर आप खबरें सुनेंगे। 3:15 पर प्रोग्राम होगा मेरी पसंद, जिसमें आप फिल्मी नगमों का लुत्फ ले सकेंगे। 3:30 पर आप सुनेंगे मारूफ अदाकार विश्वजीत से लिया गया एक इंटरव्यू, जिसे मरियम काजमी ने लिया था। आप समाप्त फरमाइए। इसके अलावा 4 बजे फिल्मी मौसीकी का प्रोग्राम होगा, जिसमें आप एक बार फिर फिल्मी नगमों का लुत्फ ले सकेंगे। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होंगी।

5 मिनट हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जींद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। DGMA ने बहरी जहाज़ों के मालिकान को हिदायत दी है कि वो खलीज खत्ते में सलामती से मुतालिक सूरत हाल के दौरान भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उसने पाकिस्तान से कहा है कि वह नए GSP फ्रेमवर्क के तहत बैन अल-अक़वामी अज़ाइम पर अमल दरामद करे। और बैडमिंटन में भारत की सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज़ रेलवे के शोबे में साफ और पायदार नकलो हमल को अपनाने की जानिब एक अहम कदम है। इसे भारत में ही तैयार किया गया है। इस ट्रेन का आगाज़ रेलवे के शोबे में साफ सुथरी और पायदार नकलो हमल इख्तियार किए जाने की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत वाले कौमी शाहरा प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने 157 किलोमीटर तवील दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को भी मुल्क के नाम वक्फ किया। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के दरमियान सफ़र के वक्त में खातिरखा कमी आ जाएगी। अभी तक ये सफ़र तकरीबन 14 घंटे में तय होता है, लेकिन इस ट्रेन के आगाज़ के बाद ये सफ़र महज तकरीबन 6 घंटे रह जाएगा, जबकि दिल्ली से अमृतसर का सफ़र महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा, जबकि अभी तक इस फासले को तय करने में 8 घंटे लगते हैं। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल में भारतीय रेलवेज में बड़े पैमाने पर तब्दीली हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हालिया बरसों के दौरान तरक्की का एक नया मरहला शुरू हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज़ से

शफिया रईस मुफ्ती और मोहम्मद हसन काडिया के तौर पर हुई है। उन्हें पटन जिले के सिद्धापुर तालुका के कादियाल गांव से गिरफ्तार किया गया है। हुकाम ने बताया कि उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब इस माह के शुरू में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के मुबैना 8 दहशतगर्दों की तफ्तीश के दौरान उनके नाम सामने आए। इन 5 अफराद को कादी में जुडिशल मजिस्ट्रेट आरएन भाटिया की अदालत में पेश किया गया। बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में से जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा मैच न खेलने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नाजियम में खेले शुरू होने से पहले क्वार्टर फाइनल में मैच रद्द कर दिया गया था। सेमीफाइनल में अब पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की चेन यू फी से होगा। इससे पहले सिंधु चीन की हान यू को हराने के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जिनमें भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। DGMA ने बहरी जहाज़ों के मालिकान को हिदायत दी कि वो खलीज खत्ते में सलामती से मुतालिक सूरत हाल के दौरान भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और बैडमिंटन में भारत की सरकर्दा खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुँच गई हैं। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मेरी पसंद। मेरी पसंद के सामने की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब।

मोहम्मद रफ़ी को आपने फिल्म लैला मजनू में सुना, और समझ लीजिए आप सुनिए फिल्म बाजार का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और लीजिए सुनिए आप यशुदास को, फिल्म सावन को आने दो में।

0: सावन को आने दो। अभी आपने इस फिल्म का नगमा सुना, यह सुदास की आवाज़ में है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। ये समय सुनिए अब मारूफ अदाकार बिस्वाजीत से किए गए एक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग। इंटरव्यूअर हैं मरियम काजमी।
1: बीस साल बाद बिस्वजीत साहब को इस फिल्म से जोड़ा जाता है। वैसे इनको फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए 20 साल से काफ़ी ज़्यादा अरसा हो चुका है, मैं ठीक कह रही हूँ
2: जी?
1: कब आपने पहली फिल्म जो 20 साल बाद थी आपकी हिंदी फिल्म,
2: हाँ जी,
1: वो कितने साल पहले बनी थी?
2: 20 साल बाद बनी थी 61 में।
1: अच्छा, 25 साल हो गए।
2: हाँ। ये जुबली,
1: तो जुबली हो गया, लेकिन ये तो हिंदी फिल्म थी। इससे पहले तो आप बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुके?
2: जी, बंगाली फिल्म और स्टेज
1: जी,
2: तो दोनों जगह पर मैंने काम किया। मैंने अपना करियर शुरू की स्टेज से।
1: अच्छा,
2: कलकत्ते में रंगमहल थिएटर, तो प्रोफेशनल स्टेज, वहां मैं क्राउड में काम करता था।
1: अच्छा,
2: तो मुझे याद है एक पार्टी सीन में मैं भाग ले रहा था और एक ही सीन था
1: जी,
2: तो और उसी स्टेज पर मैं हीरो करता था। तो हीरो बन के काम करके फिर मुझे छोड़ना पड़ा जब मैं बॉम्बे में चला आया।
1: अच्छा अच्छा
2: तो मैं वहाँ लास्ट जो ड्रामा किया था वो था साहेब बीवी और गुलाम।
1: अच्छा,
2: तो साहेब बीवी और गुलाम देखने के लिए गुरुदत्त जी गए थे, गुरुदत्त जी, गीतादत्त जी, अबरार साहब, अबरार अलवी साहब
1: जी, जी, जी।
2: तो वो भूतनाथ का जो रोल गुरुदत्त जी ने बाद में किया, तो वो रोल उन्होंने मुझे ऑफर किया था।
1: अच्छा,
2: क्योंकि मैं प्रोफेशनल स्टेज पर वो रोल करता था और मैं बॉम्बे में भी आया, लेकिन वो मुझे एक्सक्लूसिवली चाहते थे, इसलिए मैं कर नहीं सका। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं गुरुदत्त जी का इतना बड़ा फैन हूँ और इतना बड़े मेकर थे वो,
1: फिल्म मेकर
2: और इतने बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन मैं उनके साथ काम नहीं कर सका, ये मेरा बैड लक है। तो बाद में फिर हेमंत कुमार जी कलकत्ते में आए और वो 20 साल बाद फिल्म प्लान कर रहे थे उस टाइम में, तो उन्होंने मुझे हीरो लिया उस फिल्म में। फिर मैं बॉम्बे में आया और 20 साल बाद किया।
1: अच्छा, आपका ताल्लुक तो स्टेज से था, जैसा कि आपने भी बताया, सबसे पहले आपने स्टेज पे काम किया, तो आपने
2: स्टेज करते करते मैं फिल्म में भी काम शुरू कर दिया।
1: अच्छा, वहाँ
2: अच्छा, फिल्म में भी मुझे मतलब जूनियर आर्टिस्ट का ही काम मिला था सबसे पहले।
1: अच्छा, बंगाली फिल्म,
2: बंगाली फिल्म। अच्छा। फिर मुझे काम देख के हीरो का चांस मिला और फिर फिल्म चली, जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई, प्लेटिनम जुबली हुई, तो फिर मैं वहाँ स्टार बन गया था। जब मैं बॉम्बे में आया तो

0: कलकत्ते में स्टार बन चुका था।
1: बन चुके थे आप? अच्छा, तो ये जो आपका माइग्रेशन हुआ है बंगाली फिल्म से और हिंदी फिल्मों में, तो आपने यहाँ बम्बई आके स्टेज पे काम करना क्यों नहीं माने जारी रखा?
0: क्योंकि बॉम्बे में स्टेज पॉपुलर है नहीं, और मैं जिस वक्त आया था उस वक्त तो बिल्कुल ही मतलब स्टेज पॉपुलर नहीं था। हाँ, गुजराती मराठी स्टेज प्लेज वो हाँ हुआ करते थे, और पृथ्वीराज कपूर जी थे, उनका पृथ्वी थिएटर बहुत पॉपुलर था। पृथ्वी थिएटर में बहुतों ने काम किया, राज साहब, शम्मी कपूर, सज्जन साहब जो हाँ, थे उन दिनों में, इवन शशि भी काम करता था। तो मैं जब आया उस वक्त पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, और पृथ्वी थिएटर का कोई एक्टिविटीज उन दिनों में नहीं हुआ करता था। वैसे पापा जी के साथ मैंने काम किया, पृथ्वीराज कपूर जी के साथ फिल्म में, लेकिन पृथ्वी थिएटर की एक्टिविटीज खत्म हो चुकी।
1: जी जी।
0: तो कुछ साल पहले शशि ने वो पृथ्वी थिएटर उसने बनाई
1: जी,
0: ताकि जो ग्रुप थिएटर्स वगैरह हैं वो मतलब ये थिएटर का जो पॉपुलरिटी वो जारी रख सके, और ग्रुप थिएटर्स अपने अपने जो ड्रामा वहां कर सके, तो उसके लिए काफी फैसिलिटीज भी
1: वो देते हैं। जी अच्छा, बिस्वजी साहब ये बताइए कि बंगाली फिल्मों में काम करने के बाद आप हिंदी फिल्म में आए, तो जैसा कि अभी आपने बताया आप वहां भी बहुत एस्टैब्लिश्ड हीरो हो चुके थे बंगाली फिल्म में, तो बंगाल में और बंबई में काम करने के तरीके में आपने कोई फर्क महसूस किया?
0: काफी फर्क, क्योंकि बंगाल में जो फिल्म बनती है, जो बनती थी, वो बहुत ही मतलब उस फिल्म का जो प्लानिंग, स्क्रिप्ट, कैसे फिल्म बनेगी, आर्टिस्टों का डेट, सब कुछ मतलब प्लानिंग के मुताबिक
1: होता था।
0: लेकिन बॉम्बे में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शुरू शुरू में मैं ज़रा घबरा भी गया, क्योंकि जिस स्टाइल से मैं वहाँ काम करता था, कुछ डायरेक्टर्स जो हैं जो कि मतलब स्क्रिप्ट पे बिलीव करते हैं, जो मैं शुरू शुरू में आया था तो वो स्क्रिप्ट बनाते थे, और पूरी फिल्म का जो प्लानिंग वो सामने पता चलता था कि क्या है, क्या होने वाला है। लेकिन जब मैं बाहर काम करने लग गया कमर्शियल फील्ड में, तो मैं ज़रा घबरा गया, क्योंकि सेट पे जाने के बाद मुझे डायलॉग मिलता था।
1: अच्छा,
0: तो पहले से जो एक मेंटल प्रिपरेशन होता है आर्टिस्ट का, अगर मेरे पास स्क्रिप्ट है तो मैं पर्टिकुलर रोल, उस रोल को मैं समझ सकता हूँ, उस रोल के बारे में मैं
1: सोच सकता हूँ,
0: कैसे मैं इसको बेटर करूँ, बेटर परफॉर्मेंस दूँ, कौन सा डायलॉग में कहाँ मैं पॉज दूँ, क्या करूँ, ये सब मैं सोच के जा सकता हूँ।
1: माने मेंटली
0: प्रिपेयर्ड होके, होमवर्क करके आप जा सकते हैं। तो हम उस स्कूल के हैं जो कि हम होमवर्क करके फिर हम सेट में जाते हैं, तो बंगाली स्कूल ऐसे ही है, क्योंकि वो वहाँ स्क्रिप्ट दे देते हैं, सीन्स दे देते हैं। और यहाँ जब मैं कमर्शियल फील्ड में आ गया और काम करने लग गया, तो सेट पे जाने के बाद जब मैं पूछता था कि सीन किधर है, तो असिस्टेंट फिर भागता था, बोला सीन अभी लिख रहे हैं, डायलॉग राइटर बैठ के लिख रहे हैं। तो मैं बोलता था ये क्या है, ऐसा तो हमने काम नहीं किया, मुझे आप सीन पहुँचा दीजिए प्लीज। तो फिर मैं इंसिस्ट करता था असिस्टेंट्स को, तो असिस्टेंट कहते हैं कि नहीं दादा, वो तो लास्ट मोमेंट में वो आएंगे, वो राइटर इतने बिजी हैं, वो सीन दे नहीं सकते हैं। तो इस टाइप की बातें जो है उससे
1: अच्छा बहुत
0: तकलीफ होती थी मुझे।
1: हालांकि आपने जो पहली फिल्म बंबई में काम, जिस फिल्म में काम किया वो भी बंगाली ही,
0: हाँ, बीरन नाग वाज डायरेक्टर, बीरन नाग साहब
1: कुमार साहब ने उसको प्रोड्यूस किया,
0: और हेमंत दादा प्रोड्यूसर थे, तो वो बंगाली स्टाइल से ही बनी थी। और इसके जो बंगाली वर्शन, वो हेमंत दा उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे और प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व थे।
1: इसके बावजूद वो मगर
0: ये एक बंगाली फिल्म की कॉपी है, और जिघांसा बोल के एक फिल्म बनी थी बंगाली में।
1: अच्छा।
0: तो उसमें हेमंत दा म्यूजिक डायरेक्टर थे और इन्वॉल्व थे, तो वही फिल्म दोबारा हिंदी में उन्होंने बनाई।
1: अच्छा, जब 20 साल बाद बन रही थी तो आपको कैसा लगा, आप क्या सोच रहे थे कि ये हिट होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होती, हो गई और आप बंबई में रुक गए,
0: मैं फिल्म का जब ट्रायल, मैं फिल्मिस्तान में शूटिंग शुरू की, तो फिल्मिस्तान में वो जब ट्रायल रखते थे विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक,

0: तो इंडस्ट्री के कुछ अच्छे, मतलब जो समझदार लोग हैं, वो कहने लगे कि ये क्या है, दलदल में घूम रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, कोई साउंड इफेक्ट नहीं, तो खाली खाली तो लगता ही है, तो कोई इम्पैक्ट भी नहीं, क्या क्या फिल्म बन रही है, ये फिल्म है क्या है, मालूम नहीं क्या बना रहे हैं, दलदल में घूम रहे हैं और दूर हवेली एक है, कुछ पता नहीं, अंधेरों में घूम रहे हैं। तो फिल्म में जब बैकग्राउंड म्यूजिक
1: आया।
0: आया और साउंड इफेक्ट डाल दिया और कंप्लीट फिल्म जब बनी फुल एडिट करके, तो फिल्म के चेहरे ही कुछ
1: कुछ दूसरा ही
0: दूसरा ही
1: निकल।
0: हो गया।
1: जी
0: और जो लोग इस मतलब फिल्म के खिलाफ कहते थे, वो लोग कहने लगे कि ये फिल्म तो बहुत चलेगी,
1: और
0: और
1: वो
0: फिल्म
1: चली,
0: चल भी गई,
1: बहुत सुपर हिट हुई।
0: सुपर हिट हुई।
1: मैं समझती हूँ 20 साल बाद ही एक ऐसी फिल्म थी जिससे ये जैसे सस्पेंस वगैरह का ट्रेंड शुरू हुआ
0: हाँ, आप कह सकती हैं कि इंडियन
1: सिनेमा।
0: फिल्म्स में, इंडियन सिनेमा में सस्पेंस फिल्मों में 20 साल बाद का एक जगह है,
1: एक जी
0: एक जगह है, बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत अच्छी जगह है, इसमें
0: हाँ
1: कोई शक नहीं। और आप ये मानते हैं कि जैसे आपने खुद बताया कि किसी भी फिल्म की कामयाबी के लिए म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है।
0: फिल्मों में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो रिपीट ऑडियंस जो आते हैं वो म्यूजिक के लिए ही खास करके आते हैं। मैंने ऐसा भी ऑडियंस देखा जो कि एक गाने के लिए, उस गाने से पहले वो थिएटर में घुस जाते हैं, वो पर्टिकुलर गाना खत्म होता है तो वो
1: वो
0: चला आता है,
1: चला था। अच्छा।
0: तो वो 10 दफे देख लेता है अगर कोई चीज उसको पसंद आ गया तो।
1: जी
0: तो गाने के लिए रिपीट ऑडियंस आते रहते हैं।
1: जी तो 20 साल बाद की बात, आपने कौन सी फिल्म, दूसरी फिल्म थी आपकी, कोहरा?
0: 20 साल बाद के बाद कोहरा, बिन बादल बरसात, ये रात फिर ना आएगी, मेरे सनम, अप्रैल फूल, आसरा, दो कलियां, मैं
1: जी
0: सुंदर हूं, बहुत फिल्म की
1: जी
0: मैंने।
1: लेकिन आपने 20 साल बाद के बाद जितने भी 4 फिल्मों के नाम लिए, जैसे कोहरा, ये रात फिर ना आएगी, बिन बादल
0: जी,
1: बरसात,
0: वो सस्पेंस फिल्म थी।
1: यही मैं कहने जा रही
0: जी
1: थी, इसका मतलब
0: नहीं,
1: ये।
0: जाल भी की थी मैंने,
1: हाँ
0: जाल वो भी
1: तो
0: सस्पेंस।
1: मगर आप ये नहीं समझते कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में टाइपकास्ट हो जाता है आदमी।
0: जी,
1: मसलन आप एज ए रोमांटिक हीरो आए और सस्पेंस फिल्म
0: सस्पेंस,
1: में।
0: इनफैक्ट ये 2-3 सस्पेंस फिल्मों में काम करने के बाद लोग मुझे सस्पेंस हीरो कहने लगे।
1: तो ये टाइपकास्ट क्यों होता
0: तो उसके बाद मैंने चेंज कर दिया, फिर
1: है?
0: मैं रोमांटिक
1: रोमांटिक हीरो।
0: म्यूजिकल में चला गया, जैसे कि मेरे सनम, किस्मत, अप्रैल फूल, वो रोमांटिक टाइप, जो गिटार उटार लेके डांस करना और ये, उस टाइप का मैंने किया।
1: अच्छा।
0: फिर चेंज करने के लिए मैंने सोशल फिल्म भी की, मद्रास की फिल्म की, नई रोशनी, देन आसरा, जो घरेलू
1: घरे
0: सब्जेक्ट जो
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: हरे कांच की चूड़ियां, तो जो घरेलू टाइप के जो सब्जेक्ट, उसमें काम किया। फिर कुछ एक्शन फिल्म में भी काम किया मैंने, नाइट इन लंदन, देन किस्मत, इस टाइप के कुछ एक्शन। उस टाइम में तो एक्शन इतना ज्यादा नहीं,
1: वायलेंस वगैरह
0: इतना
1: इतना ज्यादा
0: वायलेंस तो
1: नहीं।
0: नहीं हुआ करता था, लेकिन काफी एक्शन, मतलब एक्शन पैक्ड फिल्म बनती थी।
1: लेकिन ये ऐसे क्यों होता है कि अगर आप, जैसे आपने कहा कि सस्पेंस, एक पहली फिल्म आपकी सस्पेंस वाले हीरो की थी,
0: जी
1: तो फिर पूरे लोग चाहते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स हैं, कि चाहते हैं कि वैसी फिल्म बनाए क्योंकि वो हिट हुई है।
0: यहाँ मालूम नहीं हिंदुस्तान में क्या है, ये यहाँ आर्टिस्ट को या इवन फिल्म मेकर को भी कुछ टाइप कर देते हैं,
1: हाँ,
0: जो कि मतलब फॉरेन कंट्रीज में नहीं है,
1: आप नहीं समझते कि ऐसा करने से उसकी वर्सेटैलिटी या जो उसका टैलेंट है वो खत्म
0: वो
1: हो
0: खत्म
1: जाता
0: हो
1: है?
0: जाती है, रुक जाती है, ये सही बात है। लेकिन हिंदुस्तान में मालूम नहीं ऑडियंस के कुछ दिमाग में कोई बात अगर बैठ जाती है तो वही बार बार देखना पसंद करती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं। एक कॉमेडियन भी एक सीरियस रोल कर सकता है, वो एक्सेप्ट करते हैं,
1: और विलन का भी रोल कर सकता है।
0: विलेन का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मालूम नहीं जो रोल, जिस रोल में वो हिट होता है उसी रोल में बार बार देखना पसंद करती है।
1: ये
0: ये
1: आप
0: आर्टिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कैसे वो अपने इमेज को चेंज करके दूसरी जगह में वो डाल सकता है अपने आप
1: लेकिन
0: को।
1: इस चेंज में या इस
0: इसलिए मैंने
1: तब
0: राहगीर की थी,
1: जी
0: राहगीर फिल्म जो थी,
1: जी जी
0: जिन दिनों में मैं ग्लैमर ग्लैमर रोल करता था, तो उन दिनों में मैंने एक आर्टी टाइप फिल्म राहगीर, और डी ग्लैमराइज्ड टोटली, वो काला बन के दाड़ी वाड़ी
1: बिल्कुल
0: बड़ी हुई
1: एंटी हीरो
0: है,
1: जिसे बोलते
0: एंटी
1: हैं।
0: हीरो टाइप रोल मैंने किया था। तो उन दिनों में मुझे मतलब प्रेस से और अच्छे ऑडियंस से मुझे तो बहुत तारीफ मिली, लेकिन आम ऑडियंस को वो फिल्म नहीं जमी, वो फिल्म कमर्शियली हिट नहीं हुई थी।
1: ये
0: लेकिन मुझे
1: आज
0: लगता है ये आज अगर ये फिल्म रिलीज
1: जी
0: होती तो अप्रिसिएशन भी मिलती और फिल्म चलती भी।
1: जी आप तो देखिए 25 साल से आपका ताल्लुक है बंबई फिल्म इंडस्ट्री में,
0: जी
1: तो आप इसमें इन 25 साल

0: सालों में आपने क्या तब्दीली महसूस की? एक तो खैर चलिए देखिए म्यूजिक के लिहाज से आइए म्यूजिक पे बात करें,
1: हाँ,
0: जो 25 साल पहले का म्यूजिक था और आज का
1: म्यूजिक
0: म्यूजिक।
1: मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी गाना गाया है बंगाली फिल्मों में, मतलब हिंदी में भी मैं काफी स्टेज शोज वगैरह किया। दो शिकारी फिल्म में मैंने खुद गाना भी गाया था
0: ये बात आपने बहुत अच्छी बताई, हाँ आपसे गवाही लेना था।
1: नहीं, अभी तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है,
0: गुनगुना तो सकते जी।
1: तो पूछिए म्यूजिक के बारे में क्या पूछना चाहते
0: नहीं
1: हैं।
0: मैं पूछ रही थी कि 25 साल में जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, उसमें जो म्यूजिक का आपने क्या, आप क्या समझते हैं कि 25 साल पहले का म्यूजिक और अब के म्यूजिक बढ़ा है घटा है, क्या हुआ है, क्या कैसी तब्दीली आई?
1: म्यूजिक क्वांटिटी के हिसाब से तो रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बहुत होती
0: टेक्निकली
1: है,
0: आपके
1: हाँ,
0: जी
1: और काफी हैंड्स, म्यूजिक हैंड्स यूज करते हैं आजकल, जो
0: इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा,
1: इंस्ट्रूमेंट्स
0: जो
1: बहुत यूज करते
0: ऑर्केस्ट्रा
1: हैं,
0: ज्यादा हो गया।
1: ऑर्केस्ट्रा बहुत है, इफेक्ट बहुत है, तो लाउड भी बहुत रिकॉर्डिंग लाउड चाहते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब म्यूजिक के फील्ड में टेक्निकली बहुत इम्प्रूव किया है म्यूजिक, लेकिन जो दिल में टच करने वाली जो बात है, जो दिल को लगे और बहुत दिन तक याद, कोई मतलब मेलोडी अगर कोई सुर अगर पसंद आ जाए, जो याद जो गुंज रहती है दिमाग में, दिलो दिमाग में जो गुंज रहती
0: नगमगी
1: है,
0: खत्म हो गई जी।
1: वो बात मेरे ख्याल से आज का दिन वो बात नहीं रही।
0: जैसे आपके 20 साल बाद वाले गीत जो थे वो आज तक लोग गुनगुनाते
1: 20 साल
0: हैं
1: बाद क्यों, आप उससे पहले भी देखिए, महल देखिए,
0: जी
1: रतन देखिए, मतलब बहुत सारी फिल्में
0: जी
1: हैं, जो मलहर देखिए, जो कि गाने लोग भूल नहीं सकते आज भी,
0: जी लेकिन आज और आज की फिल्मों में मसलन फिल्म
1: दीदार
0: देखी
1: दीदार बाबुल,
0: बाबुल जी,
1: हाँ, कितनी
0: अनारकली
1: फिल्में
0: वगैरह,
1: हैं,
0: वैसे
1: सो
0: तो
1: मेनी
0: जी
1: फिल्म्स।
0: अब आजकल जो है फिल्म हॉल में बैठिए
1: हाँ, जब तक वो फिल्म चलती है,
0: जी।
1: वो पॉपुलर हिट हो जाती है वो फिल्म, और वो हीरो हीरोइन के लिप में जब तक वो गाना ऑडियंस को देखने को मिलता है, तब तक वो गाना आप सुनेंगे, उसके बाद वो गाना लोग पसंद नहीं करते हैं, वो गाना भूल जाते हैं, क्योंकि उस गाने का कोई ज्यादा देर तक वो स्टे नहीं कर

0: ऑडियंस को पसंद आया,
1: पसंद आया
0: और वो आहिस्ता आहिस्ता हीरो में बदल गए। तो ये एक टेस्ट वाली बात है,
1: पब्लिक ने पसंद किया उनको।
0: हाँ, पब्लिक ने पसंद किया, तो ये एक ट्रेंड चेंज हो गया। फिर वायलेंस के ऊपर सोशल और म्यूजिकल इस टाइप के जो फिल्में बनती थी उससे वायलेंस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म मतलब बननी शुरू हो गई, वायलेंस फिल्म। और सेंसर भी थोड़ा सा लिबरल
1: हो गए। अब वो वायलेंस को उतना वो नहीं करते
0: हैं और क्लोज रोमांटिक सीन्स में भी ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। उन दिनों में काफी स्ट्रिक्ट थे
1: जी
0: सेंसर बोर्ड।
1: तो कहानी का जहां तक ताल्लुक है तो कहानियां भी तो अब बदल, जैसे पहले ड्रामा सोशल ड्रामा हुआ करता, फैमिली ड्रामा हुआ करता था
0: जी,
1: अब कुछ कहानी पर भी जोर दिया जाता है कि भाई कहानी इस तरह की हो, कुछ हकीकत से मिलती जुलती।
0: आजकल कमर्शियल फिल्में जो बनती है मोस्टली वो रिवेंज के ऊपर ही बनती है, एक ही मतलब ट्रेंड है जो कि रिवेंज।
1: जी,
0: तो जितनी भी कमर्शियल फिल्में बन रही है रिवेंज के ऊपर बन रही है, लेकिन ऑफबीट सब्जेक्ट बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उनका रिस्क हो जाता है। ऑफबीट सब्जेक्ट बना के उनके अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदने के लिए नहीं आए तो नुकसान होता है, इसलिए ऑफबीट सब्जेक्ट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे आते हैं, फाइनेंसर्स आगे आते हैं, तो उसी टाइप का फिल्म ज्यादा बनाते हैं
1: जी। आप जब बंबई में आए तो हिंदी फिल्में देखते थे या उनके बारे में सुनते थे क्योंकि
0: जी।
1: तो आप किससे ज्यादा मुतासर थे, कितने माने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत से

0: हमारे अदाकार थे पहले आपसे, तो उन किससे ज्यादा सबसे ज्यादा मुतासिर थे, बहुत ज्यादा आप उनको अप्रिशिएट करते थे, पसंद करते थे?
1: मैं तो शुरू से भी करता हूँ, आज भी करता हूँ, वो यूसुफ भाई, दिलीप साहब, दिलीप कुमार साहब। तो मेरे ख्याल से दिलीप साहब जैसे आर्टिस्ट बहुत कम पैदा होते हैं, और दिलीप साहब मुझे लगता है कि एक्टिंग के बारे में, फिल्म एक्टिंग के बारे में वो एक इंस्टीट्यूशन है
0: जी,
1: और मैं शुरू से उनको पसंद करता हूँ।
0: और शायद आपको एक फिल्म में उनके साथ काम करने का मौका भी मिला।
1: हाँ, फिर कब मिलोगी
0: जी,
1: उसमें काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज भी मैं उनसे सीखना पसंद करूँगा क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ।
0: अच्छा, और हीरोइंस में
1: मुझे नरगिस जी बहुत पसंद थी, मतलब मैं बहुत पसंद करता था उनको, नरगिस जी को।
0: जी, और मीनाक्षी कुमारी साहब, मीना के
1: ना वैसे तो बहुत हैं, मीना जी
0: आपने
1: भी
0: उनके साथ काम करने का मौका मिला था?
1: मीना जी के साथ मैंने काम नहीं किया,
0: मीना कुमारी के साथ आपने काम नहीं किया। माला सिन्हा साहब के साथ बहुत ज्यादा,
1: हाँ,
0: आपने
1: बहुत किया,
0: बहुत फिल्मों में आपने काम किया। और जहाँ तक
1: वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं,
0: बहुत
1: अच्छे पावरफुल
0: आर्टिस्ट जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और जहाँ तक म्यूजिक डायरेक्टर्स का सवाल है,
1: जी,
0: तो आप नहीं समझते कि जैसे बरमंदा थे,
1: हाँ,
0: हेमंत कुमार साहब, नौशाद और इन सब के जो मौसीकी थी, जो फोक से लिया करते थे ये लोग, आजकल वो नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि वो मेलोडी नहीं रही, इसका ये बहुत बड़ा हाथ ये नहीं है कि हम लोग अपनी हिंदुस्तानी मौसीकी से हटते जा रहे हैं और ज्यादा वेस्टर्नाइज?
1: हाँ, वेस्टर्न के ऊपर ज्यादा झुक गए हम, वेस्टर्न डिस्को पैटर्न जो है वो, उसमें क्या वो इफेक्ट साउंड उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मेन मेलोडी जो है सुर से हम हट गए, इसलिए वो दिल तक नहीं पहुंचती है और इसलिए वो म्यूजिक ज्यादा देर तक लोगों को याद भी नहीं रहता है।
0: ये मैं म्यूजिक की बात फिर से इसलिए लाई थी कि मुझे आपसे गाना सुनना
1: नहीं, अभी तो मैं गाना नहीं गा सकूंगा, ये तो गाने का एक
0: एक लाइन
1: माहौल होता है और गाने
0: दीजिए।
1: का एक ये, तो यहाँ
0: बंगाली में
1: नहीं है, कुछ भी
0: में
1: नहीं है,
0: गुनगुना दीजिए,
1: तो गाना फिर कभी सुनाएंगे आपको
0: लेकिन अब आप पूछ लीजिए फिर कब मिलेंगे आप, ये तो बात होती है ना, तो हमारे सुनने वाले
1: तो आएंगे
0: जी, दिल्ली तो आप जरूर आएंगे, लेकिन हमारे सुनने वाले तो बेहद आप उनको पिंस पर छोड़ेंगे अगर आप एक थोड़ा सा गुनगुनाना दें, थोड़ा सा।
1: तो मैं ऐसा करूंगा, मेरा कोई कैसेट आपको मैं दे दूंगा, आप सुना दीजिए
0: अच्छी बात है, चलिए अगर आपकी यही जिद है तो इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
2: अभी आप मारूफ अदाकार विश्वजीत से की गई बातचीत सुन रहे थे, आपसे बातचीत कर रही थी मरियम काजमी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। समीन, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि कुछ देर बाद आप फिल्मी नगमे सुनेंगे और 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी। फिल्मी मौसीकी समझ लीजिए, इस प्रोग्राम में समाप्त कीजिए कुछ फिल्मी नगमे।

शान फिल्में आपने लता मंगेशकर और आशा भोसले को सुना, नगमा निगार थी आनंद बख्शी और मौसीकार थे आर डी बर्मन।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ों में सुनिए एक और एक 11 फिल्म से ये नगमा।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को आपने फिल्म एक और एक 11 में सुना, और आप सुनिए फिल्म सिस्टर से ये नगमा सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में।

अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों का गाया ये नगमा। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, मुसीकी तरतीब दी है रविंद्र जैन ने।

लता मंगेशकर और साथियों की जो है ये नगमा आपने सुना, फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। और लीजिए आप सुनिए, शब्बीर कुमार का गाया ये नगमा फिल्म है आपके साथ।

0: ना डाली, तुम हर वीक गाड़ी चेंज करता, क्या गाड़ी के साथ साथ लड़की भी बदलता?
1: ऐसा न कहो।

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

आपके साथ इस फिल्म में आपने शब्बीर कुमार और साथियों को सुना। और अब पेश है फिल्म मर्दों वाली बात से ये नगमा। आवाजें हैं आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

Jeffrey दरिया दिल फिल्म का ही नगमा, आवाजें हैं शब्बीर कुमार और साथियों की।

और ये प्रोग्राम के आखिर में समाप्त कीजिए फिल्म अफसर से ये नगमा। आवाजें हैं अलका याग्निक और साधना सरगम की।

0: उस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नष्ट की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कोनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जींद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली

मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। DGMA ने बहरी जहाजों के मालिकान को हिदायत दी है कि वो खलीज खित्ते में सलामती से मुतालिक सूरत हाल के दौरान भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने पाकिस्तान से कहा है कि वो नए GSP फ्रेमवर्क के तहत बैनुल अक्वामी अजाइम पर अमल दरामद करे। और बैडमिंटन में भारत की सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में साफ और पायदार नकलो हमल को अपनाने की जानिब एक अहम कदम है। इसे भारत में ही तैयार किया गया है। इस ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में साफ सुथरी और पायदार नकलो हमल इख्तियार किए जाने की जानिब एक अहम कदम है।

की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में साफ और पायदार नकलो हमल को अपनाने की जानिब एक अहम कदम है। इसे भारत में ही तैयार किया गया है। इस ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में साफ सुथरी और पायदार नकलो हमल इख्तियार किए जाने की जानिब एक अहम कदम है। वजीर आजम ने इस मौके पर हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत वाले कौमी शाहरा प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने 157 किलोमीटर तवील दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को भी मुल्क के नाम वक्फ किया। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के दरमियान सफर के वक्त में खातिरख्वाह कमी आ जाएगी। अभी तक ये सफर तकरीबन 14 घंटे में तय होता है, लेकिन इस ट्रेन के आगाज के बाद ये सफर महज तकरीबन 6 घंटे रह जाएगा, जबकि दिल्ली से अमृतसर का सफर महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा, जबकि अभी तक इस फासले को तय करने में 8 घंटे लगते हैं। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल में भारतीय रेलवेज में बड़े पैमाने पर तब्दीली हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हालिया बरसों के दौरान तरक्की का एक नया मरहला शुरू हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज से जिंद को भारत की तारीख में खसूसी मकाम हासिल हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि आज जिंद बीजेपी और एनडीए की अच्छी हुक्मरानी की एक मिसाल बनकर उभरा है। इस मौके पर रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज को मुल्क की टेक्नोलॉजी की तरक्की में एक तारीखी वसूलिया भी करार दिया है। ये ट्रेन भारत में ही तैयार की गई है, जिसमें मुल्क की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रेलवे इंजीनियरिंग की जिद्दत में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों का अंदाजा होता है। इस ट्रेन की रफ्तार जिंद सोनीपत सेक्शन पर 75 किलोमीटर फी घंटा है और ये अपने डिजाइन के मुताबिक 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये ट्रेन न सिर्फ महफूज दर है, बल्कि 89 किलोमीटर के इस सेक्शन पर ये सबसे तेज रफ्तार रेलगाड़ी है। अक्वामे मुत्तहिदा के माहौलियात से मुताल्लिक प्रोग्राम के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉर्वे के साबिक सिफारतकार, सियासतदान और माहौलियात के साबिक वजीर एरिक सोलहेम ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन के शुरू होने का खैर मकदम किया है। उनका ये बयान हरियाणा में जिंद से मुल्क की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के बाद सामने आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सोलहेम ने इस पेशरफ्त को भारत के लिए एक बड़ा संगे मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क में साफ सुथरी रेल की आमद रफ्त की सहूलत फराहम हो सकेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। समुद्री इंतजामिया के डायरेक्टोरेट जनरल डीजीएमए ने बहरी जहाजों के मालिकान, मैनेजर्स और भर्ती करने वाली सर्विस लाइसेंस कंपनियों को हिदायत दी है कि वो उन जहाजों पर भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें जो मजीद अहकामात जारी होने तक आबनाए हुरमुज से सफर कर रहे हैं। समंदरी इंतजामिया ने खलीज के खित्ते में सिक्योरिटी की संगीन होती हुई सूरत हाल के पेश नजर भारतीय मल्लाहों की हिफाजत के लिए एहतियाती इकदाम की हिदायत दी है। डायरेक्टोरेट ने बताया कि पिछले कुछ दिन से मर्चेंट जहाजों पर हमलों के हालिया वाकयात की वजह से खासतौर पर तनाजे से मुतासरा इलाके में मल्लाहों और कमर्शियल जहाजों को दरपेश खतरात में इजाफा हो गया है। सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 19 तारीख से मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रहेंगी। 20 तारीख को सदरी जमहूरिया मालदोवा जाएंगी और अपनी हम मनसब माये संधू के साथ मुलाकात करेंगी और उसके बाद वो वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मालदोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालदोवा भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के साथ बातचीत करेंगी। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 21 तारीख से शिमाली मकदूनिया का दौरा करेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का यह पहला दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान मोहतरमा मुर्मू अपनी हमनसब गोरडाना सिलजानोस्का दावकोवा के साथ बाहमी सतह की बातचीत करेंगी और वजीर आजम रेस्टिजन मिकोस्की के अलावा असेंबली के सदर से भी मुलाकात करेंगी। अपने दौरे के आखिरी मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 23 तारीख से रोमानिया का दौरा करेंगी। अपने 2 रोजा दौरे के दौरान रोमानिया के सदर निकोसर डन और रोमानिया के अबूरी वजीर आजम एली बोलोजान के साथ भी मीटिंग करेंगी। वजारत खारजा ने कहा है

कि सदर जमहूरिया के तीन मुल्कों के सरकारी दौरे से इन मुल्कों के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम करने के भारत के अज़्म की अक्कासी होती है। गुजरात के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। उन्हें पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के एक दहशतगर्द मॉड्यूल से मुतालिक जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इन अफराद की शिनाख्त बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी, शाफिया रईस मुफ्ती और मोहम्मद हसन कड़िया के तौर पर हुई है। इन्हें पैटन जिले की सिद्धपुर तालुका के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया है। हुकाम ने बताया कि इन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब इस माह के शुरू में गिरफ्तार किए गए जैश मोहम्मद के मुबैना 8 दहशतगर्दों की तफ्तीश के दौरान इनके नाम सामने आए। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने खबरदार किया है कि तरजीहात प्लस या जीएसपी प्लस की आम की गई स्कीम के तहत तजारती फायदों तक पाकिस्तान की लगातार रसाई 2027 से नजरसानी शुदा जीएसपी फ्रेमवर्क के तहत बैन अल-अक़वामी वादों पर उसके अमल दरामद पर मुनहसर होगी। रिपोर्ट में हालिया आईनी तरमीमात पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन तब्दीलियों की वजह से अदलिया पर इन्हिसार में आती हुई कमजोरी पर नुक्ताचीनी की जाने लगी है। अकलियती बरादरियों के हालात को उजागर करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बरादरियों को तफरीक, इनफरादी हमलों, हजूमी तशद्दुद और इनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाए जाने के वाकयात का सामना है। यूरोपीय यूनियन ने यह भी कहा है कि अकलियतों के खिलाफ नफरती जराइम पर अदालती कार्रवाई महदूद है। बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली पीवी संधु जापान ओपन 2026 के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। पीवी संधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल से जापान की सबक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा मैच न खेलने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में खेल शुरू होने से पहले क्वार्टर फाइनल मैच रद्द कर दिया गया था। सेमीफाइनल में पीवी संधु का मुकाबला अब चीन की चेन यूफी से होगा। इससे पहले संधु चीन की हान यू को हराने के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जिंद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। डीजीएमए ने बहरी जहाजों के मालिकान को हिदायत दी है कि वो खलीज खित्ते में सलामती से मुतालिक सूरत हाल के दौरान भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने पाकिस्तान से कहा है कि वो नए जीएसपी फ्रेमवर्क के तहत बैन अल-अक़वामी अजाइम पर अमल दरामद करे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 4:05 चाहते
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5 बजे हैं और ये वक्त होता है युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का। तो सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

शिवानी सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं को बलविंद्र कल्याणा की प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, प्रेम मनुष्य की सबसे सुंदर और स्वाभाविक भावनाओं में से एक है। यह केवल आकर्षण या रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपनापन, विश्वास, सम्मान, त्याग और जिम्मेदारी जैसे मानवीय गुण भी शामिल रहते हैं। युवा अवस्था जीवन का वह दौर है जब व्यक्ति भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से

तेजी से विकास करता है। ऐसे समय में प्रेम की अनुभूति युवा मन को नई ऊर्जा, नए सपने और जीवन को समझने की नई दृष्टि प्रदान करती है। आज का युवा पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक, आत्मनिर्भर और तकनीक से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने संवाद को आसान तो किया है, लेकिन साथ ही रिश्तों की प्रकृति भी बदलती है। त्वरित संवाद के इस दौर में संबंध जल्दी बनते हैं तो कई बार उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। इसलिए युवाओं के लिए यह समझना आवश्यक है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का आवेग नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और परस्पर सम्मान का नाम है। दोस्तों, प्रेम पर बातचीत जारी रहेगी आज के इस युवानी कार्यक्रम में। से पहले सुनते हैं ये प्यार भरा गीत।

0: कि लोग हमें याद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोग याद रखते हैं मोहब्बत को, इश्क को, प्रेम करने वालों को और बेहतरीन आवाज़ों को। ये बेहतरीन आवाज़ें थीं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की। फिल्म का नाम था 20 साल बाद। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: जी हाँ दोस्तों, इन संदेशों से पहले आपने गीत सुना और गीत से पहले बात चल रही थी प्रेम की। प्रेम युवा जीवन को सकारात्मक दिशा भी दे सकता है और देता है। सच्चे संबंध व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं और जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति देते हैं। वहीं असफल प्रेम या गलत अपेक्षाएँ कभी कभी निराशा, तनाव और अवसाद का कारण बन जाती हैं। ऐसे समय में परिवार, मित्रों और समाज का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संस्कृति में प्रेम का अर्थ केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि परिवार, समाज, प्रकृति और मानवता के प्रति स्नेह और करुणा भी है। ऐसे में रेडियो जैसे सशक्त माध्यम की भूमिका यहाँ और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेरक गीत, विचारोत्तेजक चर्चाएं, विशेष और सरल स्वभाव के लोगों के साथ मिलने का मौका, संवेदनशीलताएं, संवेदनशील कहानियां और न जाने कितने माध्यम रेडियो के श्रोताओं को, युवाओं को स्वस्थ, सकारात्मक और संतुलित संबंधों की ओर प्रेरित करते रहते हैं। यह उन्हें यह संदेश भी देते हैं कि प्रेम जीवन की शक्ति है, केवल जीवन का संपूर्ण उद्देश्य नहीं, आत्मसम्मान, शिक्षा, परिवार, व्यक्तिगत विकास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रेम तभी सार्थक है जब वह व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाए, दूसरों के प्रति संवेदनशील।

गतिशील बनाए और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। यही प्रेम का वास्तविक रूप है और यही युवा पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। तो सुनते हैं प्रेम से प्रेम तक का एक और गीत।

0: युवा दिलों की आवाजें बनता ये गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। मधुर संगीत आर डी बर्मन का था और आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की थी। फिल्म का नाम था बेताब।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के सूरतगढ़ केंद्र से। बात हमने प्रेम की की, युवाओं की और युवाओं के साथ साथ गीत संगीत की बात भी करते चले। गीत संगीत मानव जीवन की सबसे प्रभावशाली कलाओं में से एक है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति, विचारों के आदान प्रदान और संस्कृति के संरक्षण का भी सशक्त साधन है। युवा अवस्था में संगीत का प्रभाव विशेष रूप से गहरा होता है, क्योंकि इसी समय व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक परिपक्वता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण आकार लेता होता है। आज का युवा विविध प्रकार के संगीत से जुड़ा हुआ है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्मी गीत, पॉप, रॉप, रैप और इंडी संगीत, हर शैली का अपना अलग अलग आकर्षण है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण दुनिया भर का संगीत युवाओं की पहुंच में है। इससे उनकी पसंद का दायरा तो बढ़ा है, साथ ही विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर भी मिला है। संगीत का सबसे बड़ा प्रभाव मन और भावनाओं पर पड़ता है। मधुर और सकारात्मक गीत तनाव को कम करते हैं, मन को शांत करते हैं

और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। पढ़ाई या कार्य के बीच हल्का संगीत मानसिक थकान दूर करने के लिए सहायक हो सकता है और हमेशा ही होता है। कई शोध यह भी बताते हैं कि संगीत चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए सहायक सिद्ध होता है। बात संगीत पर और भी करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं संगीत के साथ ये गीत।

0: तेरी पायल बजी जहां मैं पागल हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये पागलपन मोहब्बत के साथ चलता है और ये मोहब्बत लिखी थी संतोष आनंद ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की थी। फिल्म का नाम था बड़े घर की बेटी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: दोस्तों कार्यक्रम युवाणी में बात चल रही है गीत की, संगीत की। संगीत युवाओं को प्रेरित करता है, देशभक्ति गीत राष्ट्रप्रेम जगाते हैं, प्रेरणादायक गीत संघर्ष करने की शक्ति देते हैं और लोकगीत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने में मदद करते हैं। कई युवा संगीत को अपना कैरियर बनाना और गायन वादन संगीत निर्देशन और ध्वनि तकनीक के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं और सफल भी होते हैं। भारतीय संगीत परंपरा विश्व की सबसे समृद्ध परंपराओं में से एक है। शास्त्रीय संगीत मन को एकाग्र करता है, लोक संगीत समाज की संस्कृति और जीवन मूल्यों को जीवित रखता है तथा भक्ति संगीत आत्मिक शांति प्रदान करता है। आधुनिक संगीत के साथ साथ इन परंपराओं से जुड़ाव युवाओं के व्यक्तित्व को संतुलित और संवेदनशील बनाता है। रेडियो आज भी संगीत का एक विश्वसनीय और लोकप्रिय माध्यम है। आकाशवाणी और FM चैनलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गीत, कलाकारों से बातचीत, संगीत आधारित कार्यक्रम और श्रोताओं की फरमाइशें युवाओं को गुणवत्तापूर्ण संगीत से जोड़ती हैं। रेडियो न केवल मनोरंजन करता है बल्कि अच्छे गीतों के माध्यम से जीवन मूल्यों को और सकारात्मक सोच को प्रसारित भी करता है। गीत संगीत युवा मन की ऊर्जा, कल्पनशीलता, संवेदनशीलता और उसकी भावनाओं को

बनाए रखने में मदद करता है। यदि संगीत का चयन सकारात्मक, प्रेरणादायक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा है, तो यह युवाओं के व्यक्तित्व विकास, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक चेतना को समृद्ध बनाता है। इसलिए आवश्यक है कि युवा संगीत का आनंद लेते रहें और साथ साथ उसके संदेश को भी समझते रहें, ताकि जीवन में उनके अमृत उतर आए। संगीत के माध्यम से उनके जो व्यक्तित्व का विकास है वो बेहतरीन हो सके। लीजिए सुनते हैं एक और गीत।

0: प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: दोस्तों, हम और आप जुड़े हुए हैं रेडियो यानी कि आकाशवाणी से। रेडियो और हिंदी फिल्म संगीत का संबंध भारतीय जनजीवन में अत्यंत गहरा और आत्मीय रहा है। पिछले कई दशकों से रेडियो ने हिंदी फिल्मी गीतों को घर घर तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक समय ऐसा था जब लोगों के लिए नए फिल्मी गीत सुनने का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय माध्यम केवल रेडियो ही होता था। सुबह की शुरुआत हो, दोपहर की फुर्सत या शाम का सुकून, रेडियो पर बजते मधुर गीत जीवन का अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं और माने जाते रहेंगे। आकाशवाणी के बाद विविध भारती सेवा ने हिंदी फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित अनेक कार्यक्रमों ने संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी विशेष जगह बनाई। इन कार्यक्रमों ने केवल गीत नहीं सुनाए बल्कि गीतकारों और गायकों की प्रतिभाओं को भी लोगों के सामने रखा। हिंदी फिल्म संगीत भारतीय समाज की भावनाओं, संस्कृति और जीवन मूल्यों का दर्पण रहा है। प्रेम, विरह, देशभक्ति, प्रकृति, परिवार, त्यौहार और सामाजिक सरोकार जैसे अनेक विषयों पर आधारित गीत लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले, मुकेश और मन्ना डे जैसे महान गायकों की आवाज़ को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में रेडियो की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। आइए सुनते हैं एक और गीत।

खतरों के खिलाड़ी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। जी हाँ दोस्तों, रेडियो की बात चल रही थी। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने संगीत को हर वर्ग तक पहुंचाया, शहर हो या गांव, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या सामान्य श्रोता। रेडियो ने बिना किसी भेदभाव के सभी को संगीत का आनंद दिया। बिजली या इंटरनेट की सीमित उपलब्धता के समय भी ट्रांजिस्टर रेडियो लोगों का प्रिय साथी हुआ करता था। खेतों में काम करते किसान, लंबी यात्रा करते यात्री और घरों में परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर गीत सुनते थे और आज भी सुनते हैं। इसने सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव को भी बहुत मजबूत किया है। रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि संगीत संस्कृति का संरक्षक भी है। यह नई पीढ़ी को पुराने स्वर्णिम गीतों से परिचित कराता है और उन्हें भारतीय फिल्म संगीत की समृद्ध परंपरा से जोड़ता है, साथ ही नए कलाकारों और नए संगीत को भी श्रोताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। रेडियो और हिंदी फिल्म संगीत का रिश्ता केवल ध्वनि का नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और संस्कृति का रिश्ता है। बदलती तकनीक के बावजूद रेडियो की आत्मीयता और हिंदी फिल्म संगीत का मधुर आकर्षण आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह जीवित है जैसे कभी पहले हुआ करता था। रेडियो आज भी जिंदा है, आपके लिए गीत लेकर हाजिर हैं।

0: आप सुन रहे थे अलका याग्निक और अमित कुमार की आवाज़ों को। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म का नाम था नरसिम्हा। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल यानी कि सूरतगढ़ से। बात करते हैं आज के इतिहास की यानी कि आज के दिन के इतिहास की। आज के दिन के इतिहास को बताने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: दोस्तों आज के दिन यानी कि 17 जुलाई के दिन 1463 में 1453 में फ्रांस ने इंग्लैंड को हराकर 100 वर्षीय युद्ध का निर्णायक अंत किया था। आज ही के दिन 1918 को रूस के अंतिम जार निकोलस द्वितीय और उसके परिवार की हत्या कर दी गई थी। और आज ही के दिन यानी कि 17 जुलाई के दिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता से पहले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटेन के सम्राट की स्वीकृति मिली थी। और आज ही के दिन 1955 में कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड का उद्घाटन हुआ था। और आज ही के दिन 1975 में अमेरिका और सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान अपोलो सोयूज अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जुड़े, जो शीत युद्ध के दौर में सहयोग का प्रतीक बना। दोस्तों आज ही के दिन 1911 में बनारसी दास चतुर्वेदी का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, पत्रकार और समाजसेवी थे। आज ही के दिन यानी कि 17 जुलाई के दिन 1954 को एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, उनका भी जन्म हुआ। जाते जाते सुनते हैं ये गीत।

आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण की, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है, फिल्म का नाम है रामावतार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 6:05 पर आप सुनेंगे सरायकी, 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से, 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। और श्रोताओ, आपको याद दिला दें संध्या 7 बजे से 7:45 पर आप तक आप सुनते हैं चौपाल। आज की प्रस्तुति रहेगी रमेश चावरिया की और आप सुनेंगे आपका अपना मधुर कार्यक्रम गीतारो गजरो। सुनना न भूलें संध्या 7 बजे। 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 8 बजे आप सुनते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं किसी एक फिल्म के गीत और उन गीतों के बारे में जानकारी, उस फिल्म के बारे में जानकारी। तो आज रात्रि 8 बजे सुनना।

मैं भूले, कार्यक्रम एक ही फिल्म से 8:30 पर से आप सुनेंगे हमारे समाचारों के कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले यानी कि 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन यानी कि खेल समाचार, और उसके बाद 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, और न्यूज 8:09 आप सुनेंगे रात्रि 9:00। ये समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और श्रोताओं, रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं कुछ गजलें, और रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू, पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे 9:30 से 10:30 तक, और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। आज की सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। एक बार आपको फिर से याद दिला दें, संध्या 7:00 आप सुनना न भूलें कार्यक्रम चौपाल रमेश चावरिया के साथ। कार्यक्रम रहेगा गीतारो गजरो, और रात्रि 9:30 पर सुनना न भूलें पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू।

मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:05 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की।

ऑल इंडिया रेडियो दी विदेश प्रसारण सेवा दा सिराइकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते अज दा प्रोग्राम घिन के हाजिर हाँ। कुछ बाता कुछ गीत अज असा तुहाडे नाल बहु गल्लां भी करेनियां हन ते बहु वधिया गीत भी तुहाकू सुनवेंदे हाँ। सुनन आलियो, दुनिया विच एक बहु प्यारा रिश्ता है पिता पुत्र दा। जड़न घर विच पुत्र पैदा होंदा है ता माता पिता बहु खुशियां पाए मनावदे हन। वला उसको पाल पोस के वड़ा करेंदे हन। वला ओ भावे परदेसां विच वेंदे वसेंदे जां मां प्यो को ना पुछेंदे हन, पर मां प्यो पुत्र को किवें भूल जावन। इसे भाव को दर्शेंदा मैं तुहाकू एक गीत सुनवेंदी पई हां। गावन वाले हन AS कंग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रही हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। ये समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद राजस्थानी में, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवा देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत बताया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में वित्तीय गड़बड़ियां करने पर बीते 3 महीनों में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया। और राजस्थान पुलिस ने भिवाड़ी से साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को आज रवाना किया। उन्होंने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का परिवहन

0: अध्ययन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से संचालित होगा। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। अब तक जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका में ही ये सुविधा उपलब्ध है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है, जबकि दूसरे देशों में हाइड्रोजन ट्रेन 2 या 3 डिब्बों की होती है। इससे भारत में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से बनी 3200 हॉर्स पावर वाली इस ट्रेन को रेलवे इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट उपलब्धि बताया। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत कहा।
1: 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो ग्रीन रेल की प्रौद्योगिकी को पर्यावरण अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में डीजल की जरूरत नहीं होती है।
2: ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है, इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज ही चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क क्षेत्र की करीब 4,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके बाद श्री मोदी ने देशभर में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का जालंधर कैंट से वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल है। इन स्टेशनों पर आयोजित कार्यक्रम से स्थानीय प्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग जुड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम से पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण समारोह से जुड़े। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है, उस संकल्प के साथ गति देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मुद्रास्फीति और रुपया स्थिर और सामान्य बना हुआ है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में श्री मल्होत्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का सेवा निर्यात, रिकॉर्ड विदेशी निवेश, एफडीआई और नए व्यापार समझौते अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति में बाधाओं से महंगाई का दबाव है। अनिश्चितता की इस स्थिति में भारत सभी क्षेत्रों में मजबूत बना हुआ है।
4: पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और इस वर्ष भी हमारा अनुमान है, जो हमने अपनी एमपीसी की आखिरी बैठक में हमने जब अनुमान दिया तो इस वर्ष भी हमने अनुमान लगाया है कि 6.6%। अधिक अनिश्चितता के बावजूद एक अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूँ।
0: कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से आज जयपुर में रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। इसमें 50 से अधिक कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए सैकड़ों आशार्थियों का चयन किया। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने रोजगार सहायता शिविर को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को कौशल आधारित रोजगार देने की बात कही। श्री राठौड़ ने बताया कि सरकार अब तक 24 रोजगार मेले आयोजित कर चुकी है।

0: सीखेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे। और ये आप सीढ़ी मान लीजिए कि सीढ़ी का सबसे पहला कदम है आज का रोजगार मेला। इस रोजगार मेले में पहला कदम लोगे, संभव है किसी और के लिए आज नौकरी शुरू करोगे लेकिन कल खुद का रोजगार लगाओगे और दूसरों को रोजगार देंगे।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज भरतपुर के भुसावर में नए कृषि महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान श्री बागड़े ने विभिन्न विकास कार्यों की भी सौगात दी। राज्यपाल ने महाविद्यालय परिसर का भ्रमण कर विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से जैविक खेती को लेकर भी चर्चा की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज नई दिल्ली में एनडीए के मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, केंजरापू राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में मौजूद रहे। बैठक में संसदीय सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करवाने का कार्यक्रम है। सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह की वित्तीय और अन्य गड़बड़ियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके तहत बीते 3 महीनों में 51 संबद्ध अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि सरकार अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने में 24 अस्पतालों पर कार्रवाई कर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि इन अस्पतालों की ऑडिट में कई गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि ऑडिट प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड और म्यूल हंटर सहित कई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनके जरिए साइबर ठगों की गतिविधियों का पता लगाने के साथ ही संदिग्ध बैंक खातों, सिम कार्ड्स और अवैध मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया जा रहा है। भिवाड़ी में कल डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वारंट का डर दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश उपाध्याय ने बताया कि इस गिरोह ने कई राज्यों में लोगों को अपना शिकार बनाया। ये कार्रवाई भिवाड़ी SHO सचिन शर्मा की अगुवाई में की गई।
2: ये जो गिरोह है इसने अभी तक इसने जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1,00,000 से ज्यादा का मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें उससे ज्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है उसका अनुसंधान जारी है।
1: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर आज से नई दिल्ली में राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2 दिन का ये आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षित और गरिमापूर्ण माहौल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को बिना डर के काम करने का अधिकार है। सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना सरकार, संस्थानों और नियोक्ताओं की साझा जिम्मेदारी है। आज दहेज प्रतिषेध दिवस है। लोगों को दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करने के लिए इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दहेज यानी शादी के लिए किसी भी तरह की संपत्ति या कीमती वस्तु मांगना एक सामाजिक कुरीति होने के साथ ही दंडनीय अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। दहेज प्रतिषेध दिवस के मौके पर पाली के राजकीय कन्या महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इसमें छात्राओं को इस सामाजिक कुरीति के नुकसान के बारे में बताया गया और दहेज मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। भारत टैक्स 2026 का आज नई दिल्ली में समापन हुआ। 4 दिन के इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, नवाचार और निवेश को मजबूत करने के लिए मंथन किया गया। सम्मेलन में 138 देशों के 1,600 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। इसमें 11,000 से ज्यादा खरीददारों ने भाग लिया जिनमें 6,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत बताया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में वित्तीय गड़बड़ियां करने पर बीते 3 महीनों में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया और राजस्थान पुलिस ने भिवाड़ी से साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में रिफाइनरी उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण राजसमंद में भी दिखाया गया। जिला स्तरीय समारोह में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर जिले में 402 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट वितरित किए गए। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नौचौकी पाल पर जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 2390 योग साधकों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हल्दीघाटी की ऐतिहासिक धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अरण्य बाग परिसर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और त्याग को याद किया गया। वहीं चेतक की स्मृति में अश्व प्रतियोगिता भी हुई। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मचींद गांव में राणा पूंजा पर्यटन स्थल पर 2 दिन का मेला लगाया गया। पहाड़ चढ़ाई प्रतियोगिता के साथ मेले में भील समाज की वीरता और संस्कृति की झलक देखने को मिली। तीरंदाजी, रस्साकशी, कबड्डी सहित प्रतियोगिताओं में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग का बीते दिनों अवलोकन किया। राज्यपाल दुर्ग परिसर में बनी महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुर्ग का पैदल ही अवलोकन करते हुए ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता और स्थापत्य कला को नजदीक से देखा। राज्यपाल ने दुर्ग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके संरक्षण तथा संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राजसमंद पुलिस की ओर से देवगढ़ में साइबर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया, मजबूत पासवर्ड, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। राजसमंद के भीम उपखंड में डिजिटल प्रहरी प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। साइबर पुलिस ने युवाओं को फर्जी ऐप, एपीके फाइल और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। नाथद्वारा में प्रज्ञानम टेक्नोफेस्ट 2026 के तहत शिक्षा क्षेत्र में बड़ी पहल की गई। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की संयुक्त पहल से जिले के 100 सरकारी स्कूलों में प्रगति और स्टीम लैब स्थापित होंगी। इन लैबों में विद्यार्थियों को AI, रोबोटिक्स, कोडिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिछले दिनों नाथद्वारा में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जिला प्रभारी सचिव आरती डोगरा ने निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आमजन के कामों को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए। राजसमंद में रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस संपर्क सभा का आयोजन किया गया। सभा में पुलिस जवानों ने अपनी सेवा संबंधी आवास, स्वास्थ्य और ड्यूटी प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं रखी। पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर समाधान किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। लक्ष्मी विलास धर्मशाला के पास बनने वाले इस द्वार का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। जिले में निर्जला एकादशी पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मेवाड़ के प्रसिद्ध धाम चारभुजानाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। व्रतधारी महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए जल कलश अर्पित किए और परिवार की सुख

0: समृद्धि की कामना की। इसी के साथ राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत हाइड्रोजन नू रेल चलावण वालों दुनिया रो पांचवो देश बन्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनने खुद रे पाण उबो भारत बनावण अर हरित ऊर्जा संकल्प री जीत बतायो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो, पश्चिम एशिया माय तनातनी रा हालात रे बावजूद देश री माली व्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार आरजीएचएस माय माली गड़बड़ियां करण रा आरोप माय लाडला 3 महीना माय 51 अस्पतालां ने योजनाओं हटाया। अर राजस्थान पुलिस भिवाड़ी उं साइबर अपराधियां रा अंतरराष्ट्रीय गिरोह रो भंडाफोड़ कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन नु चालन वाली देश री पहली रेलगाड़ी ने आज हरियाणा माय जींद उं रवाना कीनी। आ गाड़ी जींद सोनीपत बीच चलाई जा रही है। ई मौके श्री मोदी 12,470 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली नेशनल हाईवे परियोजनावां री शुरुआत कीनी और पूरा भिया काम जनता ने सौंपया। प्रधानमंत्री कहो कि लाडला 12 साल माय रेलवे माय खास बदलाव करी चिया। श्री मोदी कहो कि 21वीं सदी री रेल व्यवस्था हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी ऊंचा लेला। प्रधानमंत्री कहो कि मौजूदा दौर माय दुनिया रा केवल 3-4 देशों के नई हाइड्रोजन ट्रेन चलावन रो बूतो है। इस आगे भारत हाइड्रोजन नु रेल चलावन वालो पांचवो देश बन क्यों है। हाल ताई जर्मनी जापान चीन और अमरीका माय ही ओ सुबितो है। 10 डिब्बों वाली ई रेलगाड़ी माय 2,600 मुसाफिर सफर कर सके है। दूजा देशों माय हाइड्रोजन नु चलाई जावन वाली रेलगाड़ियां माय 2 या 3 डिब्बा फै है। प्रधानमंत्री कहो कि 3,200 हॉर्स पावर बूता वाली भारत री हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया री सब ताकतवर और हाइड्रोजन चालन वाली लंबी रेलगाड़ियां माय शामिल है।
2: 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं।
1: इस मौके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाइड्रोजन नु चलन वाली नमो ग्रीन रेलगाड़ी री शुरुआत ने देश री तकनीकी बरकत माय ऐतिहासिक उपलब्धि बतायो। श्री वैष्णव कहो कि आ गाड़ी पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है और इन माय डीजल री जरूरत नहीं है।
3: ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है, इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में है। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है।
1: प्रधानमंत्री आज ही चंडीगढ़ माय स्वास्थ्य भणाई लिखाई और सड़क हलकाओं जुड़ी विकास री करीब 4,700 करोड़ रुपये री परियोजनावां री शुरुआत कीनी। इन पाछे श्री मोदी देश भर माय और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशनों रो पंजाब राज जालंधर कैंट वर्चुअल तरीका उद्घाटन कीनो। आ माय राज्य रा जैसलमेर बाड़मेर दौसा डीग गंगापुर सिटी गोटन खैरथल और सोमेसरी शामिल है। आ टेसना माथे राखी जिया कार्यक्रम माई वठेरा जनता रा नुमाइंदा अहलकार और मोटी तादाद माई लोग भेड़ा फिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई नागौर जिला रा गोटन रेलवे स्टेशन माथे राखी जिया कार्यक्रम माई शामिल फिया। ई मौके श्री शर्मा कहो कि ओ विकसित भारत बनावन रो संकल्प सांचो करण री दिशा माई खास कदम है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है उस संकल्प के साथ गति देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है।

0: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
1: भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो है कि मध्य पूर्व में उपजी तनातनी रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था मजबूत बनियोड़ी है। डीडी न्यूज चैनल सागे बातचीत करता था श्री मल्होत्रा कहो कि भारत कानियों दिशावर माए भांत भांत री सेवा मुहैया करावणो, रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और नुआ कारोबारी करार माली व्यवस्था ने मजबूत बना रहा है। वे कहो कि अनिश्चितता रा हालात माए भारत सगला हलका माए मजबूत बनियोड़ो है।
2: पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और

0: चितता रा हालात माई भारत सगला हलका माई मजबूत बनियोडो है।
1: पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और इस वर्ष भी हमारा अनुमान है, जो हमने अपनी एमपीसी की आखिरी बैठक में हमने जब अनुमान दिया तो इस वर्ष भी हमने अनुमान लगाया है कि 6.6%। अधिक अनिश्चितता के बावजूद एक अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूँ।
0: कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग री ओरों आज जयपुर माए रोजगार सहायता शिविर लगाई चियो। इन माए 50-32 कंपनियां न्यारा न्यारा ओहदा सारू उम्मीदवारा ने नौकरी रा प्रस्ताव दीना। ई मौके उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ स्थानीय स्तर माथे नौजवाना ने कौशल आधारित रोजगार देवण री अरज कीनी। कर्नल राठौड़ बतायो कि सरकार हाल ताई 24 रोजगार मेला लगा चुकी है।
2: काम सीखेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे, और ये आप सीढ़ी मान लीजिए कि सीढ़ी का सबसे पहला कदम है आज का रोजगार मेला। इस रोजगार मेले में पहला कदम लोगे, संभव है किसी और के लिए आज नौकरी शुरू करोगे लेकिन कल खुद का रोजगार लगाओगे और दूसरों को रोजगार देंगे।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज भरतपुर जिला रा भुसावर माए एग्रीकल्चर कॉलेज रो नूव भवन जनता ने सौंपियो। ई मौके राज्यपाल कॉलेज परिसर रो दौरो कर वठे मुहैया कराया जा रहा न्यारा न्यारा सुबितान रो जायजो लीनो। वह किसाना सागे जैविक खेती रे बारे माए चर्चा कीनी। कार्यक्रम माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई मौजूद रहा। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई शुरू फैला। इनु पहले आज नई दिल्ली में एनडीए रा मंत्रियों रा समूह री मीटिंग रखी जी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, किंजरापुर राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू मीटिंग में शामिल फिया। मीटिंग में संसदीय सत्र री रणनीति रे बारा में चर्चा करी जी। सत्र पहली 19 जुलाई ने सगली पार्टियां री मीटिंग बुलाई जी है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS माय साफ कोई और जवाबदेही तय करण सारू अपनाई जी जीरो टॉलरेंस नीति रा तहत लारला 3 महीना माय 51 संबद्ध अस्पतालों ने योजनाओं हटा दीना। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बतायो कि लारला महीना 24 अस्पतालों माथे गड़बड़ियां रा आरोप माए करीब 3 करोड़ रुपया रो जुर्मानो लगाई चियो। चिकित्सा विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो के आ अस्पतालों री ऑडिट माए कई माली गड़बड़ियां सामी आई। साइबर अपराधियां माथे काबू करण सारू राजस्थान पुलिस री ओरू ऑपरेशन साइबर शील्ड और म्यूल हंटर समेत कई खास अभियान चलाया जा रहा है। इन जरिए साइबर ठगान री करतूता ने ठा करण सा गई शंका वाला बैंक खाता, मोबाइल सिम कार्ड्स और गैर कानूनी तरीकों चलाया जा रहा मोबाइल नंबर ब्लॉक कराया जा रहा है। दुनियारा न्यारा न्यारा हलका माए डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वारंट रो डर बतार ठगी करण वाला एक गिरोह रो भिवाड़ी रा SHO सचिन शर्मा री अगुवाई माए भंडाफोड़ करी चियो। भिवाड़ी रा SP ब्रिजेश उपाध्याय बतायो कि वो गिरोह कई राज्यों में ठगीरी वारदाता की नी।
3: ये जो गिरोह है इसने अभी तक इसने जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1,00,000 से ज्यादा का मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें उससे ज्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है उसका अनुसंधान जारी है।
0: कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण कानून 2013 रे बारे माए आज नई दिल्ली माए राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुयो। 2 दिन रो ओ कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग री ओर राख्यो जा रियो है। ई मौके केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहो के महिलाओं री अगुवाई माए विकास रा संकल्प ने आगे बढ़ावण सारू काम री ठौड़ सुरक्षित और मान वालो माहौल जरूरी है। वह कहो के हर महिला ने बिना डर काम करण रो हक है और काम रो सुरक्षित वातावरण बनावणो सरकार संस्थाना और नौकरी देवण वाला री भेली जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार खिलाड़ियों का न्यू

0: રોક લગાયોડી દવાઈયાં કામ લેવણને રોકણ સારું રાષ્ટ્રીય ડોપિંગ રોધી કાનૂન 2022 એર રાષ્ટ્રીય ડોપિંગ રોધી સંશોધન કાનૂન 2025 લાગુકરણ રો એલાન કિનો હૈ વો કાનૂન દેશ રા ડોપિંગ રોધી ઢાંચાને વૈશ્વિક માનકાને મુજબ મજબૂત બનાવે હૈ એર નેશનલ એન્ટી ડોપિંગ એજન્સી નાડાને જાંચ રો હક દેવે હૈ कपड़ा हल्काओं जुड़ियो भारत टैक्स 2026 सम्मेलन आज नई दिल्ली माए पूरो भेग्यो चार दिन रा ई सम्मेलन माए कपड़ा बनावण ई हल्का माए नुआ काम करण और निवेश न मजबूत करण रे बारा माए चर्चा करी जी सम्मेलन माए 1,600 प्रदर्शक शामिल भया इन माए 11,000 खरीददार ई शामिल भया जा माए 6,000 दूजा देशा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला आ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला इन कार्यक्रम रे 136वीं कड़ी फैला इसारू आप ही सुझाव 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे भेज सको हो नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो भारत हाइड्रोजन नु रेल चलावन वालो दुनिया रो पांचवो देश बनियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनना खुद रे पान उबो भारत बनावण और हरित ऊर्जा संकल्प री जीत बतायो आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहयो पश्चिम एशिया में तनातनी रहा हालात रहे बावजूद देश री माली व्यवस्था मजबूत राज्य सरकार आरजीएचएस में माली गड़बड़ियां करन रहा आरोप में लारला 3 महीना में 51 अस्पताल ने योजनाओं हटाया और राजस्थान पुलिस भिवाड़ी उन साइबर अपराधियां रा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह रो भंडो फोड़ कीनो ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7 बजे हैं वक्त है ये चौपाल का आपके खत और आपके ईमेलों पर नजर गड़ाए बैठे हैं रमेश जांवरिया कार्यक्रम गीतारो गजरों लेकर तो सुनते हैं चौपाल

बिल्कुल साहब, के घिर भरसी दिन बादड़ी, के घिर भरसी दिन बादड़ी, एर सागन भक्त निनान, एर किरसा तेजो गांव था जीवट धनिया पान। बिल्कुल सा, आज कार्यक्रम गीतारो गजरो लेर थारो भाई रामेश्वर हाजिर है सा, और थारे विचारे आज हूँ ले रहे हूँ थारी पसंद का लोकगीत और लोक भजन। कार्यक्रम की शुरुआत का माँ अपा अपना हमेशा एक परंपरा रही है कि आप एक भजन चलाए करा, तो थाना एक भजन सुनावा और ई भजन का अपने पछे जी फरमाइशें हैं भी बांचांगा सा, तो थे सुनो भजन।

बिल्कुल सर, थाने बाबा रामदेव जी को भजन सुनाए और आपने दी फरमाइश पुगी है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ चू रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रेहान गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब छू आपने दी फरमाइश मांडी है ओम बगड़िया क्रियांश बगड़िया रजत बेबी और ग्रीमा बगड़िया कंवर कॉलोनी बड़वा है जिला खरगोन मध्य प्रदेश छू प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली आप फरमाइश पूगती हुई है सा अपने ते ग्राम पीपरलोड सरगाम छत्तीसगढ़ छू दीपेश वर्मा पुनु वर्मा और अंगसागर है ज्योति और शिवांश वर्मा संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ कमल साहनी पिंगवाला चौक गुरैया जलंधर छू भी अपने ती फरमाइश मंडी है सा और आप फरमाइश पुगी है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली छू और लिखने वाला है गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले अशोक येले हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान खान और शहनाज भी आपने दी फरमाइश मंडी ऐसा डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश पूगती होगी राष्ट्रपाल गज भी राधिका गज भी अनिष्का और तन्मय आप फरमाइश पुगी है सांगली जिला केजत शहर से अल्ताफ हुजरे सैफुल्लाह सबाहत किर्त हुजरे और रेहान शेख अनारकली बाजार जगराम पंजाब से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्य मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक और आ फरमाइश पुगी है संगरिया से श्याम मिड्डा सुमन मिड्डा और अंग सागे अगली फरमाइश आपने तीन

लिखर भेजी है, कुंभार गली श्री रामपुर छू, अशोक दल्ले, सविता दल्ले, अनिकेत दल्ले, रोहिणी दल्ले, ऋषिकेश दल्ले, जीविका दल्ले और सनिका दल्ले। आप फरमाइश पुगी आपने ते चक 15 पीएसयू सरजीत सिंह जोसन, सरजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, आदर्श पाल जोसन मेलबर्न, रोबिन सिंह जोसन वैंकुवर और कानाराम भाटी अंगसागे है और अंगसागे है विजयपाल सिंह। अब थाना एक गीत सुना दिया, थाली भरगे लिया खिचड़ो, लियो सुनो सा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बिल्कुल सा थाने गीत सुनायो थाली भर गए लियाई खिचड़ो। इन गीत की फरमाइश अपना ती करी ही नाई वाला जिला हनुमानगढ़ से हूँ वेद मिडा अलका मिडा और अंग सागह नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हूँ पीएस नोहाकर निर्मला नोहाकर और विशाल नोहाकर। इन गीत की ही फरमाइश अपना ती चक 14 पीएसबी से हूँ कुलदीप सिंह राजविंद्र कौर संदीप सिंह जसकंड सिंह हरदीप सिंह मनोराज विरक रल मिल गए लिखी है और आ फरमाइश अपना ती पूछती है कुलविंदर सिंह सुखप्रीत जसदीप और हाँ लिखे है गांव 4 MCU। ये गीत की फरमाइश मोताला महाराष्ट्र से हूँ विजय सुरलकर रत्नामाला आरती गोरी और ओम कुमार सुरलकर। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से हूँ मध्य अपने मध्य प्रदेश से फरमाइश मंडी है विनोद मुणत नेहा जैन दीपक मैंक मुणत चेतन नाहटा दीक्षा कुश मुणत। आ फरमाइश अपने दीपू गया गाँव रायण से बनवारीलाल जयपाल बिमला जयपाल सोनू ममता दिशा मोक्ष सुशांत विक्रम जयपाल पूनम चालिया महेंद्र कपूर की आवाज गंगा मा मैंने खम्मा खम्मा अपने गीत सुनाइयो बाबा रामदेव जी का है ना। तो बिल्कुल अगला कार्यक्रम में थाने जरूर सुना दे लेकिन शुरुआत का मा आपा की है कि एक बाबा रामदेव जी को भजन सुना दियो सा। आ फरमाइश पुग्गी है ऊपरकोट मोहला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद आवासी निगत परवीन आवासी शहनवाज आवासी सरफराज आवासी फरदीन आवासी सुहाना आवासी अरजान आवासी अबान आवासी और सगड़ो परिवार। मंजू कुमावत की आवाज में के कोई गीत सुनाइयो आ बात लिखकर भेजिए दादरी गेट भिवानी से हूँ कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा और कुनाल मेहरा। तो बिल्कुल थाने बिया तो बता दें कि अगर आपने अठे भंडार गृह गां मंजू कुमावत की आवाज़ में कोई गीत भजन होया तो वे ढूंढ के अगली बार थाने जरूर सुना सियाँ लेकिन अब की बार थाने रेड़ा मणिया जी का गीत भजन भी सुना सियाँ सा। आप फरमाइश पुग्गी है दतरंगी भटापारा छत्तीसगढ़ से हूँ हीरामणि वर्मा पार्श्वनी वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और अंगसा गया बब्बू और डब्बू। डबवाली हरियाणा से जेके बकोलिया सुनीता बकोलिया संजय अनिल और मीनू बकोलिया भी अपने ती फरमाइश मान दी और आ फरमाइश अपने ती पुगती हुई है सादुल शहर से प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश वेद प्रकाश चौहान। श्री गंगानगर से बजरंगलाल शर्मा जगमोहन सिंह अरनेजा दिनेश कुमार शर्मा नरेश कुमार शर्मा भी फरमाइश मांडी है और आप फरमाइश पुग्गी है मंडी गोलवाल से बिरजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान। अलीका डबवाड़ी से बसंत सिंह चंद राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी और आ फरमाइश गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से सोलाल जी बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित और हेमंत बेनीवाल सगड़ा रल मिल के लिखी ऐसा। अब थाने एक गीत सुना दिया लियो सुनो सा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बिल्कुल सा आवृत्ति फरमाइश पुग्गी है बसंत बिहार सूरतगढ़ शू।

और लिखी है जगदीश सैनी, तनिषा सैनी, भानवी भानुशाली और आ गीति फरमाइश लिखी है सा। आ फरमाइश पुगी है अपना ते चंडीगढ़ शू सतीश अनेजा विमला अनेजा और गांव जोगीवाड़ा श्री गंगानगर शू प्रेम सहारण मोनिका और मुनि सहारण भी फरमाइश मांडी है। आ फरमाइश पुगी है हनुमानगढ़ टाउन शू सुल्तान सिंह तड़, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी। फरमाइश पुगती हुई है सा अपना ते गांधीनगर गुजरात शू सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। लखवाड़ी हेड शू मास्टर भंवरलाल कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकड़ा राम। आ फरमाइश ज्योति नगर नोखा राजस्थान से अपना तीन पुक्ति करी है पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोरधनधरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी और हसन शिक्का। अगली फरमाइश लिखी है सूरतगढ़ से लेखराज साकिया, पवन कुमार, सुरजीत सिंह, रवि कुमार, कुंदन लाल और उदय सिंह। गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोरी भी फरमाइश मांडती सा। आ फरमाइश पुगी अपना ती तहसील भादरा अनूपशहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल राघव, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, फूसाराम मील, महावीर लोहरा, अशोक कुमार, उपेश कुमार, ममता, मीतू और अंशाग है किन्नू, अक्षय, भंवरलाल सोलंकी और बिंगी आवाज गवा के बंग साथी आवाज गवा कोई गीत सुनाई उसका। बिल्कुल सा अगला कार्यक्रम में आत थारी जी की बात है वो मांड ली और अगली बार आपकी है कि जो को वो भजन जो को है ना वो आपकी बार आपा ले गए राख से। आप फरमाइश पुगी आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। फरमाइश पुगी मंडी केसरी सिंह पुरसू, बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष सूद और विश्वजीत। अगली फरमाइश रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा भी मांड दी। और आ फरमाइश चक 10 SDP लालगढ़ जटान, जिला श्री गंगानगर से रामेश्वर लाल निरानिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मेहरचंद, हेमू, मनीषा और बिरजलाल अपने आरण मिल गए लिखे सा। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी भी फरमाइश मांड दी सा। थाने सगड़ा ने एक गीत

0: तुम्हें एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94-144-67-186।
3: बिल्कुल सर, अगली फरमाइश आपा बांसा आप पुगी है फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ कुमार डूडी और आप फरमाइश पुगी है हितेंद्र दास लिखी है और लिखी है आसाम से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश हूँ यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरिल सिंह। आप फरमाइश पुगी है कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। बिहारी कॉलोनी सहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। अगली फरमाइश गांव घुमंडिया से अपने ती मांडर भेजी है जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति शिवम और अंगसागा सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया और अंगी दोईती है युवा धरणिया। आ फरमाइश पुगी है अपने ती चक 15 PS से के आर भाटिया, प्रेरणा भाटिया, डिम्पल भाटिया, रोशनी। नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओम प्रकाश, साई गायकवाड़। बठिंडा रोड मंडी डब्बवाली से फरमाइश लिखर भेजी है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। और आ फरमाइश अपने ती लिखर भेजी है गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप सिंह पंवार और सगड़ो परिवार आंगो। आ फरमाइश लिखर भेजी है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिटू भैया, सजदा रानी और हिना कोशर। दिग्दर्शन और कविता गोड़ भी अपने ते मेरठ से फरमाइश मान दिशा गांव ढाणी लाल खां से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां, सोहेल खां, जुनेद खान, मुखराम, आरिफ खां, यान खान, अरशद खान, अरमान खान भी फरमाइश मान।

सा। आप रमेश, गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, सिंह विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश यदु कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीला दरस्वामी, कृष्ण मायल, कीड़ूराम जोईया, हनुमान सारण और सुनील पाईवाल आंबी फरमाइश मांडी सा। अगली फरमाइश चक 19 GD शू गुरतेश ओलख और लिखिए और आ फरमाइश लिखर भेजिए अपना ती गांव खोकरा वाली शू विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, सगुन बारासा और संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा आ लिखिए फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसिला जिला चुरू शू। अगली फरमाइश भोपालगढ़ राजस्थान शू धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिवार लिखकर भेजी है और आप रमेश पुगिया बाबा कुटीर रायगढ़ शू शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, कस्बा गुनेर यूपी शू फारूक अली खान, फेजी फराज, फ्रहीन फरहान, फारिया ताहिरा भी फरमाइश मंडी ऐसा। नेहरू चौक पैठण शू डॉक्टर सुरेश कुमार यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव और बेबी सिया यादव आ फरमाइश लिखर भेजी है और लिखी है अमरपुरा जालू खाड़ सुन जगदीश चंद्र प्रजापति, बिमला प्रजापति, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, गांव खारिया, जिला सिरसा, हरियाणा सू प्रताप जी नागले, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया और आ फरमाइश लिखर भेजी है भोपालगढ़ सूँ, जोधपुर सूँ घनश्याम सिंह चौधरी, अंकित सिंह, अलीकर डब्वाली शू बसंत सिंह चंद, कुलदीप गांधी, राजकुमार, सुनीता भी आपने दी फरमाइश मान दी और आ फरमाइश पुगिया पाकुड़ झारखंड सू उत्तम कुमार भक्त, श्वेता भक्त, किशु ताशु, अर्णम आनंद और सत्यम आनंद। अगली फरमाइश आपने ती लिखर भेजी ऐसा सरस्वती देवी मलखट, हरबंस लाल, बनवारी लाल, गोपीराम मलखट, ललित नरेंद्र, मीनाक्षी मलखट, मोनिका, गीतांजलि और अरणमिलगे लिखी है लेकिन आपको गांव को जो नाम है वो लिखियो को निशा। आ फरमाइश लिखर भेजिए ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब शाही राय, मेरा जहाँ, आजाद नगर, लक्षर, हरिद्वार शू और गांव हीरावाड़ी फाजिलका पंजाब शू, सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदू पार्वती, हिमांशु गुदारा, सरवण रिणुआ, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, क्रोडवाल, सुरेंद्र भादू भी आपने ती फरमाइश मांड दी सा। अगली फरमाइश रायसनगर शू धनराज भांबू, सोनलाल जांगिर, चेतनराम सारसवा, प्रदीप सारसवा, राजेंद्र कासनिया, अरविंद कासनिया, विजय कासनिया, आशीष भांबू आम भी रली मिली फरमाइश लिखी है सा और आ फरमाइश आपने ती सादुल शहर से रामकुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड भी भेज दी सा। अगली फरमाइश ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दूर छत्तीसगढ़ से बलकण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और बंटी और बबली अंगसागे है। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, प्राग टेलर, पुन्ना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन थाने सगला ने एक गीत सुना दिया सा, लियो सुनो सा।

बिल्कुल सर, इन गीत की ही फरमाइश आपने ते पूर्ति करी है। कर्णपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू कटारिया, और आ फरमाइश आपने ते गांधीनगर गुजरात से लिखकर भेजी है जी के परमार। चक 1 PM अनूपगढ़ से गुरबचन बेदिल और राजविंदर बलविंदर थिंद और रूबिया रल मिल के फरमाइश लिखी है। सा रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और भी फरमाइश मांडी है। सा गांव हिरावली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल प्रोहित, मोनी पारिक और भूपेंद्र पारिक भी फरमाइश मांडती। सा लियो सुनो साथियों गीत।

टेजा गुड्डू जिन्नू मनु शिव सेठी कनपुरी स्माइल टूटेजा पवन गुजर और गांव 34 एसटीजी पीड़िबंगा से हूँ प्रेमी बिशनलाल मेहरा अमन समीर और रितु मेहरा चैलकला पंजाब से हूँ अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा और कुलविंदर कौर अंबा चहल भी मंडिया सा तो थे सुनो गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। आज की प्रस्तुति थी रमेश चांवरिया की, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नसीब अपना अपना। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत शबीर कुमार की आवाज़ में। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और नगमा।

नसीब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8 बजे हैं और ये वक्त होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से के गीतों का। आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म एक दूजे के लिए के कुछ गीत। लीजिए सुनते हैं सबसे पहले

दोस्तों आज आप सुन रहे हैं प्रसाद प्रोडक्शन की फिल्म एक दूजे के लिए के कुछ गीत। अभी आपने एसपी बाला सुब्रमण्यम, क्षमा करें, अनूप जलोटा और लता मंगेशकर की आवाज़ों को सुना। इस फिल्म के गीतों को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस फिल्म के सभी गीत बड़े ही मधुर गीत हैं। लीजिए सुनते हैं एक और गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी

0: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंस
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए के कुछ गीत। इस फिल्म के निर्देशक के बालाचंद्रन और लेखक भी के बालाचंद्रन, इनके साथ साथ निर्माता एल वी प्रसाद और इस फिल्म के अभिनेता थे कमल हासन, इनके साथ थी रति अग्निहोत्री और माधवी। गीत आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। ये फिल्म 5 जून 1981 को रिलीज हुई थी।
3: ये क्या, लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
4: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए। जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म के कुछ गीत। इस फिल्म के बहुत से कलाकार फिल्म फेयर के लिए नामित रहे और कुछ ने जीत भी हासिल की। इनमें मुख्यतः एसपी बालसुब्रमण्यम, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार इन्होंने जीता। एलवी प्रसाद फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए नामित रहे। के बालाचंद्र फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार के लिए नामित रहे। कमल हासन फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामित रहे। रति अग्निहोत्री फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामित रही। माधवी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामित रही। असरानी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार के लिए नामित रहे और के बालाचंद्रन फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार इन्होंने जीता। इस फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम भी नामित रहा और आनंद बख्शी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला। और एसपी बालासुब्रमण्यम के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार इन्होंने जीता। और लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से संपन्न होता है। मीडियम वेव 320.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी व अंग्रेजी में समाचार। इनमें सबसे पहले आप सुनेंगे 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन यानी कि खेल समाचार, और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, और 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ 8 नाइट यानी कि अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हॉकी इंडिया ने आगामी हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की। सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी। हंसिका लांबा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में रजत पदक जीता। नेहा और मानसी स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में युवाओं को हर सुविधा प्रदान करेगी। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हराया, श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और फीबा बास्केटबॉल अंडर 18 महिला एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला नोजोमी ओकुहारा से होना था, लेकिन वह चोट के कारण मैच में हिस्सा नहीं ले सकी। ये इस सीजन में सिंधु का तीसरा सेमीफाइनल है। इससे पहले वे मलेशिया सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलिया सुपर 500 के सेमीफाइनल में पहुंची थी। इसके साथ ही 2023 डेनमार्क ओपन के बाद ये उनका पहला सुपर 750 सेमीफाइनल है। 31 वर्षीय खिलाड़ी पीवी सिंधु की निगाहें इस सीजन का पहला खिताब जीतने पर होंगी। सेमीफाइनल मुकाबले में उनका सामना टोक्यो ओलंपिक चैंपियन और विश्व की चौथी नंबर खिलाड़ी चीन की चेन युफई से होगा। सिंधु और चेन युफई के बीच अब तक कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिंधु उनसे 6-8 से पीछे हैं। सिंधु को युफई के खिलाफ पिछले 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल में जीत न केवल सिंधु के हारने के इस सिलसिले को खत्म करेगी, बल्कि लगभग 3 साल में उनके पहले सुपर 750 फाइनल में पहुंचने का रास्ता भी साफ होगा। अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पर ही टिकी होंगी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में सिंधु अब भारत की एकमात्र दावेदार हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिंधु 6-8 से पीछे हैं, लेकिन कल भारतीय प्रशंसकों की निगाहें सिंधु के अच्छे खेल प्रदर्शन पर होंगी और उम्मीद करें कि वो फाइनल का टिकट

0: ना पक्का कर लें। और अब बात करते हैं हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। सुनते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
1: बेंगलुरु में नेशनल कैंप में ट्रेनिंग कर रही इस महिला टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और होनहार युवा खिलाड़ियों का संगम है। इन युवा खिलाड़ियों ने हाल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में सभी को प्रभावित किया है। खासकर पिछले महीने न्यूजीलैंड में हुए FIH नेशंस कप में टीम का प्रदर्शन दमदार रहा था और भारत ने बिना कोई मैच हारे खिताब पर कब्जा जमाया था। विश्व कप के लिए टीम में सविता और बिचू देवी खारीबम को गोलकीपर के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि डिफेंस यूनिट में इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंत ज्योति और शिल्पी डबास शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान सलीमा के साथ निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग को रखा गया है। वहीं फॉरवर्ड लाइन में लाल रेमसियामी, ऋतुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग को जगह दी गई है। विश्व कप के लिए चुनी गई टीम को लेकर कोच मारिजाने ने कहा कि हमने खिलाड़ियों का एक संतुलित ग्रुप चुना है। टीम ने टूर्नामेंट से पहले कड़ी मेहनत की है और हमें इस ग्रुप की पर पूरा भरोसा है। हम दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलने और सबसे बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। भारतीय कोच ने कहा कि ये विश्व कप आगामी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों के लिए बेहद अहम है।
2: I take it as a preparation and take as said we are going to the World Cup to perform and the performance will help us to be at our best at the Asian Games because at the end we will want to win the Asian Games for the qualification. So it's not just one, the World Cup will, the information from the World Cup will help us in at the Asian Games, but yeah, performing at both would be great.
1: भारतीय टीम को चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूल डी में रखा गया है। टीम अपने सभी पूल स्टेज मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में वागेनर हॉकी स्टेडियम में खेलेगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगी। इसके बाद 18 अगस्त को साउथ अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड में हुए FIH नेशंस कप में दमदार प्रदर्शन किया था और भारतीय प्रशंसकों को अब उम्मीद होगी कि भारत इस विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय आगामी टूर्नामेंट्स में भी उनकी मजबूत दावेदारी पेश होते रहे। अब सीधे चलते हैं बॉक्सिंग कुश्ती रिंग की ओर। बुडापेस्ट में भारतीय महिला पहलवान हंसिका लांबा ने पोलियाक इमरे, वर्गा जानूस और कोजमा इस्तवान मेमोरियल 2026 रेसलिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता को बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज भी कहा जाता है। 59 किलोग्राम महिला वर्ग में नेहा और 62 किलोग्राम वर्ग में मानसी स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। साथ ही इसी भार वर्ग में सविता भी कांस्य पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। एक रिपोर्ट।
3: बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में महिलाओं के 55 किलोग्राम स्पर्धा में हंसिका लांबा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। 19 वर्षीय हंसिका को महिलाओं की फ्रीस्टाइल कैटेगरी में फ्रीस्टाइल कैटेगरी के फाइनल में यूक्रेन की नतालिया क्लिवचुत्स्का से 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। हंसिका लांबा ने क्वार्टर फाइनल में तुर्की की तूबा डेमिर को 8-4 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की और फिर सेमीफाइनल में पिछड़ने के बाद जर्मनी की अनास्तासिया ब्लेवास को 10-7 से हराया। महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में भारत की प्रियांशी प्रजापत कांस्य पदक जीतने से बस एक जीत दूर रह गई। पुरुषों के 125 किलोग्राम वर्ग में रजत रूहल ने कांस्य पदक जीता। उन्हें यह पदक तब मिला जब उनके प्रतिद्वंदी अमेरिका के मेसन पेरिस ने चोट के कारण भारतीय रेसलर को वॉकओवर दे दिया। रजत क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के कामिल कोसियोलेक से हार गए थे, लेकिन रेपेशाज राउंड में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ग्वानुक किम को 8-4 से हराकर पदक मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में भारत के पदकों की संख्या अब 5 हो गई है। गुरुवार को मिले 2 पदकों के अलावा ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत ने बुधवार को पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपक ने 61 और विशाल कालिरमाना ने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते। वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल कल महिलाओं के 53 किलोग्राम डिविजन में मुकाबला करेंगी। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
0: भारतीय पहलवानों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और अब सबकी निगाहें नेहा, मानसी, सविता और अंतिम पंघाल पर होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान

0: प्रधानमंत्री ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी भारत पूरी तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भी आयोजित की जाएंगी।
1: साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी। आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होने वाली, आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है हरियाणा के बेटे बेटियां हमेशा की तरह इनमें भी अपना परचम लहराएंगे।
0: अब सीधे चलते हैं बास्केटबॉल कोर्ट की ओर, जहां भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फीबा बास्केटबॉल अंडर 18 महिला एशिया कप में भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को 79-46 से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कल थाईलैंड के बैंकॉक में खेला जाएगा। भारत ने इस प्रतियोगिता में थाईलैंड और ओमान को हराकर दमदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम ने अपने ओपनिंग मुकाबले में थाईलैंड को 106-62 से और दूसरे मैच में ओमान को 99-17 से हराया था। अब सीधे रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। कार्डिफ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को नाबाद 99 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने सधी हुई शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी की। गिल 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े। रोहित ने टीम के खाते में 26 रन का योगदान दिया। 111 के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में 3rd विकेट गिरा। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के साथ 4th विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 178 रन तक पहुंचाया। लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। कोहली ने 66 गेंद में 8 चौकों के साथ 65 रन की पारी खेली, जबकि अय्यर 71 गेंद में 7 चौकों के साथ 66 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 13 गेंद में नाबाद 20 रन बनाए। भारतीय पारी 44 ओवर में केवल 233 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट लिए। 234 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत निराशाजनक रही। बेन डकेट पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। इसके बाद जैकब बेथेल भी जल्दी ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद जो रूट ने मोर्चा संभाला। रूट ने विल जैक्स के साथ 6th विकेट के लिए 72 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। रूट ने गस एटकिंसन के साथ 7th विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 45वें ओवर में आसान जीत दिलाई। मैच के बाद जो रूट ने कहा कि हम लगातार एक दिवसीय प्रारूप में बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: You could look at the last 30 games and look at our record, or you could look at the here and now, and I think this team should be judged on the here and now. We won in Sri Lanka, you know, the first team to win there for 4 years, and similarly to that series, we lost the first game, learned lessons and evolved and got better and adapted, and that's exactly what we did again today. The challenge is, can we do it at Lords when the pressure's on against another, again, a brilliant team, you know, number one ranked team in the world? For us to stand up and play like that, I think shows where we are and is a good benchmark for us. So, you know, let's back it up again at Lords, and then I think there's a very different look to or perception to where this team is.
2: Bharti kaptan Shubman Gill ne kaha ki madhyakram mein lagatar wicket girna haar ka karan bana.
4: quite disappointing, to be honest. You know, we thought 300, 310 would be a good total after 25 overs. We were at a good position, but you know, we lost too many wickets in the middle overs. We know our tail enders are you know, not the best batsmen, but I think we expected a bit more from our lower mid order, and we were not able to capitalize on the start that we got. But hopefully, you know, the next time we get there, we'll try to build some small partnerships and take it on.

0: श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मैच 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: बुलावायो में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए, जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 152 रन पर ही सिमट गई। तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर है। पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को 32 रन से हराया था। उधर मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश ने सारंग ने कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड पर लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाली तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश की रहने वाली क्रांति गौड़ ने टेस्ट मैच में कुल 7 विकेट लेकर भारत की 270 रन की शानदार जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगियों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
2: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
3: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है।

0: कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
0: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
0: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
4: In over 3 decades.
1: वित्त मंत्री निर्मला

सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर

0: तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार दान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद

0: वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as a top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress. He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.
2: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आपने गुलाम अली की गाई हुई कुछ गजलें सुनी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू।

मिट्टी की खुशबू आई। जी हाँ दोस्तों, ठोडी प्यार की खुशबू तो मिट्टी की खुशबू एक दूजे नाल गल्लां कर रहे हैं। दोस्तों मेल का पता दस दिए तो आपका पत्र मेला @AIRSuratgarh@gmail.com ते खत जे लिखना हुए तां मिट्टी की खुशबू आकाशवाणी सूरतगढ़ पिनकोड 335804 ते मैसेज तुसी कर ही रहे हो। अज दे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खतां दे नाल ते खत तो बाद फिर थोड़े मैसेज भी देखांगे ते मेल भी थोड़े साढ़े कोल पहुँचे हैं। पिंड दौलतपुरा श्री गंगानगर तो शिवलाल बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित ते हिम्मत का खत मिले सानू। पिंड कैरो पंजाब तो सुनीता शमी रजनी आकाशदीप अनहद गुरशभ ते गुरदर्शन लाल चलोत्रा का खत भी मिले। तो एक खत सानू मिले चक बुरजवाला तो मंगा सिंह लंबड़दार भोला सिंह पाल सिंह सुरजीत सिंह जीतराम ते मेजर सिंह नगी का। तो श्री गंगानगर तो बजरंग लाल शर्मा जगमोहन सिंह अरनेजा दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा का खत भी मिले। नगराणा तो लालचंद नाथ प्रेम सोन मंजू प्रदीप अमन अंकुश रीटा राहुल दीपक पीयूष ते योगेश नाथ का खत भी मिले। तो इन्हों एक खत होर सूरतगढ़ तो मिले सानू पव्य ते हर्षित नायक का। तो हुण असीं देखते हैं थोड़े मैसेज जिहड़े साढ़े कोल पहुँचे ने। इन्हें दतरेंगी पाटापारा छत्तीसगढ़ तो हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि वर्मा नोखे लाल वर्मा ते अगले जड़े श्रोता ने वह पिंड खोखरा वाली तो ने विनोद बारासा विशाल बारासा विकास बारासा रोशनी बारासा ते शगुन बारासा। कहिंदे कार्यक्रम बहुत वधिया चल रहा है।

जी हाँ दोस्तों, तुसी सुनिया गीत मैसेज थोड़े पहुँचे ने, खत भी थोड़े पहुँचे ने, ते मेल शामिल करने बहुत जरूरी है। ये साढ़े को मेल पहुँचे जी पिंड जाखोद राजस्थान तो, शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार ते कुमारी पूजा खटक का। कहिंदे कोई भी गीत सानू सुना दो, थोनू गीत असी सुना रहे हैं, थोड़े आपदे गीत है जी सुन रहे हो तुसी। अगला जिहड़ा मेल साढ़े कोल पहुंचा, नागपुर तो विठल जाधव, अनुसुईया जाधव ते पवन राजे जाधव का मेल साढ़े कोल जिहड़ा पहुंचा, छत्रपति शंभाजी नगर तो राजेश साबले, राजदीप, राजेंद्र, राशि राजेश ते श्रीमती शीतल राजेश का। अगला मेल जिहड़ा साढ़े कोल पहुंचा, इन्हें पदमपुर तो आस्था तनेजा, भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, पूजा तनेजा, मुखी राम पवार ते इन्हां दे साथियों का थोड़ा भी स्वागत है जी। कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू दे विच इन्हें साढ़े साथी रामगढ़ कैंट तो महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, इन्हां दा मेल भी शामिल है कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू दे विच। किशनगंज बिहार तो रविंद्र मोहन दास ते आशा देवी का मेल भी साढ़े को पहुँचे। तो अगला जिहड़ा मैसेज साढ़े को पहुँचे, ये साढ़े साथी ने पिंड हीरावाली फाजिलका पंजाब तो सुभाष गुदारा, विमला गुदारा, इंदू पार्वती, हिमांशु गुदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मणि राम दे नाल रणजीत राम करोड़ीवाल, तो इन्हों का एक साथी सुरेंद्र पादू कार्यक्रम सुन रहे हैं। कार्यक्रम कहते बहुत वधिया चल रहे हैं। अगला जिहड़ा मैसेज साढ़े कोल पहुँचा, पिंड जोगीवाला श्री गंगानगर तो प्रेम सहारण, मोनिका ते मनीष सहारण दा, कुमार हेड़ा सहारनपुर तो, सैयद मसरूर, साइना हसन अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम आदि ते परिवार दे सारे जिहड़े सदस्य हो। अगला मेल जिहड़ा मैसेज साढ़े कोल पहुँचा, पिंड कमटिया सूरतगढ़ तो जगदीश टूकिया, परमिला टूकिया, ज्योति शिवम टूकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु टूकिया ते इन्हां दी दोती ईवा तारणिया सारे कार्यक्रम नूं सुन रहे ने। सारयां दा बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जिहड़ा मैसेज साढ़े कोल पहुंचा, जी के परमार दा, गांधी नगर गुजरात तो, ते भोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा ते पूजा परिहार दा मैसेज भी पहुंचा। मलोड़ तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल कनेडा तो, ते दिशा मोहल्ला तो जगतार जगा ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। खारिया जिला सिरसा तो प्रताप जनागल, इंदिरा मुकेश, दिनेश अंशु, बलदेव कटारिया ते इन्हां दे साथी। अगले जिहड़े मैसेज करता ने ये साढ़े फ्रांसी तो, राजकुमार डूटी, प्रमोद कुमार डूटी ते सौरभ डूटी, जनकपुरी सहारनपुर तो जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, परल डिकेस्ट्रो ते विलियस डिकेस्ट्रो कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू दे विच थोड़ा भी स्वागत है जी। नौर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, मोहन लाल सुथार, महावीर मिस्त्री सारे कार्यक्रम में सुन रहे हैं, सब का बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद मायल, सीमा, लक्सिता, यशिका ते विद्या देवी ते सारा मायल परिवार भी कार्यक्रम में सुन रहे हैं, थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीपर लूट सरगांव छत्तीसगढ़ तो दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा ते ज्योति दे नाल शिवांश वर्मा, हनुमानगढ़ टाउन तो सुल्तान सिंह, कृष्ण, मुकेश, राजचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी, तो रायसी नगर तो तनराज पांबू, सोन लाल जांगिड़, चेतन राम सारसवा, प्रदीप सारसवा, रजेंद्र कासनिया, अरविंद कासनिया, विजय कासनिया, आशीष बादू ते

30 साल पूरे हो गए ने, ते अज तक भी थोड़ी मुहब्बत नाल वधिया चल रहा, ते मैसेज थोड़े पहुँच रहे हैं। नई बस्ती गंज डुंडवारा तो मुहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मुहम्मद तौसीफ हाशमी, ते तैमूर हाशमी। नांदेड़ महाराष्ट्र तो नारायण गायकवाड़, ते आनंद गायकवाड़, ओमकार साईं, ते कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, ते हैप्पी राय का मैसेज भी पहुंचा। करकर मिट्टी की खुशबू के निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, ते आयान बाबू तनौरी तेलीवाला तो जिहड़ा मैसेज कर रहे हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब तो पिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मैसेज भी पहुंचा। पिंड हीरावाली फाजिलका पंजाब तो हजारी लाल पुरोहित, मोनी पारिक, ते भूपेंद्र पारिक का मैसेज भी पहुंचा। लो जी, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली तो गुरमीत सिंह मीता का मैसेज भी पहुँच गया करकर मिट्टी की खुशबू के। अगले जड़े साढ़े स्रोता ने दीपक ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ तो, कुंडलवाली महाराष्ट्र तो गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी, राजेश, ते राकेश, ते रिशिता का मैसेज भी पहुंचा। जलालाबाद वैस्ट तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, ते तिशानी दे नाल नियमित आहूजा का मैसेज भी पहुंचा। करकर मिट्टी की खुशबू धोले वास्ते सोनू रविराज, गुलशन लक्की, जलंधर सिटी पंजाब तो मैसेज कर रहे हैं। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली तो राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तनिया नारंग, ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। अगला जिहड़ा मैसेज कर रहे हैं, सालपुरा जिला 12 राजस्थान तो सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक, ते बहुत सारे साथी। अगले श्रोतियों का नाम पढ़ने तो पहला सुनते हैं एक गीत।

जी हाँ दोस्तों, जड़े छोटे खत पहुँचे ने शामिल कर लिए दोस्तों, पर एक गल कहना चाहवांगे, जड़े ये पीले पीले रंग के जड़े खट्टे खट्टे जे जड़े खत है साढ़े तक पहुँचते हैं, स्टूडियो की शान है, खत जरूर लिखा करो, क्योंकि दोस्तों एक टाइम ये खत जड़े ना गया वक्त हो जाना, फिर असी सोचांगे कि शायद असी भी कदे लिखते आकाशवाणी पर ये खत, अपनियां फरमाइशां पूरियां करवाउण वास्ते, अपने विचार व्यक्त करन वास्ते। जरूर लिखा करो, भारत के किसी भी आकाशवाणी केंद्र ते खत भेजो, पर ना भुलो आकाशवाणी दा कॉटन सिटी, थोड़ा आपदा मिट्टी की खुशबू दे लई भी खत जरूर भेजा करो। सानू इंतज़ार रहिंदा है कि जड़े ये खत ने डिजाइन जड़े बनाए रखते तुसी, ना किसे ते किस तरीके दा लिखा हुंदा, किसे ते किस तरीके दा, काफ़ी टाइम तक समझन की कोशिश करते हैं जदों, तो चंगा लगता है। प्यार देखो किस तरह ना भेजते हैं साढ़े साथी, के मेल दे युग च, मैसेज दे युग दे विच भी जिन्हां दे खत आउंदे है उन्हां दे हाथ लगे साड़ी कोल मुहब्बत पहुँच जाती है, तो असी उस मुहब्बत नाल दे सीने नाल ला के रखना चाहते हैं। तो थोड़े खत जड़े शामिल करन तो जड़े रह गए ने, अगले कार्यक्रम दे विच जरूर करांगे। ਹੁਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਲਾਮ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनते हैं फिल्म संगीत।

इंसानियत के दुश्मन। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत सुरेश वाडेकर की आवाज़ में, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था।

जीना तेरी गली में। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ, संगीत बाबुल बोस का था, आवाजें थी देवाशीष गुप्ता और अनुराधा पौडवाल की।

रेस ज्यादा। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। हिंदी वर्ग के बोलते बप्पी लहरी की धुन थी। आप सुन रहे हैं फिल्मी नगमे आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल से।

कमर जलालाबादी का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गा रहे थे मोहम्मद अजीज। फिल्म का नाम था निश्चय।

आप सुन रहे हैं मोहम्मद अजीज की आवाज को। फिल्म का नाम है निगाहें, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।

0: अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक इलाके से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:53 पर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।